मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं

0: कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत ईश्वर की भक्ति के साथ, और ईश्वर की भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ भगवान के सामने दिया जलाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती घुमाएं और कर्मकांड करें। भक्ति भाव का अर्थ मन में समर्पण, शांति और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम निवास करना होता है, और जहाँ सभी देवता आपकी मनचाही मुराद पूरी करते हैं, वहीं महादेव, देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी होती है कि वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति आस्था यदि मन में है तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, संकट कटेंगे और पाप मिटेंगे। यदि ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, समर्पण भाव मन में है, तो प्रार्थना सिर्फ इतनी कि हे ईश्वर, देना है तो जन्म जन्म का साथ दीजिए, अपने चरणों में भक्ति दीजिए, अनुरक्ति दीजिए।

ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका उनके ऊपर विश्वास और मन में शांति, उसके साथ ही समर्पण की भावना। अगर विश्वास मन में सच्चा है तो आपके मन का अहंकार मिट जाता है।

आपके मन में बचता है तो केवल सुकून, और इस सुकून भरे मन में अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनकी कृपा मिलती ही है, और उनकी कृपा जब मिल जाती है तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी कोई भी काम करने चाहिए तो अपने इष्ट का स्मरण जरूर करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे मन में अपना सिमरन सदैव बनाए रखना, अपने चरणों में मेरी अनुरक्ति सदैव बनाए रखना।

भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम, और प्रेम का दूसरा नाम है कृष्ण। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार कृष्ण के रूप में लिया प्रेम का पाठ सिखाने के लिए, और प्रेम निकलता है उनकी बांसुरी से। और जब बांसुरी की धुन कानों में पड़ती है तो मन उसमें डूब जाता है, उसकी मिठास मन में अमृत खोलती है और प्रेम से मन सराबोर हो जाता है। और आप जब प्रेम से सराबोर होते हैं तो आप अपने आसपास की वातावरण में सिर्फ प्रेम ही घोलते हैं, और आपके संपर्क में जो आता है वो भी प्रेम के रस में डूब जाता है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
4: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
3: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
4: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
5: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें।

0: स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। और आराधना में अब जो भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें वर्णन है श्री राम का। हर हृदय में बसे हैं राम, उनके बिना अधूरा है हमारा धाम। रामायण का पाठ करो, हर पथ पर विजय पाओ। विजय पाने का नाम है श्री राम की भक्ति।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ऋग्वेद के श्री सूक्त से पाठ। वाचन स्वर है डॉक्टर माया मालवीय के।

वह। हे अग्नि जात वेदस, आप स्वर्ण की कांति के समान वर्ण वाली हरित वर्णा, स्वर्ण रजत पुष्पों की माला को धारण करने वाली, चंद्रमा के समान प्रकाश से युक्त हिरण्य स्वरूपा लक्ष्मी को मेरे पास लाएं।

हे जातवेदस अग्नि, आप कभी छोड़कर न जाने वाली स्थिर लक्ष्मी को मेरे पास लाएं, जिससे मैं स्वर्ण, गाय, अश्व और पुत्र, पौत्र, मित्र, दास रूप पुरुषों को प्राप्त करूं।

0: से मेरे अंत इंद्रिय संबंधिनी माया या अज्ञान को और बाह्य इंद्रियों से संबंधित अलक्ष्मी को दूर करें। उपैतु माम देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर कीर्ति और मणि के साथ आए। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, वे मुझे यश और समृद्धि प्रदान करें। क्षुत्पिपासा मला ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। भूख प्यास रूप मलिन एवं ज्येष्ठा अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ। सभी प्रकार की अभूति एवं असमृद्धि को मेरे घर से दूर कीजिए। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूताराम तामिहोपव्ययेश्वयम्। प्राण से ग्राह्य गंध लक्षण वाली दुराधर्ष, सस्यादि से नित्य पुष्ट, प्रचुर गोमयादि अर्थात विविध पशुओं से समृद्ध सभी प्राणियों की अधिष्ठात्री उस लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद से श्री सूक्त से पाठ, कार्यक्रम था गौरव ग्रंथों से। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। अपने मोबाइल सेट पर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, प्रस्तुत है कृषि जगत।

मृणोमि। चंद्रमा के समान कांतिमती, यश से दीप्त, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवताओं से सेवित, उदार पद्मिनी रूप उस लक्ष्मी की मैं शरण में आया हूँ। मेरी अलक्ष्मी का विनाश हो, मैं आपका वरण करता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। हे सूर्य के समान वर्ण वाली, आपके तप से बिल्व नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व के फल आपके तपरूप अनुग्रह

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रवीण चरण से दुर्गेश कुमार मिश्रा की बातचीत, जैविक खेती से लाभ।
1: पंचों, खेती किसानी हम सब करते ही और समय के साथ देखा तकनीक भी आई गई बा। आवाज सबसे ज्यादा जरूरी बा कि जब तकनीक आए तो हम कुछ में बदलाव करी। अब बदलाव में सबसे बड़ी चीज बा कि हम रासायनिक जोन खेती करते ही उसे अब वैज्ञानिक भैया अरे बतावता है बहुत कुछ नुकसान बा। अब वो चाहे मिट्टी खराब होत हो या फिर पर्यावरण पे असर होत हो, तो जैविक खेती एक शब्द आए कि जैविक तरीके से हम कैसे खेती करी, एकर लाभ का बाटे और इससे जौन उपज होते वो बाजार में चार पैसा के आमदनी कैसे बढ़ाए देते। आज यह सब चीजें पे बात करे के बदे भैया डॉक्टर प्रवीण चरण भैया आए हैं। डॉक्टर साहब आपके हमरे कार्यक्रम में स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब हमरे किसान भैया अरे ये जाना चाहिए कि जैविक खेती के उद्देश्य का बा।
2: देखिए, जैविक खेती कोई एक नया विषय नहीं है। जैविक खेती जो हमारे पूर्व से हमारे किसान भाई करते आ रहे हैं। जब 1960 में हमारे पास खाद्यान्न की कमी हुई तब केमिकल खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि हमें उपज बढ़ानी थी। और आज की स्थिति यह है कि उपज तो हमारी बढ़ गई, बढ़ने के हमारे पास खाद्यान्न इकट्ठा हो गया, परंतु इसके साथ साथ क्या हुआ, केमिकल का ज़्यादा उपयोग करने से हमारी मृदा की स्थिति खराब हुई है, हमारे स्वास्थ्य भी खराब हुए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब जैविक खेती के ऊपर हमें फिर से जाना पड़ेगा।

0: निश्चय ही जैविक खेती से ही हम टिकाऊ खेती कर सकते हैं।
1: एक बात आवत है जिसे कि रसायन डाला थी, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जैविक खेती के तरफ बढ़ावा थी कि ऐसे का करें खेती में को कहलाए कि हाँ भाई जैविक तरीके से खेती की जाती है।
0: देखिए, जैविक खेती के लिए बहुत ही पुराने तरीके ये थे कि हम जो है फसल चक्र अपनाया करते थे। गर्मियों में बहुत गहरी जुताई किया करते थे, जिससे क्या होता था कि जो कीट पतंगों के अंडे होते थे, जब ज़मीन पे धूप पड़ती थी तब 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था, ज़मीन गर्म हो गई 50 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता था, जिससे क्या हो कीट पतंगे बीमारी के जो भी कीटाणु हुआ करते थे वो हमारे मर जाते थे। और उसके बाद हम तुरंत अप्रैल मई में जैसे खेत हो गया उसके बाद हम क्या करते थे, तुरंत अपने सनई या ढैंचे की बुवाई किया करते थे
1: जी,
0: जिससे क्या होता था हमारी मृदा में ह्यूमस बढ़ता था, जिससे कि हमारे वो तत्व जो सूक्ष्म तत्व हमारे धरती के अंदर पाए जाते थे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक आपने देखा था कि जब बारिश हुआ करती थी तो केंचुआ निकल के हमें घूमते दिखाई देते थे। आज की परिस्थिति ये केंचुए कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे मित्र कीट जो है केमिकल यूज करने से अधिकताई से वो खत्म होते चले जा रहे हैं, और जो शत्रु कीट है उन्होंने अपनी ताकत उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में देखते बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो अगर हम खेती को अगर टिकाऊ करना है तो हमें C/N रेशियो 0.7 से 8 के बीच हो तब अच्छी खेती हो सकती है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में क्या 0.2 से 3% आ गया है। तो ये बड़ी गहन सोचने की बात है, क्योंकि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम आने वाले समय में खेती नहीं कर पाएंगे। और केमिकल से खेती कब तक आप करेंगे, क्योंकि भाई पहले खेत तक कहते थे खेती और बाड़ी, यानी खेती और पशु दोनों साथ साथ हुआ करते थे, परंतु आज की भौतिकता में पशु धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं और खेती हमारी हो रही है। खेती हम डिपेंड हो गए हैं, जाते हैं बाजार, बाजार से यूरिया ले आए, DAP ले आए, ठीक है, हम इसके लिए मना नहीं करते हैं, संतुलित मात्रा में इन उर्वरकों का प्रयोग कीजिए। हम बहुतायत से उपयोग करने लगे जिसकी वजह से हमारी मृदा हमारी खराब होती चली जा रही है। हमें मिट्टी की जांच अवश्य कराएं
1: जी।
0: मिट्टी की जांच करने से हमें ये पता लगता है कि हमारी भूमि में हमारी मृदा में किस चीज़ों की कमी है। 16 तत्व की जगह अब 17 तत्व हो गए जो हमारी मृदा में चाहिए अच्छी खेती के लिए। अब उन तत्वों की जब कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो खेती हमारी अच्छी नहीं होगी, खेती में तुरंत हमें नुकसान होता रहेगा। इसलिए पहले आपने देखो वर्मी कंपोस्ट चला करता था, है गोबर की खाद चला करती, हमारे खेत से निकले हुए अवशेषों को हम खेतों में ही जोत बो दिया करते थे, जिससे क्या होता था वहाँ मृदा की अच्छी मृदा बन जाती थी और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती थी। आज की स्थिति क्या है, हमारी पैन जो है वो है ठोस होता चला जा रहा है, बारिश होती है हमारे खेत का पानी बाहर निकल जाता है ना कि नीचे सोखता है, तो जिससे हमारी खेती में पानी की भी आवश्यकता बढ़ गई है। तो हमें फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। जैसे धान बोया है, धान के बाद हमें गेहूं लेना है, गेहूं के बाद हमें अरहर लेनी है, फसल चक्र दलहनी फसलें जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे टॉक्सिक अपने छोड़ते हैं जो कि दूसरे पौधे उस टॉक्सिक को अपना भोजन बनाते हैं
1: जी,
0: तो हमारे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बात होता है जिसे रासायनिक खेती और जैविक खेती अगर हम एक तुलनात्मक अपने किसान भैया से बात करी तो एक जैविक खेती से लाभ ज़्यादा बा कौने रूप में बा।
0: देखिए, जैविक खेती से लाभ निश्चित अधिक है, क्योंकि जैविक खेती को देखिए एकदम एक साथ में हमें नहीं करना है, क्योंकि एक साथ करने से क्या है नुकसान, तो हमें 10% अपने हिस्से का लेके धीरे धीरे 10% लेकर 10-10% करके हमको बढ़ाना है, क्योंकि आज जैविक खेती की तरफ हर आदमी का रुझान हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य आदमी की आज सबसे बड़ी स्थिति होगी कि स्वास्थ्य हमारा सही रहे, तो इनके उत्पाद भी अच्छे महंगे बिक रहे हैं, आप पैकेजिंग अच्छी हो रही है तो आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु इसको धीरे धीरे करें जिससे आपको खेती से अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
1: लागत बहुत हद तक किस स्तर पे कमी हो सकता है डॉक्टर साहब? एक
0: देखिए, जैविक खेती से आपकी लागत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके क्षेत्र में आपके गांव में, जो कि आप बाज़ार से खरीदते हैं केमिकल, बाज़ार से खरीदते हैं उर्वरक, वो जो आपको आपके घर में आपके क्षेत्र में आपके मोहल्ले में मिल जाते हैं, तो उनको तैयार करके हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बाजार मूल्य आपका

0: हो जाता है, और उससे क्या है, आपको जो भी उत्पाद प्राप्त होगा उसमें आपको फायदा होगा।
1: शुरुआत में चुनौती का बात है खेती कर।
0: शुरुआत में देखिए चुनौती ये है कि हमें बाजार के बारे में बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, तो से हमें ये पता होना चाहिए हमारा जो जैविक उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं वो हम बेचेंगे कहाँ।
1: जी
0: तो उसके लिए हमें बाजार का जरूर पता कर लेना चाहिए। आप तो आजकल बहुत ही व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, आप ऑनलाइन भी अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, और उनको बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। अगर आपका उत्पाद अच्छा है, सेटिस्फाई है, तो आपसे लोग आपके पास आकर स्वयं ही ले लेंगे।
1: बिल्कुल, काहे कि मतलब कि जैविक खेती से जो भी हम उत्पादन करी थी बाजार खुद आए के खेती तक वो खरीद लेते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, 100% खरीदेगा।
1: तो डॉक्टर साहब जिसे आप बताएं कि फसल चक्र अपनावें, गोबर के खाद जो भी परंपरागत तरीके से खेती रही ओका अपनावें, और माटी के जांच की भी बात करें, और जो भी उत्पादन होत बा ओका बाजार में सही तरीके से पहुँचे हैं तो 4 पैसा के मुनाफा ज़्यादा हुई।
0: बिल्कुल, हमें
1: डॉक्टर
0: पसंद
1: साहब
0: होगा।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दें हमें किसान भैया हरे के, और निश्चित बात कि अब किसान भैया हरे थोड़ा सा जागरूक होता है धीरे धीरे, भाई रसायन की तरफ से जैविक खेती अपनी है तो निश्चित बाकी 4 पैसा की आमदनी ज़्यादा हुई। डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में इतनी बढ़िया जानकारी दें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: जैविक खेती से लाभ, अभी आप सुन रहे थे प्रवीण चरण से दुर्गेश कुमार मिश्रा की बातचीत। इसके साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एस बी सिंह से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, अवसाद में कितनी कारगर होम्योपैथी। आज आप सुनेंगे इसका पहला भाग।
1: श्रोताओ नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी आकाशवाणी में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अवसाद की। अवसाद क्या होता है, क्यों होता है, लक्षण क्या होते हैं, अवसाद का होम्योपैथिक समाधान क्या हो सकता है, और इसमें भी खासकर हम बात करेंगे युवाओं की। कब, किस तरह से होम्योपैथी अवसाद के उपचार में लाभप्रद हो सकती है, ये आपको बताएंगे हमारे आज के मेहमान प्रयागराज के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर एस बी सिंह। डॉक्टर एस बी सिंह, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: बहुत संक्षेप में बताएं कि अवसाद क्या होता है और क्यों होता है।
2: अवसाद एक मानसिक स्थिति है, और मैं आपको बताऊं कि इस धरती पर ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन अर्थ इज मैन, और इन मैन अमूल्य चीज वो माइंड है।
1: क्या बात।
2: हर किसी के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, इंसान जब परेशान या दुखी होता है, आमतौर पर किन्हीं विशेष कारण से होता है, जैसे नौकरी छूटना, रिश्ता टूटना, या कोई बड़ा हादसा, वो उससे उबर नहीं पाता, तब उसकी मन स्थिति बिगड़ जाती है। उस स्थिति में पहले स्टेज में प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं, शुरुआती दौर में अधिक समय तक ये स्थिति नहीं रहती, दैनिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसी स्थिति को अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। ये किसी एक कारण से नहीं होता
1: जी।
2: असंतुलन न्यूरोट्रांसमीटर या मस्तिष्क के रसायन असंतुलन, न्यूरोट्रांसमीटर या अनुवांशिक कारण की वजह से लंबे समय तक रहने वाले मानसिक तनाव और जीवन की जटिल समस्याएं को न झेल पाना, अपने के खोने का गम अवसाद का मुख्य कारण है
1: जी। और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो प्रमुख रूप से परिलक्षित होते हों, दिखते हों, या बिना कारणों के भी अवसाद हो सकता है? और क्या सामान्य उदासी और अवसाद ये एक ही चीज है या अलग अलग?
2: नहीं, उदासी अवसाद का एक लक्षण है।
1: अच्छा।
2: जब अवसाद ग्रस्त कोई होगा तो उसमें उदासी, खिन्नता, गुस्सा करना, बात बात पे लड़ जाना, नींद ना आना, शारीरिक शिथिलता, काम में मन न लगना, ये सब अवसाद के लक्षण है।
1: बिना लक्षणों के

0: भी किसी को अवसाद हो सकता है
1: नहीं,
0: बिना
1: लक्षण
0: कारण।
1: के अवसाद तो यही हो सकता है कि चुप रहेगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, तो भी अवसाद का एक लक्षण है
0: ऐसे में दोस्त, समाज और परिवार की आप
1: जी।
0: क्या भूमिका देखते हैं?
1: बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, पहले तो परिवार के साथ इंटरेक्शन होता रहे, फिर दोस्त का बहुत बड़ा महत्व है, परिस्थिति जन्य होता है, समाज में किसके साथ उठता बैठता है, किस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठता है, या नेगेटिव लोगों के साथ बैठा तो हर समय वो अपने को बैलेंस नहीं कर पाएगा
0: जी
1: और थकान महसूस करेगा, मेंटली फिजिकली कोई काम नहीं करेगा, समाज में कहीं बैठेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो समझिए अवसाद का ही लक्षण है।
0: परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। पहले बहुत बड़े परिवार होते थे, 15-15, 20-20 लोग कुछ संयुक्त तो परिवार में रहते थे। आज परिवार एकल होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये समस्या ज़्यादा देखने में आई है? इसमें मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा कि आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर हमारे हज़ारों दोस्त होते हैं, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में कई बार शायद कोई नहीं होता जिससे बैठ करके हम बात कर सकें। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप?
1: परिवार का छोटा होना और आपस में बातचीत ना होना, अकेले मोबाइल चलाना, तो अवसाद के कारण हो ही गए हैं। क्योंकि जब आदमी बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा, अपनी कमियों को दूर नहीं कर रहा, या किसी घटनाक्रम को शेयर नहीं कर रहा, और फिर मोबाइल लेके बैठ गया, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुंठित ही तो करती हैं, वहां तो कोई पॉजिटिव विचार उनको दिए नहीं, उनकी काउंसिलिंग तो करेगा नहीं मोबाइल, तो अपने हिसाब से वो चलाते हैं, वो फिर इंट्रोवर्ट ही हो जाएंगे।
0: क्या होम्योपैथी दवाओं से अवसाद के उपचार की प्रभावशीलता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है क्या? या होम्योपैथी वास्तव में उपचार कर सकती है अवसाद का?
1: अवसाद का उपचार तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे ढंग से है, क्योंकि होम्योपैथी तो बेसडान ही है मानसिक तनाव। एक्चुअली होम्योपैथी एक प्रिंसिपल सोरा जिसको कहते हैं, सोरा पे आधारित है। 9/10 ऑफ द डिजीजेज आर सफरिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ सोरा। और सोरा क्या है? वो मेंटल इच है। मेंटल इच में कोई खुजली नहीं, इविल थॉट्स हैं। जब आदमी में इविल थॉट्स आएंगे, फला आदमी बुरा है, हर चीजों के बारे में
0: नेगेटिव
1: नेगेटिव रहेगा,
0: थॉट्स।
1: तो ही विल गेट
0: जी
1: इल। अब ये मॉडर्न साइंस या और साइंस को हम नहीं जानते, होम्योपैथी इज टोटली बेस्ड ऑन मेंटल सिम्टम्स। तो सारी बीमारियों को हम पहले मेंटल से डिमिनेट करते हैं, ये पेशेंट की इसमें सुसाइडल टेंडेंसी है, बात करता है या एक्सेसिव बात करता है, बात बात में वायलेंट हो जाता है, तो ये सब चीजें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे ढंग से मैनेज की जा सकती है।
2: अवसाद में कितनी कारगर होम्योपैथी, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर SB सिंह से अभिनव प्रज्ञ पांडे की भेंट वार्ता। आज आपने सुना इसका पहला भाग। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, प्रस्तुत है झरोखा कार्यक्रम विवरण, आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। बता दें आपको 11 बजे आप सुनेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात। आज शाम 7:30 पर सुनेगा भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये दोनों प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे, आज सुनिएगा इसका 44वां भाग। 7:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर आपको सुनाएंगे पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, और दिन में 12:15 पर सुनिएगा पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन।

फिल्म संगीत का आनंद उठा सकते हैं 9 बजे, 10:30 पर और दिन में 12:30 पर। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे चित्रा चौरसिया के स्वर में भजन और गीत। 10:05 पर लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी होगा। आज के कलाकार होंगे संगीता मिश्रा और अरविंद कुमार सिंह। और दिन में 2:30 पर सुनिएगा विकास श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत।

आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचाएंगे हेलो अनुरोध के साथ दिन में 1:15 पर। प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। ग्रामीण बच्चों के कार्यक्रम बाल गोपाल से शुरू होगी हमारी सायंकालीन सभा 5 बजे। बच्चे सुनेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव की बाल कहानी लालच के लट्टू। युवाणी में 5:15 पर चर्चा का विषय होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार का भविष्य और धीरन चिल्ला मलाई पर केंद्रित प्रेरणापुंज। पंचायत घर में 6:30 पर सुनवाएंगे डॉक्टर अजय कुमार से बातचीत प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता और मेरी खेती मेरी बात में प्रतिभागी कृषक होंगे दिवाकर पटेल और भूलचंद्र यादव। अभी आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित प्यार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है। इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस संगीतमय पाठ का 44वां भाग। स्वर था वाणी जयराम का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। शुरुआत कर रहे हैं ज्योति कलश छलके इस फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में इस भजन से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

फिल्मों से भजन के कार्यक्रम में अगली पेशकश केदारनाथ फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी के तहत मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम नागरिक की जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व

0: संसद के न्यायालयों तक 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित कर नियोजित प्रयासों के साथ निस्तारित कराया जाए। साथ ही धारा 33 के अविवादित वरासत के मामलों को मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन, IGRS में प्राप्त जन शिकायतों के संतुष्टि परक निस्तारण, राजस्व न्यायालयों की कोटवार समीक्षा और लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता और प्रभाव कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: बैठक में मुख्यमंत्री ने चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत कार्य पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया के सलेमपुर और भाटपर रानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 लोकहितकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सुशासन का परिणाम है कि आज गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार व सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उसे कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही राप्तीनगर क्षेत्र में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हर्मिनी कल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में टीम वर्क की अहम भूमिका होती है।
3: 108 देशों से बच्चियां आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से और जिन्होंने मिलकर शक्तिसैट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है, और बहुत खुश हूं मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़ पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज़्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते इस मिशन ने दिखाई है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
4: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं, और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
1: प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू की वर्तमान स्थिति को लेकर अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन

0: फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जाँच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग

0: से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जांच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुआ स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। कल 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। प्रशासन और NDRF की ओर से चित्रकूट में राहत और बचाव का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र। तो आइए सुनते हैं इनका ख्याल गायन राग अहीर भैरव में।

अभी आप सुन रहे थे पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। राग थी अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पूरन कुमार और हारमोनियम पर थे इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। जिस प्रकार सभी नदियों का गंतव्य एक है, उसी तरह विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। आइए सांप्रदायिक एकता का प्रण लें।

हम अपने श्रोताओं को बता दें 11 बजे आप सुनेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात, और क्रिकेट प्रेमी श्रोता सुन सकेंगे 7:30 से भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

मिट्टी की सुगंध लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी से आप जुड़ सकते हैं 10:05 पर और दिन में 2:30 पर। कलाकार होंगे संगीता।

स्नेहलता श्रीवास्तव की बाल कहानी लालच के लट्टू बच्चे सुन सकते हैं बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। तो अपने मोबाइल सेट पर डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे।

0: पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और हमारे

0: व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े हैं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही

0: युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल। क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: World from India, states the Economic Times. On the flash floods in Nepal, the Asian Age headlines, Indian experts join rescue relief operations, Nepal lauds Modi, timely aid. And finally, special feeling, Harry Kane reacts after winning Germany's Footballer of the Year award, says the Sunday Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Death toll from flash floods in Nepal rises to 675. Nearly 2,400 people still missing. Nepal issues fresh flood alert for Bhote Koshi River. External Affairs Ministry says 108 Indian nationals rescued so far. India sends forth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. And in women's cricket, India to begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand in Dubai this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है और 2,400 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने भोटे कोशी नदी में सैलाब से मुतालिक ताजा वार्निंग जारी की है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल के अचानक सैलाब के हादसे में अब तक 108 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी चौथी खेप बजरिए तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा सदारती महल में तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुक से वाबस्ता शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले उज्बेकिस्तान की योगा फेडरेशन के जेर एहतमाम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो उज्बेकिस्तान के सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम ताल्लुकात के शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में तआवुन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलबत्त दोनों ममालिक कानकनी, खासतौर पर कमियाब मादनियात, धातुओं जैसे सोना और दीगर अहम मादनियात समेत अद्वियात के शोबे, ज़िरात और हुनरमंदी की तरक्की, नीज कनेक्टिविटी के नए मौके की तलाश जैसे शोबों पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वजीर आजम की कोशिशों की बदौलत गुज़िश्ता 10 वर्षों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 300% का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक एक साथ मिलकर आइंदा वर्षों में बाहमी तिजारत को मौजूदा $1 अरब से बढ़ाकर 2 गुना करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में आज कुछ अहम माहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
2: वजीर आजम जनाब मोदी उज्बेकिस्तान के अपने 2 रोजा दौरे पर कल ताशकंद पहुंचे थे, जहां सदर शौकत मिर्जियोयेव ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने ताशकंद के यंगी उज्बेकिस्तान पार्क में उज्बेकिस्तान की मालामाल तारीख, विरासत और कौमी जज्बे के एहतराम में गुलहाए अकीदत नजर किए। इसके बाद भारत और उज्बेक बिरादरी ने रिवायती अंदाज में जनाब मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹس اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب

0: ट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। बीजेपी ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की 137वें नशरिए के लिए पूरे गुजरात में समाज के मुख्तलिफ तबकात पर मरकूज जलसे मुनाकिद करने का प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर, नौजवानों, किसानों, पेशावराना अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात के अराकीन के साथ मिलकर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वजीर आला भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया असेंबली हलके में यह प्रोग्राम सुनेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर के कोडासन इलाके में प्रमुख आर्केड में नौजवानों के लिए मुनाकिद एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल सूरत शहर के उधना में वाक बीजेपी के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित समाज को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉ गुरु प्रकाश पासवान ने इल्जाम लगाया कि दलित समाज की तौहीन करने की कांग्रेस की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डॉ बीआर अंबेडकर के विरसे की ताजीम के तौर पर उनसे वाबस्ता मकामात को मुकद्दस मकामात का दर्जा दिया है। बीजेपी के कौमी सदर डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर अपने सियासी फायदे के लिए हिन्दुओं में फूट डालने का इल्जाम आयद किया है। दफा 370 का हवाला देते हुए जनाब त्रिवेदी ने कहा कि 370 के इंतजाम में जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अराकीन के खिलाफ इम्तियाज पर मबनी डोमिसाइल पाबंदियां आयद कर रखी थीं।
1: अब ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है, हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
0: इससे पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दलित समाज के खिलाफ इम्तियाज से मुतालिक मामलात उठाए थे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज दो रोजा दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलप्पुजा में एक नुमाया मलयाली रोजनामा केरला कौमुदी के 115वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो अरनमुला वाटर फेस्टिवल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि केरलम की सबसे मशहूर और कदीम कश्तियों की दौड़ में से एक है। पंपा नदी में होने वाले सालाना कश्ती दौड़ के मुकाबले में 51 कश्तियां हिस्सा लेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। पीएम सेतु योजना के तहत मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में हुनरमंदी के फरोग, इंटरप्रोन्योरशिप और पेशावराना तालीम जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्क्लेव में शिरकत से पहले जनाब सिंह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ वो लखनऊ कंटोनमेंट इलाके में 101 करोड़ रूपये के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद 675 हो गई है। दोबारा शदीद बारिश और मजीद सैलाब के अंदेशों के दरमियान तलाश और बचाव का कार्रवाई जारी है। तकरीबन 2400 अफराद लापता हैं, जिनमें से कम 320 गैर मुल्की शहरी हैं। 261 गैर मुल्की सयाहों समेत 4400 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
3: नेपाल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों से 675 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद चितवन नवलपरासी ईस्ट और नवलपरासी वेस्ट से है। 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने और राहत का सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मुतअद्दिद परवाजें कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक तलाश और बदतरीन तौर पर मुतासरा रसूबा जिले में कल बारिश और कोहरे के सबब बचाव कार्रवाई के आर्जी तौर पर रोके जाने के बाद तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटेकोशी दरिया में सैलाब के मद्देनजर ताज़ा अलर्ट जारी किया है और दरिया के करीब रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रसूबा जिला इंतजामिया ने कहा है कि उसे पानी के बहाव में इजाफे के तनाजुर में रसूबा, नवाकोट और ढांढिंग जिलों में लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। चीन से मुतसिल सरहद पर भी 7 अफराद हलाक हुए हैं और 550 से ज्यादा लापता हैं। मिगलिंग काठमांडू शाहराह को कल से खोल दिया गया है, जो राजधानी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाला

0: वाली अहम सड़क है। अलबत्ता कई दिगर सड़कें अब भी बंद हैं या उनके रसाई में रखना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध को आए अचानक सैलाब के सानहे के बाद अब तक वहां 108 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों जिनका राबता मुनकते हो गया था उनसे दोबारा राबता कायम कर लिया गया है। वजारत ने कहा कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है जबकि 128 भारत नजाद अफराद भी लापता हैं जिनके पास दीगर ममालिक की शहरियत है। मकामी सरकारी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता दो दिनों में 598 भारतीय शहरी चीन के रास्ते नेपाल में पहुंच गए हैं। इस दौरान 900 भारतीय शहरी जिन्हें चीन से रवाना होना है बीजिंग में भारतीय सिफारतखाने में महफूज हैं और मकामी सरकार के जरिए या बराह रास्त राबते में हैं। इस दौरान भारतीय हुकूमत ने नेपाल के तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद के लिए आफात से निपटने के कौमी दस्ते को नेपाल भेजने की पेशकश की है। नीज भारतीय फजाइया के जरिए हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजकर फौरी इंसानी इमदाद भी फराहम की गई है। इस दौरान वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चौथी इमदादी परवाज C-130J हरक्यूलिस 11 टन इमदादी सामान के साथ कल काठमांडू के लिए रवाना किया गया है और इमदादी सामान नेपाल हुकूमत को सौंप दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा ने कहा कि इस परवाज के जरिए जरूरी अशिया और तकनीकी साजो सामान भेजा गया है ताकि नेपाल में जारी तलाश बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयों में मदद फराहम की जा सके। इससे पहले भारत ने 3 परवाजों के जरिए 57 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजा था। भारत की 11 रुकनी तकनीकी टीम ने कल नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में पनबिजली टनल्स का मौके पर जाकर मुआयना किया ताकि टनल्स में फंसे अफराद की तलाश और बचाव कार्रवाइयों में सहूलत फराहम की जा सके। डॉक्टरों नीम तिब्बी अमले और टनल इंजीनियरों पर मुश्तमिल ये टीम जुमे को काठमांडू पहुंची। नेपाल की हुकूमत ने भोटे कोशी नदी में सैलाब के ताल्लुक से ताजा अलर्ट जारी किया है और नदी के आसपास के लोगों को चौकस रहने की अपील की है। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी की तुगयानी में मजीद शिद्दत आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबरा मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व हर इंसान का एहतराम करता है और राह हक की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों को भी तस्लीम करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक इंसानियत के मौजू पर मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब भागवत ने मुसलमानों की जानिब से 2018 में दिल्ली में एक लेक्चर सीरीज के दौरान पूछे गए सवाल का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने यही जवाब दिया था। RSS के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर जनाब भागवत ने न्यूयॉर्क में यह बयान दिया है। मुत्तहिद अरब अमारात की UAE सेंट्रल बैंक ने अमारात में बैंक के मिस्र की शाखों का फौरी तौर पर खसूसी मुआयना करने का फैसला किया है। अमरीकी ट्रेजरी की जानिब से मुमकिन तौर पर दरेपर्दा ईरानी बैंकिंग नेटवर्क लेन देन किए जाने के तनाजुर में ये कार्रवाई की गई है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश और कुछ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ और गंगा के मगरबी बंगाल के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने आज बिहार उत्तराखंड मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा जैली हिमालय मगरबी बंगाल सिक्किम और विदर्भ में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर लद्दाख अंडमान और निकोबार जजायर तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकाल में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारत आज थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ खवातीन के T20 एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंधना नायब कप्तान होंगी। T20 एशिया कप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब तक हुए 5 एडिशन में से 3 में भारत जीत दर्ज कर चुका है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के तहत ताशकंद पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम मोदी का ये उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है। 4 रोजा गैर मुल्की दौरे के तहत वजीर आजम मोदी उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान जाएंगे। वहीं रोजनामा इनकलाब ने وزیر دفاع راجناتھ

0: सिंह के उस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत आज मरीख तक पहुंच गया है और खला में प्राइवेट स्टेशन और इंसानी मिशन की जानिब कदम बढ़ा रहा है। रोजनामा प्रताप ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल माहदे पर पहुंच गया है जिससे वेनेजुएला के 65 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जखायर पर अमरीका का कंट्रोल हो गया है।
1: और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है और 2400 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने भुटेकोशी नदी में सैलाब से मुतालिक ताज़ा वार्निंग जारी की है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल के अचानक सैलाब के हादसे में अब तक 108 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी चौथी खेप बजरिए तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आज के कार्यक्रम की होस्ट शिप्रा श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर प्रयागराज, और आज इस प्रोग्राम में बात शहर के विभिन्न मोहल्लों की और उनकी पहचान की। कैसे बना ये शहर खास और किस मोहल्ले ने कैसे बनाई अपनी पहचान, और बात करेंगे यहाँ के स्वाद की। किस चीज़ ने, किस स्वाद ने इस शहर को अलग मुकाम पर पहुँचाया।

भाई बात करते हैं पहचान की प्रयागराज के, तो प्रयागराज की पहचान है संगम, गंगा जमुना और सरस्वती नदियों का संगम इस शहर की ख़ास पहचान है। और ये पहचान और भी मजबूत हो गई है माघ मेले के व्यवसायीकरण से। माघ मेला जब से शुरू हुआ संगम तट पर, तब से इस शहर ने पूरे विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। और इस फिलहाल तो इस शहर का माहौल कुछ ऐसा है कि हर मोहल्ले

में पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की कुछ ऐसी दृष्टि बन रही है कि शहर में थोड़ा सा संकट का समय है और इससे बचने के लिए हम अपने को तैयार रखते हैं, बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं। फिलहाल ले चलते हैं आपको आपके घर से बिना निकले शहर के विभिन्न मोहल्लों में। तो सबसे पहले आपको हम सैर कराएंगे अंग्रेज़ी प्रयागराज की, चौंक गए ना? जी हाँ, अंग्रेज़ी प्रयागराज कहलाता है प्रयागराज का सिविल लाइंस का एरिया, और यहाँ सड़कें बिल्कुल सीधी हैं, पेड़ लंबे हैं और हर दूसरी दुकान पर लिखा है IAS PCS, और शाम को यहाँ चाय नहीं कॉफ़ी पे चर्चा होती है। और चाय तो इलाहाबाद की ख़ास पहचान है, इलाहाबाद की क्यों कहें बल्कि पूरे मानव जाति में जो लोग चाय के प्रेमी हैं ना, वो शहर में कोई ना कोई अपना अड्डा बना ही लेते हैं। फिलहाल ये सिविल लाइन जो है ना, वो चाय का एकदम अड्डा कह लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत ख़ास कुल्हड़ की कड़क चाय मिलेगी और आपकी सुबहें और शामें बिल्कुल ख़ास बन जाती हैं। आगे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा चौक का घंटा घर, और वहाँ की घड़ी भले ही कभी रुक जाए पर यहाँ की भीड़ कभी नहीं रुकती। अगर आप प्रयागराज आए और चौक की सैर नहीं की तो आप असली प्रयागराज में घूमे ही नहीं। और बात करें अगर प्रयागराज में चौक के ख़ास व्यंजनों की, तो लोकनाथ की लस्सी का कोई तोड़ नहीं है, और चाट के मामले में तो प्रयागराज मेरे ख्याल से नंबर वन पर है। यहाँ की चाट का स्वाद जो चटपटा होता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और इलाहाबाद की पहचान अगर व्यंजनों के मामले में करें तो समोसे, अगर आपने यहाँ के समोसे खा लिए ना तो फिर आप कहीं भी चले जाइए, आपको समोसे तो पसंद आने वाले ही नहीं हैं। और चौक से आगे बढ़ते हैं तो आता है कटरा। कटरे का नाम क्या है बताएं आपको? कटरे का नाम है किताबों वाला मोहल्ला। हाँ, यहाँ हवा में सिलेबस खुलता है और हर कमरे में एक लड़का है जिसके सपने में संगम नहीं सिलेक्शन है। जी हाँ, दुनिया भर के तरह तरह के मोहल्लों से, शहरों से लोग आते हैं पढ़ाई के लिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास कटरा जो है ना, वो किताबों का संगम है और यहाँ पर हर तरह की किताबें मिल जाती हैं। अगर आप आ जाएंगे यूनिवर्सिटी चौराहे पर तो यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी किताबें भी सेकेंड हैंड मिल जाती हैं, और इनके कंटेंट का तो कहना ही क्या, आपको कोई किताब कहीं नहीं मिल रही है। आप कटरा चले आइए, वहाँ पर आपको बेशक मिल जाएंगी। और जब आप चलते चलते संगम नगरी में थक जाएंगे तो गंगा किनारे आके जो सुकून मिलता है ना, उसका तो कहना ही क्या। जी हाँ, दारागंज, यहाँ कोई जल्दी में नहीं आता है, एक चाय, घाट की हवा और घंटों की आवाज़ जो सुकून देती है वो शायद ही कहीं मिल पाए। बात करते हैं जॉर्ज टाउन में, तो जॉर्ज टाउन से मुट्ठीगंज तक क्या बात है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और हवा में ताजगी भी मिलती है। हाँ, और अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से, स्टेशन से आगे बढ़ते हुए करेली में जब प्रवेश करेंगे तो करेली तो बिल्कुल नया प्रयागराज बन गया है दोस्तों। एक शहर नहीं बल्कि ये मोहल्लों का हार है और हर मोती में चमक बिल्कुल अलग है। आगे और भी बातें करेंगे प्रयागराज की। फिलहाल जो लोग प्रयागराज में जन्मे हैं, इलाहाबाद में जन्मे हैं, उनके लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक।

तो अगली बार जब आप प्रयागराज आइए तो इन मोहल्लों को ज़रा गौर से देखिएगा और यहाँ के गंगा नदी की मिठास, जमुना नदी की खटास और इलाहाबादी का चटपटा अंदाज आपको ना लुभा दे तो कहिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ के स्वाद की। जी हाँ, यहाँ की तहजीब है कि हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम उनका स्वागत इलाहाबाद के ख़ास व्यंजनों से करते हैं। तो इन व्यंजनों में शामिल होती है यहाँ की कुरकुरी क्रिस्पी जलेबी, दमालू जिसका स्वाद के कहने ही क्या। अगर आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपने कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी नहीं खाई तो बहुत कुछ मिस कर दिया है भाई। और अगर बात करते हैं कुछ और ख़ास व्यंजनों की तो यहाँ की लोकनाथ की फ्रूट क्रीम लस्सी, कुल्हड़ लस्सी और नुक्कड़ों पर जो चायों की दुकानें हैं ना उसके तो कहने क्या। और ये सिर्फ चाय की दुकानें नहीं हैं, ये हैं चर्चों के अड्डे जहाँ पर डिस्कशन करके बन जाते हैं लोग अपने मंजिलों के हमराही। और इलाहाबाद की पहचान की बात अगर करें तो यहाँ का अमरूद जो लाल वाला होता है ना वो बहुत ही ख़ास होता है और यही यहाँ की पहचान है। अगर आप कटरा से बढ़ते हुए बेली रोड की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर चुरमुरों की दुकान जो है वो आपके नाक से जो उसकी सुगंध बहती घुसती है और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको पलट के आना पड़ेगा क्योंकि उसके चुरमुरे का स्वाद बिल्कुल लाजवाब होता है। नींबू, प्याज, चना और स्प्राउट्स ये एक अलग पहचान है। आप यहाँ पर अगर कचौड़ियाँ खाएंगे ना और फुलौरियाँ खाएंगे यानी पकौड़ियाँ खाएंगे तो उसके साथ जो भुनी हुई मिर्च मिलती है वो आपके स्वाद को दुगना

कर देती है। और चाट में अगर आपने गोलगप्पे और मैश्ड टिकिया नहीं खाई तो आपने बहुत कुछ मिस किया। तो बने रहिए इलाहाबाद प्रयागराज के साथ, और साथ ही खाने के बाद जो इलाहाबादी पान होता है ना, वो यहाँ के डेजर्ट का काम करता है। तो आप जब भी यहाँ से जाइए तो यहाँ के कुछ ख़ास व्यंजन का स्वाद अपनी ज़बान पर लेके जाइए, निश्चित रूप से आप फील करेंगे बहुत ही सुकून। तो इसके साथ ही आज के नमस्कार प्रयागराज के अंक से मैं लेती हूँ विदा, और गुजारिश करूँगी आपसे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएँ हमसे ज़रूर शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर मिलते हैं किसी और अंक के साथ। नमस्कार प्रयागराज के, तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति यानी शिप्रा श्रीवास्तव को नमस्कार। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी देर में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत कर रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के कुमार सानू की आवाज में गाई इस गीत से। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अब आपको सुनवा रहे हैं लुटेरा फिल्म से मुरारी ठाकुर को। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत भी अमिताभ भट्टाचार्य का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ है, प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा, सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त केवी पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
2: भारत सरकार ने देश को एक वैश्विक खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रदेश का एमएसएमई विभाग किस तरह से ईडा और इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, कैसे प्रदेश वाराणसी और चित्रकूट के खिलौनों को तकनीक से जोड़कर विदेशों तक पहुंचा रहा है, साथ ही गुणवत्ता मानकों, नई तकनीक, ऑनलाइन बाजार, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं को इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आयुक्त और निदेशक के विजेंद्र पांडियन जी। सर, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: भारत सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के माध्यम से देश को वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का एमएसएमई भाग क्या भूमिका निभा रहा है?
3: देखिए, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्टर के रूप से है। 96 लाख के ऊपर के एमएसएमई यहाँ रजिस्टर्ड है। लगभग 1 करोड़ का एमएसएमई यहाँ काम करते हैं और यहाँ तो तकरीबन 14 से 20% एक्सपोर्ट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रहता है और बहुत सारे आइटम्स में 60-70% तक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वैसे कारपेट, टेक्सटाइल इत्यादि का। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ है ज्यादातर एमएसएमई ड्रिवन है। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार यहाँ एमएसएमई से मिलता है, इसलिए तो एमएसएमई का भेस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे वाइडर है।

0: जी, राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना जो है सर, उसके तहत पारंपरिक जो खिलौने हैं उनको और जो आधुनिक खिलौने को निर्माण है उसके बीच किस तरह का तालमेल स्थापित किया जा रहा है और इसको और विकसित करने के लिए क्या योजना अपनाई जा रही है?
1: देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे योजना चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में 2018-19 से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में उसका अच्छा योजना के रूप से फैल गया था। इस पे हम लोग 162 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, हर जनपद में कम से कम एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं और कुछ जनपद में दो तीन भी है। मान लीजिए वाराणसी में बनारस साड़ी भी है, वहाँ का वुडन टाइज भी है और वहाँ मीनाकारी वर्क भी है, इसी टाइप का मल्टीपल प्रोडक्ट भी है। उसी पे 162 आइटम को हम उसका पूरा वर्क करते हैं, प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट में, इत्यादि में। उसमें बहुत सारे जगह हमारा ट्रेडिशनल टाइस भी है, यानी मान लीजिए तो लकड़ी से बना हुआ टाई है, आज का नहीं, सदियों से पूर्वजों ने कर करके जो अपने बच्चे के देते हैं। मान लीजिए बनारस में हमारा लकड़ी से बना हुआ टाई बहुत फेमस है, साथ साथ चित्रकूट में भी बनता है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। और कुछ नया सेगमेंट है, मान लीजिए झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, वहाँ स्टफ्ड टाइस बनाते हैं, और कुछ जगह मीरठ है, जलौन है, और बाकी जगह हमारा स्पोर्ट्स का टाइस बनता है। मतलब ये एक आधुनिक टाई भी है, पुराना भी है, वो दोनों का हमें नाता निभाना है, दोनों का कनेक्ट करना है। उस पर कितने ट्रेडिशनल आर्ट मेकर्स है, उन लोगों का हम नया तकनीकी हम समझाते हैं, कितने नया तरीके से टेक्निक कराने वाले उनको एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, इसी टाइप का हम दोनों को ब्रिज करने के एक तरफ एमएसएमई काम करते हैं।
0: जी, आपने वाराणसी के और चित्रकूट के पारंपरिक खिलौनों का जिक्र किया, तो इन्हें नई पीढ़ी और नए बाजारों से जोड़ने के लिए किस तरह की योजना अपनाई जा रही है?
1: देखिए, हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चार तरह का हम इंटरवेंशन करते हैं। एक तो प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग के इंटरवेंशन, जो पहले का जो कितने टेक्नोलॉजी कौन सी चीज में बना हुआ चीज है उसको प्रोडक्ट का बिल्कुल आधुनिक करते हैं, यानी जो यूज करने वाले पेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके, मेक से लेके हम ध्यान देते हैं। और दूसरा उसका पैकेजिंग का है, आज का जो पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, जो पैकेजिंग अच्छा होता है उसका ही बिक्री अच्छा होता है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से हम करते हैं। दूसरा एक वर्टिकल हम काम करते हैं, उस पर हम मार्केट एक्सेस देते हैं, यानी ऑनलाइन में जोड़ते हैं उनका, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेके जो कितने आधुनिक जो प्लेटफॉर्म होता है उनसे मार्केटिंग का व्यवस्था कराते हैं। तीसरा इन लोग का फंडिंग का व्यवस्था कराते हैं, हम लोग 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ तक का इस योजना का जो करने वाले का लाभ मिलता है, उससे 50 लाख तक हम सब्सिडी देते हैं, फाइनेंस से जोड़ते हैं, और उनका जगह भी चाहिए उसी के सबसे जगह भी व्यवस्था कराते हैं। इसी टाइप का हम चार वर्टिकल में हम काम करते हैं, ताकि जो प्रोड्यूसर है उनका जो प्रोडक्ट से लेके, मार्केटिंग से लेके, फाइनेंस से लेके, इवन जो उनका जगह है उसी के लेके जो भी समस्या है सबको एड्रेस कराते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक लगभग 7 लाख लोग का हम इस पे आगे हम बढ़वा चुके हैं इस योजना।
0: जी, आपने पारंपरिक कारीगरों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी जिक्र किया, तो हमें ये बताएं कि जो आधुनिक डिजाइन है और पैकेजिंग है, इसके साथ साथ ऑनलाइन बिक्री से जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं?
1: देखिए, आज का मैक्सिमम जो डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं, यानी इंडिया के अंदर जो खरीदने वाले हैं, मैक्सिमम अभी ऑनलाइन में ही खरीदना पसंद करते हैं। और आज का 2-3 फेमस वेबसाइट है, पॉपुलर है, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, ONDC है, और बाकी मिंत्रा, बहुत सारे वेबसाइट्स। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो कितने भी जो पारंपरिक प्रोड्यूसर्स है उनका प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइज कराते हुए इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग ऑनबोर्ड कराने के लिए प्रयास करते हैं। 2-3 लोग के साथ हमारा डीप MOU भी साइन हुआ है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट के साथ हमारा एक माइक्रो वेबसाइट बनाने के लिए भी एक MOU साइन हुआ है। फ्लिपकार्ट में अभी एक ODOP के लिए अलग फ्लिपकार्ट ने एक साइट ही बना रखा है, और DTDC के साथ भी हमारा टाई अप है। DTDC तो कहीं भी पहुंचाना तो वो पहुंचा देता है, फिर यहाँ पोस्टल के साथ भी हमारा टाई अप है, पोस्टल भी कहीं भी किसी कोने से लेकर के एक जगह पोस्टल का पहुंचा देता है। इसी टाइप का जो कितने भी माध्यम हम अपना सकते हैं उतने अपनाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो गाँव में बनाते हुए प्रोडक्ट भी आज के शहर में और इवन विदेश में जो रहने वाले कस्टमर का भी, ग्राहक का भी पहुंच जाए।
0: जी, आपने जिक्र किया वित्तीय सहायता का, तो खासकर जो इस खिलौना बनाने के जो कारीगर हैं उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है और किस तरह की वित्तीय सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही है विभाग की ओर से?
1: देखिए, प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रशिक्षण। हम तो 3-4 तरह का योजना के अंदर प्रशिक्षण करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है, जो कितने लाभार्थी होते हैं उनका प्रशिक्षण हम लोग आधुनिक इंस्टीट्यूट से देते हैं। मान लीजिए हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हो गया और निफ्ट हो गया, जो कितने इंस्टीट्यूट है हमारा नेशनल लेवल का जो ग्रेडर इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो समझ लें। दूसरा योजना हमारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसका अंदर जो 25 ट्रेड हैं, मालाकार से लेके, मूर्तिकार से लेके, बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, उन लोगों को भी 10 दिन का हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट के साथ टाइप कराते हुए देते हैं। ये दो योजना तो हम करते हैं, उसके अलावा अनुसूचित जाति लोग का और पिछड़ा वर्ग जो लाभार्थी का अलग ट्रेनिंग 4 महीने का कोर्स हम कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ भी टाइप कराते हुए करते हैं और भारत सरकार का संस्था के माध्यम से भी टाइप कराते हुए करते हैं। इसलिए स्किलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उस स्किलिंग में बहुत सारे चीज वो अपग्रेड कर देता है। और स्किलिंग के बाद वह साथ साथ हम लोग RPL सर्टिफिकेट एक इश्यू कर, यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है। मान लीजिए ट्रेडिशनल जो उसका

0: श्रमिक होगा, आर्टिसन होगा, कारीगर होगा, उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं रहता है, उसके वजह लोन नहीं मिल पाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं आ पाते हैं। हम लोग उनका आरपीएल सर्टिफिकेट दिलाते हैं, उसी की वजह उनका आगे भी भविष्य के लिए एक अच्छा एक रास्ता खुल जाता है।
1: जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारा फोकस करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जो युवा उद्यमी इस खिलौना निर्माण के बिजनेस में आना चाहते हैं या खिलौना निर्माण शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं हैं और खासकर प्रोत्साहन राशि के तौर पर, जैसे आपने लोन का जिक्र किया, ऐसे कौन कौन सी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उसके बारे में?
0: उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग ऐसे विभाग है, तकरीबन 7 योजना हमारा है, पे आप लाभ ले सकते हैं। खासतौर पे स्टार्टअप कंपनी है और नया पीढ़ी किस पे आने चाहते हैं, ताकि इस पे मोटा मोटा बता दूं, ये जो आपका जो खिलौना का जो बिजनेस है, वो इसका इंडिया का जो बिजनेस है 1.9 बिलियन US डॉलर का मार्केट है अभी इस समय में, वर्तमान समय में। अभी आने वाले तो ये 3 साल में ये बढ़ने वाले 4.6 बिलियन डॉलर का, और इसका हर साल कम से कम 10% बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ रही है। यानी ये सेक्टर फ्यूचरिक सेक्टर है और एक इसका मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाली है। और इस पे और एक अच्छाई भी है, जो पहले बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से बाकी कंट्री से इंपोर्ट होता था, वो अभी इंपोर्ट भी कम होने लगा, ताकि लोकल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उसका मार्केट के कैप्चर करना शुरू कर दिए। अभी फिलहाल हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंपोर्ट के लिए मेरा 370 मिलियन डॉलर पिछले साल था, इस साल घट के हमारा 230 हो गया, वो घट रही है। यानी जो लोकल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसे ध्यान रखते हुए कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी युवा शुरू करने चाहते हैं, मैं सलाह देता हूँ, एक हमारा स्कीम है सीएम युवा योजना, उसका अंदर 5 लाख का लोन आपका बिना ब्याज का, बिना गारंटी का मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति और केवल कक्षा 8 पास हो वो एलिजिबल है, ऑनलाइन में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगता है, 4 साल का ब्याज 0 है और आपका कोई गारंटी भी नहीं लगेगा, और ओवर एंड अबो 10% आपको सब्सिडी भी सरकार देती है। यानी आप लेते हैं हमसे 5 लाख रुपया, आप वापस करते हैं केवल 4.5 लाख रुपया 4 साल के अंदर इस किस्त में। ये तो 5 लाख तक का है, उससे ज्यादा किसको चाहिए, मान लीजिए 10 लाख का किसी का योजना चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त योजना है, उस पे भी ले सकते हैं, उस पे भी आपका 10% का अनुदान मिलेगा। और आप किसी का 25 लाख चाहिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर 25 लाख तक का आप लाभ ले सकते हैं, और ज्यादा भी बड़े स्केल में करना है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, उसमें 50 लाख तक का आप आराम से बिना गारंटी का कम सस्ते वाले ऋण का आप लोन ले सकते हैं। यदि आपको बड़े बिजनेस कराना है, उसको 20 करोड़ तक का सिडबी के माध्यम से वेंचरिंग कैपिटल का लोन आपको दिला दे। इसलिए 5 लाख के लेके अब 20 करोड़ तक का अनेक योजना है, अब किसी भी लेवल पे एंट्री के हिसाब से, आपका स्केल के हिसाब से आप उसको प्राप्त कर सकते।
1: महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए क्या कोई विशेष पहल की गई?
0: एमएसएमई में देखेंगे, एमएसएमई सेक्टर बेसिकली महिला ड्रिवन सेक्टर है उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर 70-80% हमारा जो इंडस्ट्री है महिला से बैकअप है। खासतौर पर ODOP सेक्टर है, इसमें 80% महिला इन्वॉल्व है, एंड महिला जो नेचुरली वो आर्टिस्टिक रहते हैं उस पर, इसलिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारा टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट में उनका आधुनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए नेचुरली हम महिला के ही इसको आगे करते हुए ले जा रहे हैं। उनको नेचुरल रुचि भी है, साथ साथ बहुत अच्छा काम भी करती है, और साथ अकेले हमारे विभाग नहीं, उस पर और एक विभाग का जो है NURLM कहता है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन का एक स्कीम चलता है, लखपति दीदी का योजना एक चलता है, उसमें भी बहुत सारे महिला समूह इसी से जुड़े हुए समूह को भी हम लोग बनाने के लिए मदद किए। उन लोग महिला समूह बनने के बाद हम इंडस्ट्री विभाग मिलते हुए उनका प्रोडक्शन लाइन में आगे ले चलते हैं उसमें। इसलिए महिला का ड्रिवन और महिला बेस्ड सेक्टर ही है ये, इसलिए जो महिला का हमेशा आगे।
1: जी, आपने जैसे कहा कि स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा जा रहा है और वो भी आगे रहे, तो एमएसएमई विभाग जीडा और इन्वेस्ट यूपी और अन्य विभागों के साथ मिलकर ये खिलौना उद्योग के इकोसिस्टम को कैसे विकसित करने में मदद कर रहा है?
0: देखिए, एमएसएमई और सारे जो नोएडा गीड़ा में क्या है ना, ये जो भी सेक्टर डेवलप होता है क्लस्टर में डेवलप होता है। मान लीजिए हमारा जो वेस्टर्न यूपी का है क्लस्टर है, खासतौर पे मीरठ एंड अराउंड मीरठ, हमारा गाजियाबाद के आसपास अच्छा खासा एक स्पोर्ट्स का क्लस्टर बनी हुई है। स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइस का भी वहां क्लस्टर बन गया है नेचुरली। और दूसरा क्लस्टर है हमारा वाराणसी मिर्जापुर से सटा हुआ इलाका में और चित्रकूट से सटा हुआ इलाका में, ये ट्रेडिशनल लकड़ी से बना हुआ क्लस्टर है, ये अच्छा से उभर के आ रही है वहाँ नेचुरली। वहाँ बहुत सारे लाखों संख्या में आर्टिसन इस पे शामिल है। और यहाँ बुंदेलखंड रीजन में झांसी, चित्रकूट और ललितपुर, इसी सेक्टर में सॉफ्ट टाइस का बनते हुए जो खिलौना है वो सेक्टर बन रहा है। हम लोग जो मेनली क्या है ना, जो जगह जगह पे मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ईडा, ये तीनों लोग का प्रेजेंस अच्छा खासा है, उन लोगों के इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, और उन लोगों के पॉलिसी में हम रिक्वेस्ट भी किए हैं, बहुत सारे पॉलिसी में इन लोगों का जो टाई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आरक्षण कराने के लिए और साथ साथ सब्सिडी देने के लिए भी हम प्रयास कर कर रहे हैं, और आगे भारत सरकार का पॉलिसी कब भी आएगा उसको अपनाएंगे, और राज्य सरकार भी जल्दी पॉलिसी बनने के

0: स्थिति पे है यदि हमारा टाइम मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बन जाएगा। अभी फिलहाल एमएसएमई पॉलिसी के हिसाब से हम आच्छादित कर रहे हैं उनको, जो भी लोग टाइम मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है उनका जो जमीन खरीदने वाले में 100% स्टैंप के छूट मिलता है, और 25% हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, कितने भी उनका इक्विपमेंट्स लगा हो उसको कैपिटल सब्सिडी मिलता है। और यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट का चार्ज 100% गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। ये फिलहाल जो भी एमएसएमई सेक्टर है इतने तो वो ले सकते हैं। और साथ साथ हम ईडा से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से मदद लेते हैं इन लोग का अलाटमेंट में, जमीन अलाटमेंट, किसी को जमीन चाहिए उनका अलाट करने के लिए कोई दिक्कत है तो फिर उसको कोऑर्डिनेट कराते हुए उनकी जमीन भी अलाट करवा।
1: आपने नोएडा का जिक्र किया, तो वहां पे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू है, तो बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने में ये किस तरह से मदद कर रहा है?
0: देखिए जेवर तो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट के रूप से उभर के आ रहा है, और सबसे बड़ा ये कमर्शियल कार्गो टर्मिनल का भी प्लानिंग चल रहा था। आप जान ही रहे हैं वहाँ का जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास इलाका का एक वरदान है जेवर एयरपोर्ट, और साथ साथ हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग का, एमएसएमई का भी वरदान है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट में ज़्यादातर क्या होता है लार्ज, ताकि हम लैंडलॉक्ड स्टेट है, ताकि हम तो चारों तरफ लैंड से बंधे हुए हैं, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए दो ही माध्यम है, यदि तो हम फ्रीट कॉरिडोर माध्यम से मुंबई तक का हमारा पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो लाइट वेट होता है हमारा हवाई अड्डा के माध्यम से भेज सकते थे। अब ये एयरपोर्ट का कार्गो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह हमारे एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है बहुत गुना बढ़ गया है। अभी तो सॉफ्ट आइस है, स्टफ आइस है, जो कितने लाइट वेट टाइस है, आराम से हम हाई वैल्यू आइटम के साथ साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक तरफ वरदान है हम लोग का, इस पर अच्छा से लिवरेज करेंगे।
1: आपके अनुसार कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो भविष्य में खिलौना निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में उभरेंगे?
0: देखिए ये इस पे दो क्लस्टर में नेम कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल रूप से वाराणसी एक नेचुरल क्लस्टर के रूप से उभर के आ रहा है, और वहाँ भी एक इंटरनेशनल एयर कार्गो बन रहा है, इसलिए वहाँ से एक्सपोर्ट करने के भी संभावना ज़्यादा है। वाराणसी अपने आप अपने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्टशिप के लिए पहचान है, लाखों लोग पहले से जुड़ चुके हैं, इसलिए उसका अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और नया जो आधुनिक टाइज जाने के लिए वो नोएडा एंड अराउंड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हब बन रहा है मेरा, जो मीरठ के आसपास स्पोर्ट्स का भी कुछ आइटम्स वो इस पे खिलौना में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ हमारा अपैरल का भी अच्छा बड़ा क्लस्टर है, इसलिए जो अपैरल से जुड़े हुए चीज को भी हम इसके खिलौना में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा अवसर, ये दो हमारा उभरते हुए क्लस्टर के रूप से आ रहा।
1: सर आपने बताया कि जिस तरह से बड़े क्लस्टर के रूप में ये निकल रहे हैं, तो युवाओं के रोजगार के रूप में आप देखते हैं ये पूरा क्षेत्र कितना है रोजगार आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में विकसित करेगा?
0: देखिए एमएसएमई का एक एवरेज एक रेशियो होता है, एक छोटी सी भी माइक्रो यूनिट के

0: हमारा उभरते हुए क्लस्टर के रूप से आ रहा।
1: सर आपने बताया कि जिस तरह से बड़े क्लस्टर के रूप में ये निकल रहे हैं, तो युवाओं के रोजगार के रूप में आप देखते हैं ये पूरा क्षेत्र कितना है रोजगार आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में विकसित करेगा?
0: देखिए एमएसएमई का एक एवरेज एक रेशियो होता है, एक छोटी सी भी माइक्रो यूनिट के टाइनी यूनिट्स कहते हैं, वो भी तो 4 लोगों को रोजगार देता है, और औसत हमारा एमएसएमई यूनिट का 7 लोग का रोजगार देने के लिए। अब मान लीजिए हमारा इसी सेगमेंट में 1 लाख भी यूनिट हमारा इस पे टाई मैन्युफैक्चर में खुल जाएगा, कम से कम 7 लाख से लेकर 10 लाख लोग का आराम से 1 साल के अंदर उन लोग को रोजगार मिल सकता है 1 साल में। और भविष्य में कम से कम मान के जा रहा हूँ तो 50 से 60 लाख युवा के लिए रोजगार देने का अवसर इस पे है, अवेलेबल है।
1: निश्चित रूप से आपने जैसे बताया उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में उभरेगा और बड़ी संख्या में रोजगार भी देगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त KV पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है, पेश है उर्दू कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आइए सुनते हैं जासूसी सीरीज शह और मात का दूसरा एपिसोड मैं कौन हूँ। तदवीन अनाहिद हसन की, तहरीर और पेशकश है आसिफ इकबाल की।
4: सामईन आदाब, आज के हमारे उर्दू प्रोग्राम में किस्तवार जासूसी सिलसिले की दूसरी किस्त पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है शह और मात। आज की कहानी का उन्वान है मैं कौन हूँ। पेश है इसकी अगली किस्त। इस जासूसी सीरीज के तमाम किरदार और वाकयात तख्लीकी हैं। इनका किसी भी हकीकी शख्स, वाक़े या मकाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर किसी भी किस्म की मुशाबहत पाई जाती है तो उसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए।
5: लाख छुपा लो सच्चाई को, जुर्म के काले पर्दों में अदल आया हो जाएगा, फिर भी दुनिया के बाजारों में।

0: अभी तक आपने सुना
1: डिटेक्टिव सैयद हसन मुज्तबा और कामरान खान हुकूमत की तरफ से किसी खास मिशन पर लखनऊ भेजे गए थे। जांच के सिलसिले में दोनों मूसाबाग के पास एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वहां दोनों को एक तहखाना मिलता है और वहीं कुछ बदमाश दोनों पर हमला करते हैं। इस अमल में एक सिपाही जख्मी हो जाता है। सुल्तान के आदमी किसी को पकड़ कर लाए थे और बांधकर अजियत दे रहे थे। सुबह होटल में दोनों को एक गुमनाम खत मिलता है जिसमें कोई अजनबी उनको धमकाता है और ललकारता है कि मैं कौन हूं, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अब आगे
2: बक रहा है ये अजनबी क्या कुछ, खुदा करे न समझे कामरान कुछ भी। साहब अब ये क्या बला है?
3: ये हमारा हदफ है कामरान, यही हमारी मंजिल है। ज्यादा दानिशमंदी में इसने अपने आप को सामने कर दिया है।
2: तो अब
3: फिलहाल हमको ये होटल छोड़ना पड़ेगा। बाहर ऐसे निकलेंगे कि किसी को खबर ना हो।
2: तो गायब हो जाते हैं।
3: बेटे हंसो नहीं, पहली बार काम की बात की है। सुनो, इस होटल में एक म्यूजिकल ग्रुप ठहरा हुआ है जिसको आज 10 बजे निकलना है, हम उन्हीं के साथ निकलेंगे।
1: हसन तुरंत जाकर उस जमात से मिला, उनको तसल्ली देते हुए पूरी बात तफसील से बताई। उनका रहनुमा दोनों को अपने साथ ले जाने पर राजी हो गया। 10 बजते ही दोनों तबला और हारमोनियम लिए बाहर निकले और वैन में बैठ गए। वो वैन होटल से निकल गई। हजब तबक को बाहर दो लोग निगरानी के लिए खड़े थे, लेकिन वो धोखा खा गए। कुछ दूरी पर जाकर दोनों वैन से उतर गए। कामरान बोला,

0: क्रिया ए कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम।
1: बड़ा अच्छा शेर है, एक शेर मैं भी तुमको सुनाता हूँ।
0: जी इरशाद हुजूर।
1: कभी मैं देखता हूँ उसकी रहमत, कभी मैं अपनी चादर देखता हूँ, उस रब का भी तो शुक्र अदा करो जिसने इस मुसीबत से हमें बचाया।
0: वैसे ये तो सच है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है।
1: कामरान कॉफी पीनी है?
2: जब आपको पता है मैं कॉफी नहीं पीता, फिर पूछकर मेरी जान जलाना मकसद है क्या आपका?
1: वो क्या है ना, मैं अलशिफा को बुलाने जा रहा था कॉफी पे।
2: अलशिफा? अलशिफा कब कब कहाँ से बुलाने जा रहे हैं?
1: बस थोड़ी देर में।
2: हाँ हाँ फिर तो सही है। वैसे जनाब मैं सच बताऊँ ना, तो ऊपर वाले ने क्या शय बनाई है कॉफी भाई, क्या लज्जत है, क्या सुकून है कॉफी में। इतनी पेचीदगी में सर दर्द हो रहा है, अब तो कॉफी लाजिम है।
1: नौटंकी कहीं का।
3: हसन ने अलशिफा को फोन किया और निशातगंज के एक कॉफी हाउस में मिलने को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुरगंज में सुल्तान के ऑफिस में,
4: आज मैं इसको इतनी अजियत दूंगा कि आज या तो ये बोलेगा या फिर इसकी आंखें बंद होंगी। बोल कहाँ है मेरा सोना।
3: वो आदमी बोलने की हालत में नहीं था, उसके मुंह से कुछ ना निकला। सुल्तान ने उसको बिजली के झटके दिए और बोला,
4: बोल दे जिंदगी कीमती है या सोना, बोल देगा तो बच जाएगा।
5: बेच दिया।
3: इतना सुनकर सुल्तान आपा खो बैठा। उसने बिजली के तार उस शख्स के हलक में डाल दिए, बेचारा तड़प कर फौत हो गया।
5: सुल्तान भाई इसकी तो रूह जिस्म से परवाज कर गई है।
4: फेंकाओ इसके बेजान जिस्म को कहीं कचरे में, और खबरदार सोने की बात कहीं बाहर न जाए, मालिक को पता नहीं चलना चाहिए।
5: अच्छा सुल्तान भाई, जैसा आपका हुक्म।
3: तभी सुल्तान का फोन बजा।
4: सुल्तान बोल रहा हूँ।
6: सुल्तान की तुम? तुमको बोला था उन दोनों को ठिकाने लगाओ, काम आखिर क्यों नहीं हुआ?
4: मालिक मैंने अपने बंदे भेजे थे, चारों काबिल थे, वो एकदम से पुलिस वाले आ गए।
6: बकवास बंद कर, तू जानता भी है किससे पाला पड़ा है? सामने तेरा बाप डिटेक्टिव हसन है।
4: डिटेक्टिव हसन? वही मशहूर जासूस, वो यहाँ क्या कर रहा है?
6: अंडे खाने आया है यहाँ बेवकूफ। कल अगर मैंने अपने आदमी ना भेजे होते तो तुम्हारे चारों आदमी आज जेल में होते।
4: मैं माफी मांगता हूँ मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा।
6: होना भी नहीं चाहिए, गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं है। हसन हमें दीवानों की तरह ढूंढ रहा है। मोहन को बोलो कुछ दिन के लिए काम रोक दे, समझे?
3: दूसरी तरफ निशातगंज के कॉफी हाउस में एक टेबल पर हसन और कामरान बैठे थे। वहाँ काफी चहल पहल हो गई थी। कामरान चहकते हुए किशोर कुमार का गाना गुनगुना रहा था।

0: खबर।
1: ये जो तुम्हारा मुंह है ना, कभी इस पर ढक्कन भी लगा लिया करो, 2 मिनट तुमसे चुप नहीं बैठा जाता।
2: कामरान चढ़कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला,
3: मैं जो काटा हूँ तो चल मुझसे बचाकर दामन, मैं हूँ गर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको, मेरा बैठना अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा फिर मैं बाहर ही चला जाता हूँ।
2: असल में कामरान काफी पीने से बच रहा था, उसे बाहर जाने का कोई बहाना चाहिए था। हसन की बातों से उसे मौका मिल गया और वो बाहर जाकर चाय पीने लगा। हसन कॉफी हाउस में बैठा इडली सांभर खा रहा था। उधर कामरान को चाय पीकर रूहानी तस्कीन हासिल हुई। तभी कामरान ने अलशिफा को आते देखा। हस्बे आदत अलशिफा को देखते ही कामरान का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था।
3: आदाब अर्ज है मोहतरमा।
4: आदाब।
3: मैंने हसन को बोला था कि कॉफी पर मैडम को जरूर बुलाइए, और अच्छा हुआ आप आ गई।
4: सर कहाँ है?
3: आइए अंदर चलते हैं, हसन अंदर ही है।
4: गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, वैसे मुझे कॉफी बहुत पसंद है।
3: और मुझे भी।
4: अच्छा।
2: हसन कुछ कहने ही वाला था

0: मगर कामरान ने हसन की बात काट दी। हसन ने कॉफी का ऑर्डर दिया और आंखों ही आंखों में कामरान को दफा होने का इशारा किया। कामरान ने इनकार करने का इशारा किया।
1: अरे कुछ बोलेंगे भी, आप लोग तो एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं। सर आप बताइए, कोई खास बात तो होगी, सिर्फ कॉफी पीने को तो आपने नहीं बुलाया होगा।
0: हसन कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सुनील था।
2: हेलो।
3: हेलो सर, इंस्पेक्टर सुनील बोल रहा हूँ। सर यहाँ कुड़िया घाट पे हमें एक आदमी की लाश मिली है, फोरेंसिक वाले आ चुके हैं, आप कहें तो हम जांच के बाद लाश उठा लें।
2: नहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।
0: फोन काटकर हसन कुछ सोचने लगा। कामरान और अलशिफा हसन को ही देख रहे थे। फिर हसन ने जेब से अखबार का एक टुकड़ा निकाला।
2: अलशिफा, ये इकलौता अखबार है, इसमें बाराबंकी, सीतापुर और काकोरी के गांवों में नकली गहनों की कुछ खबरें छपी हैं।
1: अच्छा,
2: मैं चाहता हूँ तुम बाराबंकी जाकर पूरे मामले की तफ्तीश करो। मुझे फैक्ट्री जाना है और उस सिपाही से भी मिलना है जो कल जख्मी हुआ था।
1: जी सर।
0: इतनी देर में कॉफी भी आ गई।
3: मैं भी चला जाता हूँ मैडम के साथ।
0: कामरान ने कॉफी का एक घूंट लिया जो बमुश्किल उसके गले से नीचे उतरा। हसन और अलशिफा कॉफी पी रहे थे।
2: तुम क्या करोगे जाकर, तुम मेरे साथ चलो।
3: अरे अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो और उसने मैडम को भी देख लिया हो सकता है हमला हम पर भी हो जाए, तो मैडम का अकेले जाना ठीक नहीं है।
1: सर वैसे ये एकदम से बाराबंकी कहाँ से आ गया? इसमें तो लिखा है नकली गहने बेचने वाला पकड़ा गया, कोई सूरज नाम का बंदा है शायद।
0: हसन ने जवाब ना दिया, वो कामरान की बातों को सोच रहा था। भले ही कामरान शरारत में बोल रहा था मगर उसकी बातों में वजन था। अलशिफा को अकेले भेजना ठीक नहीं था। हसन बोला,
2: अलशिफा मुझ पर भरोसा करो, कामरान को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा।
0: कामरान का जैकपॉट लग गया था, उसकी खुशी का ठिकाना न था। दोनों ने कॉफी पी ली थी, कामरान की कॉफी वैसे ही रखी रही।
3: चलिए मैडम जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएगी।
1: पहले अपनी कॉफी तो खत्म करिए।
3: अरे हम यहाँ मिशन पर आए हैं, कॉफी पीने नहीं।
0: कामरान की ओवर एक्टिंग से हसन खार खा रहा था। अलशिफा अपनी कार से आई थी, वो कार से निकलते हैं। दोनों के जाने के बाद हसन भी सिपाही से मिलने अस्पताल निकल गया। कार में कामरान का जोश उरूज पर था।
3: वैसे आपको शेरो शायरी में दिलचस्पी तो है ना?
1: जी सुनती तो हूँ।
3: दाग दहलवी का क्या खूब शेर है, उफ खुदाया, आईना देख के कहते हैं सवरने वाले, आज बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।
1: बहुत खूब, मैं भी आपको परवीन शाकिर का एक शेर सुनाती हूँ। अर्ज किया है
3: जी इरशाद।
1: हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियाँ नहीं खुलती।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, बजा फरमाया आपने।
0: अलशिफा के शेर ने कामरान के जोश पर पानी फेर दिया था। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में हसन सिपाही की अयादत के लिए आया था। सिपाही अब खतरे से बाहर था और अच्छी हालत में नजर आ रहा था। उसे बेहतर हालत में देखकर हसन को सुकून हुआ। हसन बोला,
2: जवान इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। अब कैसी तबीयत है?
4: मैं ठीक हूं साहब, कुछ बताना चाहता हूं। कल रात को खिड़की के बाहर मैंने समर सिंह को देखा था, सुल्तान का आदमी है, खूब पहचानता हूं।
2: सुल्तान? ये सुल्तान कौन है?
4: ठाकुरगंज का बदमाश है साहब, बड़े लोगों की सोबत में उठता बैठता है, ऊपर तक पकड़ है इसकी। मेरा नाम न लेना साहब।
2: ठीक है जवान, अब आराम करो, फिर मिलेंगे।
0: अस्पताल से हसन कुड़िया घाट के लिए निकला। कुड़िया घाट पर पुलिस पहुंची हुई थी और पुलिस को लोगों को संभालने में दुश्वारी हो रही थी। लोगों का मजमा तमाशा देखने जमा हो रहा था। वहां इंस्पेक्टर सुनील मुंतजर था।
2: बोलो सुनील, क्या मामला है?
3: सर ये डेड बॉडी किसी राघव नाम के आदमी की है, लोग बच्चा भाई बोलते थे, सुल्तान

0: आदमी है।
1: एक घंटे के अंदर ही दो बार सुल्तान का नाम सुनकर हसन को जैसे झटका लगा।
2: इस सुल्तान के बारे में क्या जानते हो सुनील?
0: सर ये एक मुजरिम है, कई बार पकड़ा गया, दो बार तो मैंने ही पकड़ा था, कहीं लंबी सेटिंग है इसकी, हर बार बच निकलता है। ठाकुरगंज में इसकी वेल्डिंग की दुकान है। दुकान तो दिखावे के हिसाब, मगर मेरे मुखबिरों ने बताया है कि कसीनो का काम करता है, सब दो नंबर की कमाई है।
2: और ये बच्चा भाई, इसका क्या किस्सा है?
0: अरे सर अकेला था, घर पर बस माँ है इसकी, बेरोजगार था, सुल्तान की वेल्डिंग की दुकान में काम करता था, कभी किसी जुर्म में तो नहीं पकड़ा गया, हो सकता है सुल्तान ने किसी जुर्म में मुलव्वस किया हो।
2: ठीक है सुनील, लाश को भेज दो, मैं तुमको फ्री होकर फोन करूंगा, अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, पता लगाओ फैक्ट्री किसके नाम पर है।
0: ठीक है, ओके सर।
1: हसन के अंदर कुछ चल रहा था जो उसने जाहिर ना होने दिया, वो फैक्ट्री के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अलशिबा और कामरान बाराबंकी के उस थाने में पहुंचे जहां सूरज बंद था। दोनों को कैदी से बात करने की इजाजत मिल गई थी।
3: सूरज, हम दिल्ली से आए हैं, जानना चाहते हैं तुमने नकली गहने क्यों बेचे। ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ी रिपोर्टर हैं, तुम्हारी खबर चलाकर तुमको इंसाफ दिलाएंगी।
4: इंसाफ? कल से पुलिस को बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस लालच में आकर बेच दिया था, मुझे क्या पता वो नकली है।
5: साफ साफ बताओ, तुमको ये गहने किसने दिए थे?
4: बच्चा भाई ने।
1: सूरज शुरू से सब बताता चला गया कि बच्चा भाई ने गहने लाकर बेचने को दिए थे, उसे तो बस कमीशन मिला था।
3: अब तो मुझे ये बात हसन को बतानी ही होगी।
1: कामरान ने फोन करके हसन को पूरी बात बताई।
2: हाँ कामरान, बोलो क्या बात है?
3: सर ये सूरज नाम का बंदा किसी बच्चा भाई का नाम ले रहा है, उसी ने नकली गहने लाकर इसे बेचने को दिए थे।
1: बच्चा भाई का नाम दिन का तीसरा धमाका था हसन के लिए।
2: बहुत अच्छे कामरान, वापस आकर मुझसे मिलना, अभी मुझे फैक्ट्री जाना है।
1: बात करके हसन सीधा फैक्ट्री पहुंच चुका था। वहां पुलिस ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया था। हसन ने तहखाने का मुआयना किया, वहां हसन की मुलाकात फॉरेंसिक वालों से हुई।
2: कुछ पता चला यहाँ की जमीन और दीवारें क्या बोलती हैं?
6: सर यहाँ हमें कुछ कतरे कॉपर के मिले हैं, कुछ केमिकल के बारीक कतरे मिले हैं जिनको जांच के लिए लैब भेजा है, उम्मीद है शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी।
1: सुराग की कड़ियां हसन के दिमाग में जुड़ रही थी, बजाहिर वो एकदम मुतमईन था। हसन ने फोन निकाला और कामरान को फोन किया।
3: हेलो, हाँ मोहतरम बोले।
2: कहाँ हो अभी?
3: बस बाराबंकी से निकल चुके हैं।
2: अलशिफा तो ठीक है ना?
0: अब बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ठीक हैं, मैं उनके साथ हूँ ना।
2: तभी पूछ रहा हूँ, वो ठीक है ना?
0: अरे कुछ तो दोस्ती की लाज रख लेते, सही कहा था खुमार साहब ने, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए।
2: ज्यादा बकोमत, आज हम पुलिस के मेहमान घर में रुकेंगे, मैसेज से पता और लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं पहुंच जाना।
1: रात को हसन और कामरान दोनों खाना खा रहे थे, दिन भर की भाग दौड़ का किस्सा एक दूसरे को सुना रहे थे। तभी एकदम से हसन का फोन बजा। फोन करने वाला इंस्पेक्टर सुनील था।
2: हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सुनील, कैसे याद किया आपने इतनी रात में?
0: सर आप पहले जिस होटल में ठहरे थे और जिस कमरे में थे, वहाँ हमला हुआ है, गोलियां चली हैं, क्या आप आना चाहेंगे?
2: बस थोड़ी देर में आते हैं। कामरान, हम जिस होटल में थे, जिस कमरे में थे, वहाँ गोलियां चली हैं।
0: तभी आपने पहली फुर्सत में होटल छोड़ दिया था, अब वैसे एक कदम आगे की सोचते हैं आप।
1: खाना खाकर हसन और कामरान उसी होटल में पहुंचे, कमरे का नजारा देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे बंद कमरे में दरवाजे के पीछे से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हों। कमरे की दीवारें इस बात की गवाही दे रही थी। तभी इंस्पेक्टर सुनील ने एक दीवार की तरफ इशारा किया, दीवार पर लिखा था, मैं कौन हूं। कौन था ये अजनबी जो हसन और कामरान के पीछे पड़ चुका था? सुल्तान का

0: क्या हुआ? क्या अब वो सीधा कानून की गिरफ्त में आने वाला था? क्या था नकली गहनों का राज? जानिए हमारे अगले एपिसोड में।
1: डरती हैं अहले जुर्म हसन कामरान से, शमशीर जब भी निकली है उनके मियां से, छुप जाएं कहीं जाके वो दुनिया की नजर से, मुजरिम को ढूंढ लाएंगे सारे जहां से।
2: इस ड्रामे को अपनी खूबसूरत आवाजों से आरास्ता करने वाले सभी लोगों के इसमें गिरामी और किरदारों का तारुफ इस तरह है। रावी सुरेंद्र राजेश्वरी, सैयद हसन मुश्तबा आसिफ इकबाल, कामरान खान शमसुल आरफीन, सुल्तान मोहम्मद उमेर अलशिफा, शाइस्ता जाहिद, अजनबी सरगना जमशेद सिद्दीकी, सुल्तान का आदमी डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर। तहरीर और पेशकश आसिफ इकबाल की है। सामईन अपनी कीमती आरा आप हमको जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157, 7991778157। अब आज के उर्दू प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आदाब।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहली पेशकश संदेशों के बाद।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
7: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
6: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
7: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
8: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं चित्रा चौरसिया। इनके स्वर में सबसे पहले सुनवा रहे हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय के

0: उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे संगीता मिश्रा और अरविंद कुमार सिंह के स्वर में लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं संगीता मिश्रा के स्वर में ये देवी गीत।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब अंत में आपको सुनवा रहे हैं अरविंद कुमार सिंह के स्वर में निर्गुण।

इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमात्री अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं सागर फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की दो आवाजों में इस गीत से।

एसपी चौहान इस फिल्म से आप सुन रहे थे सोनू निगम को, आपका साथ दे रही थी मिस पूजा और बोल थे अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म चांदनी से, सुरेश वाडेकर की आवाज़ है, आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चांदनी फिल्म से सुरेश वाडेकर को, और अब आपको सुनवा रहे हैं अजनबी फिल्म से समीर अंजान की रचना, अनु मल्लिक का संगीत है, आवाज सुनिधि चौहान की।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अगली रचना मजरू सुल्तानपुरी की कलम से, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम काला पानी। सुरों से सजाया एसटी वर्मन ने।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: प्रयागराज में एयर ज्वेलर्स लेकर आए हैं रक्षाबंधन पर धमाकेदार ऑफर। पाइए डायमंड वैल्यू पर फ्लैट 70%, गोल्ड की बेकिंग चार्जेस पर 35% तक की छूट, साथ ही पुराने गहनों के एक्सचेंज पर 0% की कटौती। स्पेशल ऑफर 31 अगस्त तक ही उपलब्ध। पधारे एयर ज्वेलर्स, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइंस।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में, कृपया इंतजार करें।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये
3: मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी हाँ आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही

0: दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि ये काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
3: नमस्ते सर, नमस्ते।
2: भाई मुझे पता चला है, न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
3: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
2: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
3: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
2: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
3: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री

0: में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीस आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था। तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके। तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया, इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक

एक संकल्प है साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर
अपने कारोबार को

आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी। स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों,

कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैसालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैसालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी
और इनोवेशन

के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था, इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था, तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है।

हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों

0: एक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्ण विचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्णशक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित् कालपूर्वं जनसञ्चारमाध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान् यत् अयं विचारः अत्यन्तं सरलः अस्ति। भवान् अस्यां जालपुटिकायां गत्वा स्वेच्छया कञ्चन एकं वर्षं चिनोतु। तत्र भवान् सारल्येन ज्ञातुं पारयिष्यति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासनमासीत्। मया अपि एतत् अत्यन्तं रुचिकरं प्रतीतम्। अहं चिन्तितवान् यत् अस्मिन् विषये अधिकतरां सूचनां प्राप्येत। मया ज्ञातं यत् कार्यमिदं मुम्बई नगरे निवसता श्रीमता कृष्णा शेषाद्रिणा कृतमस्ति। रोचकतमः पक्षः अयमस्ति यत् कृष्णा महोदयेन स्वस्य जालपुटिकायाः नामापि अत्यन्तं सरलमेव कृतमस्ति। www.bharatrajya.com तेन कृतस्य अस्य प्रयत्नस्य विषये भवन्तः सर्वेपि अवश्यं जानीयुः। अतः अहं चिन्तितवान् किमर्थं न साक्षात् श्रीकृष्णा महोदयेन सहैव सम्भाषणं करणीयम्। सखायः, कृष्णा महोदयः अस्माभिः सह दूरभाषामाध्यमेन सम्बद्धो भवति। प्रधानमन्त्री, कृष्णा महोदय नमस्ते। कृष्णा शेषाद्रि, नमस्ते महोदय, नमस्ते। प्रधानमन्त्री, भ्रातः, मया ज्ञातं यत् न भवान् प्रविधि जगतः, न च भवान् इतिहासस्य अध्यापकः, पुनरपि भवता प्रविधि ज्ञानस्य प्रयोगं कृत्वा इतिहासस्य जालपुटं निर्मितम्। अतः मम मनसि महती जिज्ञासा वर्तते, एतत् सर्वं कथं सम्भूतम्? कृष्णाशेषाद्रि, धन्यवादाः महोदय। भवता सह सम्भाषणस्य अवसरः मम कृते महत् सौभाग्यमस्ति। यदि स्वविषये किञ्चित् कथयेयं तर्हि महोदय, अहं पूर्वम् एकः अभियन्ता आसम्। पुनः मया व्यवसाय प्रबन्धने स्नातकोत्तरस्य उपाधिः प्राप्तः। अनन्तरं विपणनक्षेत्रे गतवान्। किन्तु एतत् सर्वं यदा करोमि स्म तदापि बाल्यकालादेव मम इतिहासविषये महती रुचिः आसीत्।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 बजे से, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

अब से कुछ ही देर में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित ब्रज नारायण का राग मुल्तानी में सरोद वादन। फिल्म संगीत कार्यक्रम 12:30 बजे होगा। हेलो अनुरोध, ये प्रोग्राम पेश करेंगी मधु कुमार। समय 1:15।

लोकगीत कार्यक्रम का समय होगा दिन में 2:30 बजे। कलाकार होंगे विकास श्रीवास्तव। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, जिसमें आज का आकर्षण स्नेहलता श्रीवास्तव की कहानी लालच के लड्डू। पांच बजकर 15 मिनट पर युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाड़ी होगा। शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में आज सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार से की गई बातचीत। विषय होगा प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। साथ ही साथ मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत दिवाकर पटेल और फूलचंद यादव से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण भाई आनंद ले सकेंगे विकास श्रीवास्तव के गाए लोकगीतों का। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित बृज नारायण का राग मुल्तानी में सरोद वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रिज नारायण का राग मुल्तानी में सरोद वादन। अब आज का शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत।

प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको देव फिल्म से ये गणेश वंदना सुनवा रहे हैं। निधा फाजली का गीत है, संगीत आदि श्रीवास्तव का और आवाज अभिजीत की।

फिल्म संगीत प्रोग्राम में अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे लिया है चमेली फिल्म से। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत से सजाया है संदेश शांडिल्य ने, आवाज सुनिधि चौहान की।

0: फिल्म संगीत प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं जुबैदा फिल्म का गाना। जावेद अख्तर का लिखा गीत है, यार रहमान का संगीत, आवाज सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति।

आशिक बनाया आपने। जी हाँ, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके लिए गीत लिखा है समीर ने, संगीत हिमेश रेशमिया का है और आवाज श्रेया घोषाल साथ दिया है हिमेश रेशमिया ने।

आन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत प्रोग्राम खत्म होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। फिल्म नहीं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा

0: की लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की पटवाई की आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, जहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के देवरीगढ़ क्षेत्र के ध्रुव कुसुम की मैथिली भूई ने यह दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कड़प्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया, जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashwani this morning, Mr. Modi asked people to come up with a powerful slogan for a drug-free India and young musicians to create songs that convey the message of a drug-free life.
1: Nasha Mukt Bharat ke liye kya aap ek powerful slogan laga sakte hain? हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप जिनको छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में

0: लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लाखों ख्वातीन नई ताकत हासिल कर रही हैं। जनाब मोदी ने गाज़ियाबाद की बबीता शर्मा के बारे में बात की, जिन्होंने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा कि जब औरत का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ उसके पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल भी तरक्की करता है।
0: लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ चारों तरफ हुब्बुल वतनी के बेशुमार रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो तहरीक की बरसी से लेकर तकसीम के हौलनाक यादगारी दिन जैसे मौके इस महीने को ख़ास बनाते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यौम आज़ादी और कौमी खलाई दिन हर मुल्क के बाशिंदे को फ़ख्र से भर देता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा जैसे कई अहम त्यौहार बनाने वाला है। दीपावली भी चंद महीनों में करीब आ रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस त्यौहार के मौसम में वोकल फॉर लोकल पर जोर दें। वज़ीर दिफा और लखनऊ के एमपी राजनाथ सिंह आज लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में 101 करोड़ के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि आज लखनऊ ने अपनी कदीम विरासत के साथ एक जदीद स्मार्ट सिटी के तौर पर अपनी शनाख्त कायम कर ली है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि लखनऊ की तरक्की को रियासत की तरक्की के हवाले से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में इस वक्त जो भी तरक्की हो रही है उसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का अहम किरदार है।
2: आज लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में एक साथ अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। लखनऊ के बारे में मैं कह सकता हूं कि लखनऊ की गति और लखनऊ की प्रगति को मैं पूरे उत्तर प्रदेश की गति और प्रगति से जोड़ कर देखता हूं। और मुझे कहने में रंचमात्र भी संकोच नहीं है, लखनऊ में जो कुछ भी हो पाया है, लखनऊ का जितनी तेजी के साथ विकास हुआ है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग यदि किसी का प्राप्त हुआ है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का सहयोग प्राप्त हुआ है।
1: इस तकरीब का अहतमाम लखनऊ के छावनी इलाके के दिलकुशा गार्डन में किया गया था। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और महकमा समाजी बहबूद के रियासती वज़ीर असीम अरुण के अलावा कई सीनियर लीडरान और अवामी नुमाइंदे इस तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू अदालतों में बरसों से ज़ेरुल्तवा मुकदमात को मुकर्रा मुद्दत में निपटाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ज़मीन जायदाद और आम शहरियों के हुकूक से मुतालिक मामलात में गैर ज़रूरी ताखीर कबूल नहीं की जा सकती। सनीचर की देर शाम वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी सतह के सीनियर अफसरान और फील्ड में तैनात पुलिस और इंतज़ामिया के अहलकारों के साथ मफादे अम्मा से मुतालिक मामलात का जायज़ा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता दर्शन और IGRS में मौसूल होने वाली अवामी शिकायत के फौरी और तसल्ली बख्श निपटाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: महेंद्र यादव, बरौ ठंडिया प्रयागराज से।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मासूक फिल्म का गाना है, ओ यारा जीने न देगी ये जुदाई।
0: कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना है। तो महेंद्र जी ने पसंद किया है, हम आपकी पसंद का ये गाना सुनवाने जा रहे हैं। महेंद्र जी लीजिए, सुनिए।

0: सुरेंद्र यादव बांका जलालपुर
1: जी,
0: मैम गाना सुनना है नागिन फिल्म का
1: जी जी
0: मन डोले,
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: वाला गाना
1: अच्छा ये पुरानी वाली
0: तो
1: नागिन
0: पास
1: फिल्म।
0: हो गया।
1: हाँ जी हाँ, ये पुरानी नागिन का गाना है, लता जी की आवाज़
0: जी
1: है।
0: मैडम लता मंगेशकर
1: जी
0: गाना
1: जी
0: है जी।
1: जी जी तो सुरेन जी, आपकी इस पसंद को हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: धोधापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रदर्श की मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: यदि गीत तो अवश्य सुनूंगा और आपसे फरमाइश भी करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं को कि हमारी जो मधु दीदी है बहुत ही खूबसूरत और अंदाज में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, और जो आपकी पसंद कार्यक्रम आता है वो तो बेहतरीन से बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगता है। और दो शब्द दो लाइनें और दो अपने विचार व्यक्त करती हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आकर्षित करता है।
0: बहुत
1: इसके
0: बहुत
1: लिए मैं
0: धन्यवाद।
1: मधु दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका प्रयास, उनका जो कोशिश है, कौशल है, सराहनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे शब्दों में इस कार्यक्रम की तारीफ की। इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है कि और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम अपने श्रोताओं के लिए प्रसारित कर सकें। तो बताइए अब कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अनुरोध
0: जी
1: और किशोर कुमार साहब ने गीत को गाया है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर।
0: जी जरूर सुनवाएंगे। तो हेलो अनुरोध कार्यक्रम में अनुरोध फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति जी। तो आइए सुनवाते हैं आपको।
1: जी धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अनिरोध, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
1: रेखा यादव कुकुरा हंडिया प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी जी, हंडिया से रेखा जी हैं हमारे साथ। तो रेखा जी, कौन सी फरमाइश है आज आपकी?
1: मैम, मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाये, मेरे दोस्त, यही फिल्म का यही गाना हमको सुनवा दीजिए।
0: अच्छा, ये हरिहरन साहब की आवाज में बड़ा ही अच्छा गीत है जिसे जावेद अख्तर ने लिखा है। अनु मलिक का संगीत है और आवाज हमने आपको बता ही दी। फिल्म का नाम है बॉर्डर।
1: हाँ मैम।
0: तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए हम सुनवाएं गीत की पहले आप किसी का नाम लेंगी?
1: नहीं मैम, बच्चों का नाम लेंगी।
0: हाँ जी, ले लीजिए।
1: मैम, आयुष और अनन्या और हमारे नाना नानी हैं। हमारे नाना आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुनते हैं।
0: अच्छा, तो आप खुद लगा के देती हैं उनको प्रोग्राम?
1: जो पंचायत घर नहीं आता है।
0: हाँ,
1: हमारे नाना तो ऐसे सुनते हैं कि जैसे हमारे नाना से बात कर रहे हैं, हमारे नाना उन पर से बात करते हैं।
0: अच्छा, देखिए कितना जुड़ाव है कार्यक्रमों से।
1: हाँ, मिलाते रहते हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है रेखा जी, आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और सुनवाते भी रहिए, और हम आपको सुनवा देते हैं बॉर्डर फिल्म का ये गाना। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: आदरणीय मधु दीदी जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सबसे पहले तो परिचय देना चाहूंगा श्रोताओं को, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: जी राजू जी बोलिए।
1: और आज का गीत हमारा रहेगा, फिल्म का नाम है बारिश।
0: जी
1: जिसके फनकार हैं सुरेश वाडेकर और लता जी।
0: जी जी
1: और गाने के बोल हैं, घटा छा गई है बाहर आ गई है।
0: वारिस फिल्म के इस गाने की फरमाइश आई है आगरा से और की है राजू लवानिया जी ने। तो राजू जी आपको नाम लेने हैं क्या किसी के?
1: नहीं दीदी, मेरे लिए तरफ से ये गाना पूरी आकाशवाणी प्रयागराज को डेडिकेटेड है, हमारी प्यारी दीदी सहित और सभी श्रोताओं को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको भी इस गाने की फरमाइश में रखा और हम आपको सुनवा देते हैं वारिस फिल्म का गाना। हाँ जी हाँ, जरूर जरूर कहिए।
1: इंसान सोचता नहीं कि गलत काम में क्या रखा है।
0: जी
1: इंसान सोचता नहीं कि गलत काम में क्या रखा है। अरे फोन करो और गीत सुनो, किसी के नाम में क्या रखा है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो हम आपको सुनवाएं वारिस फिल्म का ये गाना।
1: थैंक यू दीदी, नमस्कार।

0: अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट आडिया तहसील आडिया थाना आडिया गांव मुगराम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, नए गानों के बहुत शौकीन हैं, जब भी फरमाइश करते हैं नए गाने ही रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, नए गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर अरिजीत सिंह का।
0: अच्छा अच्छा, अरिजीत सिंह के फैन हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: तो आज कौन सा गाना चुना है आपने?
1: फिल्म का नाम है क्रीचर 3D
0: जी,
1: विक्रम भट्ट और बिपाशा बसु की फिल्म है ये
0: जी जी,
1: और गाने के बोल हैं, मोहब्बत वर्षा देना तू सावन आया है, रे और मेरे मिलने का मौसम आया है।
0: बहुत बढ़िया गाना, और आपने चुनाव जो किया है बहुत अच्छा, और आपने गाया भी बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा गाते हैं हम
0: जी। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं। आप

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी क्लब बनपुकरा से पवन निषाद बोल रहा है मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: नदिया का पार का फिल्म का।

0: दिशा में चली रे बटोहिया।
1: चला रे बटोहिया, बहुत खूबसूरत सा गाना है, नदिया के पार का ही। फिल्म भी बहुत हिट हुई थी।
0: हाँ जी मैम।
1: अच्छा तो पवन जी, आपने जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आप कि आप नाव चलाते हैं,
0: हाँ मैम,
1: तो ये बताइए कि जब बरसात के समय तो काफी पानी बढ़ जाता होगा गंगा जी का, तब भी आप नाव चलाते हैं उस समय भी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल मैम, हमको लोग पानी गंगा जी से कोई डर नहीं रहता है।
1: अच्छा अच्छा वहीं खेल के बड़े हुए हैं, उन्हीं की गोद में बड़े हुए हैं।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा अच्छा तो इस समय भी लोग भ्रमण करते हैं बरसात के समय?
0: हाँ
1: या जब
0: बिल्कुल,
1: गंगा
0: हाँ
1: जी,
0: आते हैं।
1: हाँ हाँ आते हैं
0: अभी
1: अभी भी? हाँ
0: इस समय थोड़ा धान के लगाई चल रहा है ना, थोड़ा
1: हाँ
0: पब्लिक कमजोर है।
1: जी जी
0: जब धान लग जाएगा फिर से पब्लिक आते रहेगा पूरा ये जो है नवंबर वम्बर तक। हाँ खूब फायदे आते हैं नवरात्र कुवार उवार में।
1: अच्छा अच्छा तो चलिए पवन जी, हम आपको सुनवाते हैं
0: अपने
1: नदिया
0: बेटे
1: के।
0: का नाम लेना चाहते
1: हाँ
0: हैं मैम,
1: जरूर लीजिए, ले लीजिए।
0: महेंद्र निषाद है एक,
1: हाँ
0: एक अद्रका निषाद है, मेरा पोता एक श्रियांश निषाद।
1: अच्छा, तो चलिए सुनिए नदिया के पार फिल्म का ये गाना।

0: defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremonial welcome. And now, both the leaders are participating in the bilateral talks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashvani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
1: Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले
0: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी फूल दिए अगरबत्ती नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया
0: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है बस फिर क्या था आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं
0: Mr. Modi said, today the flight of the country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है
0: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग

0: के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में

0: कड़क की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कड़प्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं, उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

0: स्मृति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विकास श्रीवास्तव। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पचरा।

लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विकास श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: Akashvani at 90.
1: ईश्वर एक है, हम सब उसकी संतान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब बाद में हैं, सबसे पहले हम एक इंसान हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल गोपाल।
1: लड़कनो जय हिंद।
2: रघु भैया।
3: हाँ भैया घनश्याम
2: भैया, आओ देखा चुन्नू मुन्नू त अपन रेडियो भैया खोल के बैठल हुई है, लेकिन चुन्नू मुन्नू से एक बात कहे के हो।
3: हाँ भैया बोला।
2: रघु देखा हो हमार तुहार लड़कई पन रहल त भैया मोबाइल का उतना प्रयोग नहीं होत रहा।
3: हाँ भैया।
2: तरह तरह का देखा खेल करल जा हमने।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कुड़ी हो, कबड्डी हो भैया, गिल्ली डंडा हो, क्रिकेट हो, यानी कि एक तरह कहल जाए तो वो घरे से बहरे वाला खेल होत रहा।
3: हाँ, भैया देखा वो खेल जो रहा शरीर के लिए फायदेमंद रहा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया।
3: दिलन जाए खेलें बाहर, भूख खुले भैया।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, हम कहीं कि देखा वो एक तरह से व्यायाम रहे भैया। हो बेला बेला पर पढ़ाई हो, बेला बेला पर खेल हो।
3: हाँ भैया।
2: समय से खा पी करके हमने जो न कि एकदम दुरुस्त रही।
3: बिल्कुल।
2: धीरे धीरे देखा समय बदलल हो तो भैया कुछ खेल कूद घरे के अंदर से भी शुरू हो गया, जैसे भैया देखा लूडो खेलने लगना, कैरम बोर्ड खेलने लगना।
3: हाँ हाँ।
2: लेकिन हो भैया अब जाके मोबाइल का दौर आ गया।
3: बिल्कुल।
2: गदेला देखा हो मोबाइल में अब खेल करते हैं, उसे न तो उनका शारीरिक विकास होता है न तो उनका मानसिक विकास होता
3: है। भैया बच्चन जो है काफी देर तक मोबाइल चलावत रहा, इनसे भैया क्या होता है उनके आँख की रोशनी भी कमजोर होती है, साथ ही साथ उनके अंदर चिड़चिड़ापन आवत।
2: बिल्कुल। देखा जानकार भैया लोग, वैज्ञानिक भैया लोग ये बतावत हैं कि भैया वो देखा मोबाइल से रेडिएशन निकलेला। जौन की जैसन बतौला है कि हमारे मस्तिष्क पर, हमारे आँख पर, हमारे स्वास्थ्य पर ओकर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेला। मोबाइल जरूरी है, लेकिन मोबाइल का अगर एक सीमित प्रयोग चुन्नू मुन्नू करत है ना, जैसे भैया पढ़ाई मिल करे के बाद दोनों जर जानकारी लेवे के बाद भैया गूगल से नेट से तो ओके ले लें, ओके आपन आदत ना बनावा।
3: बिल्कुल। जो भैया हरे बच्चा है फालतू के रील दिखाते रहते हैं, इससे भैया समय खराब होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, समय तक खराब होता है हो देखा। लेकिन एक बात हो रखो
3: भैया, बोला
2: चुन्नू मुन्नू के समझाए तब पैबा जब तू अपने अंदर सुधार लिए।
3: हाँ भैया।
2: यो देखा पहले का रह कि लड़कई पर जौन घरे के बुजुर्ग रहे दादा दादी नाना नानी उनके लगे सांझ होत बैठल जाए।
3: हाँ भैया।
2: सुबेरे बैठल जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: भैया। हो बढ़िया बढ़िया ज्ञान वर्धक किस्सा कहानी हो।
3: हाँ।
2: वो अपने अनुभव का भी बात बताऊ है।
3: हाँ हाँ।
2: और उसे भैया देखा जिंदगी में बड़ी सीख मिला।
3: हाँ भैया। कहानी के नाते जो है अपन जीवन का अनुभव बतावत
2: है। या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भैया हो वही समय देखा मनोरंजन का ही है साधन रहे।
3: बिल्कुल भैया।
2: गाँव के भैया चार लोग एक जगह जुटे गांव के विकास के बारे में, देश समाज के

0: बारे में चर्चा हो।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो भैया हो उमन पूरा सब जाने वक्त दें, ऐसे कारहल की एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान होत रहल, और भैया एक बढ़िया बात निकल के आवे ओके अमल में लियावल जाए।
1: हाँ,
0: और वो तरह से भैया अपन जौन सामाजिक व्यवस्था चलत रहल।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: भैया हो मोबाइल आ गया, अब तक देखा कि अगर चार लोग बैठल हैं एक जगह, चारों के हाथे में मोबाइल बा।
1: हाँ, भैया देखा था
0: तो न क्यों क्यों से बोलत बा, न क्यों क्यों से बतियावत बा।
1: सही कहा भैया।
0: तो भैया वो जो है एक संबंध रहल, रिश्ता का संबंध रहल, वो कहीं न कहीं से कमजोर हुई।
1: हाँ, भैया जो अपनापन रहा लोगन में वो धीरे धीरे खत्म होत बाटे।
0: बिल्कुल,
1: रुझान मोबाइल की तरफ बाटे।
0: हाँ,
1: दूसरे कोई ध्यान नहीं देता।
0: आज छोट गदेला जोन भैया है ना, तो देखा का होगी अगर छोट गदेला थोड़ा सा रोवत बहन नंगई करत बहन।
1: हाँ, हाँ।
0: तो भैया ही देखे में आवत बा कि उनकर जोन मतारी बहन।
1: हाँ,
0: भैया हो मोबाइल में कार्टून लगा के दे देत बहन, वो टुकुर टुकुर ताकत बहन, लेकिन ये नहीं समझत थी कि ये मासूम जीवन का मोबाइल कितना खतरनाक हो।
1: हाँ भैया। हाँ।
0: तो भैया देखा चुन्नू मुन्नू के तो भैया मोबाइल से तनी दूर रह के जरूरत हो, अपने पढ़ाई में पूरा मन लगा, जितना जरूरी है बस उतने जौन हो।
1: हाँ भैया,
0: वो मोबाइल का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल भैया।
0: रघु भैया चुन्नू भैया बदे आज काका लिया हुआ।
1: भैया देखा आज कहानी बाट है स्नेह लता जी के लालच के लड्डू।
0: हाँ
1: हाँ, चुन्नू मुन्नू सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाए दा।
2: यह 21वीं शताब्दी का युग है, समस्त विश्व प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसित हो रहा है। वर्तमान युग में भी कहानियों का अपना अलग महत्व है। प्राचीन काल से ही दादी नानी के द्वारा बच्चों को कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझाने की परंपरा चली आ रही है। बच्चे सुगमता से कहानियों के माध्यम से बताई गई सीखों को सीख लेते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत नहीं भूलते। बच्चों आप लोग भी कहानियों में रुचि तो अवश्य लेते होंगे। हम आज कहानियों के माध्यम से आपको बताएंगे कि लालच बुरी बला है एवं संतोषम परमम सुखम। लालची व्यक्ति आजीवन लालच के वशीभूत होकर परेशान रहता है, जबकि संतोषी व्यक्ति थोड़े में ही सुख का अनुभव करता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी कपड़ा और मकान। मनुष्य इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में जीवन पर्यंत लगा रहता है, लेकिन अगर इसके अंदर लालच समा गई तो वह आजीवन परेशानी में गुजरता है। लालची व्यक्ति असंतोषी होता है, उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं, वह सिर्फ अपने ही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, उसे दूसरे के सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कर्म की एजा फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म ही पूजा है, कर्मठ बनो लेकिन लालची नहीं। लालच का परिणाम कितना बुरा होता है हम इस कहानी के द्वारा आपको बताते हैं। एक मछुआरा और उसकी पत्नी समुद्र के किनारे झोपड़ी में रहते थे। वे निसंतान थे, उनकी उम्र 50 से कम थी, लेकिन गरीबी और चिंता से वे समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। मछुआरा संतोषी समझदार शांत प्रवृत्ति का था, किंतु उसकी पत्नी लालची असंतोषी तथा कटु स्वभाव की थी। उनकी जीविका का स्रोत था समुद्र से पकड़ी गई मछलियाँ। इन मछलियों को बेचकर मछुआरा अपना जीवन यापन करता था। मछलियाँ ही उनके लिए सर्वस्व थीं। अगर मछली नहीं मिले तो उसकी पत्नी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी। अगर टोकरी भरकर भी वह मछली लाता तब भी उसकी पत्नी खुश नहीं होती। बेचारा बूढ़ा शिथिल पड़ चुका था। रोज की तरह वह जाल बिछाकर समुद्र के किनारे बैठा था, कोई मछली नहीं फंस रही थी। अचानक उसे लगा कि जाल कुछ भारी है, तो खींचा और देखा कि उसमें एक सुनहरी मछली फंसी है। मछुआरे ने उसको हाथ से उठा लिया और प्यार से सहलाने लगा। वह मछली सजीव होकर बोली, हे बूढ़े मछुआरे तुम मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। बूढ़े को दया आ गई, उसने मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ घर पहुंचा। उसे खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी काटने को दौड़ी। मछुआरे ने उसे धीरज बधाया और सुनहरी मछली की बात बताई। सुनकर वह मछेरे पर चिल्लाने लगी, तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? अभी तुरंत जाकर मछली से कुछ खाने के लिए मांग लाओ, घर में कुछ है ही नहीं। बूढ़ा नंगे पांव लौटकर सागर तट पर बैठकर बोला, हे सागर की रानी, मछली

तनिक तट पर आओ और मेरी विनती सुनो। पल भर में ही लहरों के साथ खेलती सुनहरी मछली तट पर आ गई। बूढ़े ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे मछली रानी, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, कृपया खाने के लिए कुछ दे दें। मछली बोली, आप घर जाइए, मैं भेज देती हूँ। मछेरा जब घर पहुँचा तो आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जियों के ढेर लगे थे। दोनों ने मिलकर सामान को रखा। बूढ़ा अभी रखकर निवृत्त भी नहीं हो पाया था कि तभी बूढ़ी चिल्लाने लगी, केवल खाने की वस्तुओं से क्या होगा, जाओ उससे वस्त्र और आभूषण भी मांग लाओ। बूढ़ा उसको समझाते हुए बोला, बार बार मांगना ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, चलो कल जाकर फिर मांग लाएंगे। बूढ़ी ने उसकी एक न सुनी, रात भर कोसती रही। सुबह फिर सागर तट पर जाकर विनयपूर्वक बूढ़ा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी को वस्त्र आभूषण की भी जरूरत है। मछली बोली, आप जाओ, हम भेज देंगे। बूढ़ा घर गया तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी ढेर सारे वस्त्र और जेवर पहन करके बैठी हुई है। बूढ़े को देखते ही वह बिफर कर बोली, इस तरह सज कर झोंपड़ी में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कल सुबह ही जाकर मेरे लिए एक महल की मांग करना। मछेरे ने सुनी अनसुनी कर दिया, लेकिन वह कहाँ चुप होने वाली थी। फलतः फिर सुबह ही सुबह मछेरा वहाँ पहुँचा और विनती पूर्वक मछली से बोला, मेरी पत्नी को महल की आवश्यकता है। तब मछली बोली, उनकी इच्छा भी पूरी कर दूंगी। जब मछेरा घर पहुँचा तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और उसकी पत्नी प्रसन्न चित्त दिखाई दी। कुछ दिन इसी प्रकार सुखपूर्वक व्यतीत हो गए, परंतु लोभी बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन उसने मछेरे से कहा, मैं दिन रात काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, मैं ऐसे जीवन से तंग आ चुकी हूँ, तुम सुनहरी मछली के पास जाओ और मेरे लिए नौकर चाकर के लिए कहो। बूढ़े ने उसे समझाते हुए कहा, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, हम केवल दो ही लोग हैं, घर का काम ही कितना है। लेकिन बूढ़ी के लोभ ने उसके विवेक को इतना ढक दिया था कि उसने मछेरे की एक नहीं सुनी। विवश होकर मछेरा सागर तट की ओर चल पड़ा और मछली से निवेदन किया। मछली केवल मुस्कुराई और दृष्टि से ओझल हो गई। लौटकर मछेरे ने देखा कि उसकी पत्नी नौकर चाकर से घिरी सज धज बैठी है। एक दिन बुढ़िया का मछेरे से तकरार हो गया, वह उसे फिर सुनहरी मछली के पास भेजना चाहती थी। अब उसका लालच अत्यधिक बढ़ चुका था, अब वह धरती की महारानी बनने की सोचने लगी थी। बूढ़ा जब नहीं राजी हुआ जाने के लिए, तब बुढ़िया ने नौकरों से कहा कि इसकी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। मछेरा किसी तरह सागर तट पर पहुंचकर मछली का स्मरण किया। मछली बोली, तुम्हारी पत्नी को अब किस चीज़ की आवश्यकता है, बोलो। मछेरा बोला, अभी तक तो मैं उसके कहे के हिसाब से ही आपसे सब कुछ मांगता रहा, लेकिन अब मेरी भी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराई और बोली, कहा, हाँ हाँ, वह भी पूर्ण होगी। बूढ़ा मछेरा बोला, बस इतना ही अब रहने दीजिए, आप यह धन दौलत, दास दासियाँ एवं महल आदि सब कुछ वापस ले लीजिए, मुझे मेरी झोपड़ी और जाल लौटा दीजिए। धन के लालच में मेरी पत्नी की बुद्धि नष्ट हो गई थी, मेरा सुख चैन सब छिन गया था। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा, अब महल के स्थान पर पुरानी झोंपड़ी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी, मछेरे ने उसे जगाया, वह उठ बैठी और आसपास का वातावरण देख सकते में आ गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं होता वह कभी सुखी ही नहीं हो पाता। बूढ़े की प्रेम भरी बातों को सुनकर मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। इसके पश्चात दोनों प्राणी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लालच किस तरह से बुद्धि भ्रष्ट करता है, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक बुढ़िया ने एक मुर्गी पाली थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। बुढ़िया की गरीबी धीरे धीरे अमीरी में बदलने लगी। बुढ़िया खुश रहती थी। कुछ पड़ोसियों की नज़र बुढ़िया की आर्थिक स्थिति पर पड़ी और पता चला कि अमीरी का कारण मुर्गी

0: करो सोने का अंडा देना है। कुछ ईर्ष्या करने वालों ने बुढ़िया को समझाना शुरू किया कि रोज केवल एक अंडा पाती हो, मान लो मुर्गी अगर कहीं खो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि मुर्गी का पेट चीर कर जितने अंडे मिले निकाल लीजिए। धीरे धीरे बुढ़िया के दिमाग में यह बात घर कर गई और वह एक दिन मुर्गी का पेट चीर कर फुर्सत कर दी। जब उसे ढेर सारे अंडे नहीं मिले तो वह दुखी हुई और सोचने लगी कि अगर हम लालच नहीं करती तो मुर्गी का अंडा हमें रोज एक मिलता रहता और हम सुख से रहते। वह अपनी मूर्खता पर बहुत दुखी थी। उसने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। ऐसा लालच के कारण ही उसने किया। वह लालच के लोभ में इतनी अंधी हो गई कि उसे भले बुरे का ध्यान ही नहीं रहा। उसकी क्षति तो हुई, साथ ही साथ उसकी बदनामी भी हुई। लोग उसे लालची कहकर पुकारने लगे। उसे अपने किए पर बेहद अफसोस था। वह इसके अलावा कर भी क्या सकती थी। अंदर ही अंदर वह आत्मग्लानी से दुखी थी और लोग उसका परिहास उड़ा रहे थे। बच्चों, इन कहानियों से यही सीख मिली कि अपने ऊपर लालच को हावी होने मत दीजिए। इससे काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है, चित्त में चैन नहीं आता, नुकसान अलग से होता है। लालच मति भ्रष्ट कर देती है, स्वार्थी बना देती है। असंतोषी जीवन कदापि सुखमय नहीं होता।
1: हाँ भैया,
2: देखा चुन्नू मुन्नू कितनी बढ़िया लालच
1: लालच की
2: कहानी सुने भैया, लेकिन समय भी देखा अभी कहत बा कि चुन्नू मुन्नू से विदा लेवल जा। तो लड़िकनो
1: जय हिंद।
3: अभी हमारी ग्रामीण बच्ची अपना कार्यक्रम सुन रही थी बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारा कार्यक्रम प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में युवाणी कार्यक्रम।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हमारे युवा श्रोता अपना युवाणी कार्यक्रम सुने।

0: नमस्कार आदाब। युवाणी कार्यक्रम में आप सभी युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु पांडे
1: और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
0: हाँ
1: सुधांशु,
0: हाँ हाँ
1: ये बताओ कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं?
0: ज्योति, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो
1: हाँ।
0: आज के समय के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, आने वाले टाइम के लिए भी वो बहुत प्रासंगिक होने वाला है। और आज भी उसका जो लोहा है लोग धीरे धीरे मानने लगे हैं, और मानना भी पड़ेगा क्योंकि हम आज जिस टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी कुछ है भी ऐसी, है ना?
1: अगर मैं गलत नहीं गेस कर रही हूँ तो शायद आज हम AI पे बात करने वाले हैं क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही दोस्तों आज हम बात करेंगे, और हम सिर्फ उसी पे बात नहीं करेंगे कि वो एआई है क्या,
1: हाँ
0: एआई का जो डर है, एआई को लेकर के जो यूटोपिया बना हुआ है, भ्रामक जानकारी जो समाज में फैली हुई है कि एआई नौकरियां खा जा रहा है, एआई ये कर दे रहा है, एआई कुछ भी कर दे रहा है, तो एआई कुछ भी नहीं कर दे रहा है। उसकी जो सही जानकारी है, जो फैक्चुअल जानकारी है, जो सही डाटा है, वो हम आज आप तक शेयर करेंगे, है ना ज्योति?
1: बिल्कुल
0: पर ज्योति, अगर हमें जैसे एआई को शुरू करना हो,
1: हाँ
0: एआई को
1: हाँ
0: बताना हो, समझाना हो, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है?
1: मेरे हिसाब से अगर देखो सुधांशु, तो एआई को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी मतलब हमें कुछ भी जानकारी चाहिए होती है तो हम
0: हाँ
1: उसे क्या करते हैं, इंटरनेट पे खोज लेते हैं, है
0: बिल्कुल।
1: ना। लेकिन अगर वही हमें एकदम पूरा उसका बहुत अच्छे से आंसर अगर हमें चाहिए, कोई क्वेश्चन है
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: उसका हम चाहते चाहते हैं कि विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल, विद एक्सप्लेनेशन,
0: ठीक है।
1: बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से
0: हाँ
1: हमें उसका आंसर मिल जाए, तो इसका अगर हम ये चाहे कैसे लेंगे तो हम ये एआई के थ्रू ले सकते हैं ये आंसर,
0: बिल्कुल
1: ठीक
0: दोस्तों।
1: है।
0: और इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग हैं उनको लगता है कि एआई जस्ट आया है, तो हम आपको बता दें एआई जस्ट आया नहीं है, एआई बहुत पहले से रहा है। जैसे कि हम अपने फ़ोन में फेस लॉक लगाते हैं,
1: हाँ
0: हम अपने फ़ोन से बोलते हैं तो फ़ोन हमसे बात करता
1: हाँ
0: है ना? उसको हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो संदेश देते हैं, वो उस चीज़ को फॉलो करता है।
1: हाँ
0: ये क्यों करता है और कैसे करता है? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है।
1: बिल्कुल
0: हमारे फेस को वो कैसे समझ पाती है कि हमारा ही फेस है, ये फ़ोन के ऑनर का ही फेस है? हमारी आवाज़ को वो कैसे डिटेक्ट कर पाती है? और सबसे बड़ी चीज़ कि जो फेस का लॉक होता है, जो फोन का लॉक होता है, वो आपकी आंख देखते ही स्क्रीन खुल जाती है। तो ये जो मशीन का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है कि बस चेहरा देखा और बस फट से आपका फोन खुल गया। इसके पीछे बहुत बड़ी लर्निंग काम करती है ना?
1: बिल्कुल, इसके पीछे काम करती है मशीन लर्निंग। दोस्तों मशीन लर्निंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मशीन लर्निंग का एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके बिना किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग को में जो डाटा हमें सीखने को मिलता है उसकी क्षमता को हम समझ सकते हैं या उसकी क्षमता को हम देख सकते हैं। अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें सुधांशु, तो
0: हाँ
1: तुम्हें शायद याद होगा या तुम्हें देखते हैं, हम सब देखते हैं अपने फ़ोन में कि ईमेल
0: हाँ
1: में स्पैम स्पैम फिल्टरिंग होती
0: ठीक
1: है
0: है।
1: ना। तो ये स्पैम फिल्टरिंग क्या होती है ज़रा बताना।
0: दोस्तों होता ये है कि जैसे बहुत सारे मैसेजेस हमें मेल पे आते हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि हम मेल आईडी कहीं भी लॉगिन कर देते हैं, और लॉगिन करते समय हमें अक्सर ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ और कब उस चीज़ को दे रहे हैं। तो हमारे पास मेल बहुत सारा आता है, बहुत भारी मात्रा में आता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ कुछ मेल ऐसे हैं जो एक, जैसे कि अनवांटेड मेल होते हैं, वो एक अलग फोल्डर में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेल होते हैं वो हमारे इनबॉक्स में होते हैं। ये फिल्टरिंग का काम, जैसा ज्योति भी कह रही थी कि फ़िल्टर होता कैसे है, ये फिल्टरिंग का काम कि कौन सा हमारे लिए ख़तरनाक है, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए ख़तरनाक है, और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ कर चीज़ को फिल्टर करना, अलग अलग करना, ये एआई का ही तो काम है।
1: बिल्कुल, तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास बहुत सारा ज़्यादा डेटा होता है ना,
0: हाँ
1: तो उस डेटा में से कौन सा डेटा हमारा हमारे काम का है और किस डाटा की हमें ज़रूरत है, उस डाटा को हमें खोज करके एआई हमें देता है।
0: बिल्कुल। और अंजलि ज्योति, इसके साथ एक चीज़ और है, वो ये है कि जैसे हमने मशीन लर्निंग की तो बात कर ली, ये बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो हमारे घर में, उसको हमने कहा कि भैया ये अल्फ़ाबेट हैं, ये हिंदी के अक्षर हैं, ये अंग्रेज़ी के अक्षर हैं, ए बी सी डी, काखा गाघा अंगा।
1: हाँ
0: तो जब हम काखा गाघा अंगा और ए बी सी डी बताते हैं, तो दैट इज़ मशीन लर्निंग, है ना? हम ऊपर ऊपर की चीज़ बता रहे हैं। पर एक चीज़ और होती है, डीप लर्निंग। अभी हम बात कर रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन का, हमारे चेहरे को और हमारी आंखों को देख के वो कोई मशीन ये कैसे समझ पाती है और कैसे डिटेक्ट कर पाती है कि ये फ़ोन के ऑनर का ही फेस है। तो इसके लिए जो चीज़ काम करती है, जो टेक्नोलॉजी काम करती है एआई के भीतर, वो होती है डीप लर्निंग। और अगर डीप लर्निंग को बहुत अच्छे से समझना हो ज्योति, तो फिर हम उसको कैसे समझ सकते हैं?
1: डीप लर्निंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि तुमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि हम
0: हाँ
1: बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बताते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है, या फिर ये बॉल है, या ये क्या है। तो ऐसा कई बार होता है ना कि जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं या उनको पढ़ा रहे होते हैं, तो हम उनको दिखाते हैं कि अगर ये इस जानवर के पास चार पैर हैं, तो ये मान लो ये काय है, इसकी दो सींग हैं, चार पैर हैं,
0: ठीक है।
1: और ये बड़ा बड़ा सा है। तो बच्चा

0: मन जाता है अच्छा ये काऊ है, लेकिन वहीं पे अगर वहां पे अगर हम बफेलो आ जाए
1: ठीक है।
0: तो बच्चे के दिमाग में तो यही इमेज आएगी कि अच्छा इसके पास भी दो सींग है, चार पैर है, तो ये क्या होगा, ये काऊ ही
1: बेबी
0: होगी,
1: हाँ ठीक
0: है
1: है।
0: ना। लेकिन जो डीप लर्निंग होती है, अब आपको यहीं पे समझना है कि डीप लर्निंग का क्या काम है। तो डीप लर्निंग जो होती है वो यही फिल्टर करती है कि वो काऊ है या फिर बफेलो है। तो वो आपको समझाती है, देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर वो आपको कोई डाटा दे रही है, अगर आपको उस डाटा की जानकारी है, समझ है, तो आप उसमें की जो गलतियां हैं उसको समझ लेंगे।
1: बिल्कुल
0: लेकिन अगर उसकी समझ आपको नहीं है तो वो गलत डाटा भी हमें दे सकती है कभी कभी,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो उसमें जो गलतियां हैं उसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो डीप लर्निंग होती है वो फिल्टरेशन का काम करती है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों अगर इसको हम, जैसे ज्योति ने बताया बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अगर इसको हम और आसान भाषा में समझना चाहें और खुली भाषा में, कि डीप लर्निंग से जैसे डर लगता है कि यार ये कंप्यूटर की भाषा बहुत कठिन होगा, अगर आप अपने मन में दो तीन पक्षियों का नाम सोच पा रहे हो, जैसे कि हमारे दिमाग में चौथी जो अभी आ रहा है, जैसे कि स्पैरो ले लीजिए, पिकॉक ले लीजिए और एक बुलबुल ले लीजिए, अब आप देखेंगे कि इन तीनों ही पक्षियों का जो फेदर होता है, जो पंख होता है, वो अलग अलग होता है। तो मशीन लर्निंग का काम क्या होता है कि मशीन लर्निंग को, उसको ये बता दिया गया है कि ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में जो चीज़ बनी है वो एक गौरैया है, ये मोर है और ये बुलबुल है। उसने समझ लिया कि ऐसा ऐसा अगर फेदर होगा, पंख होगा, तो हम ये समझ, ऐसा फेदर होगा, ऐसी चोंच होगी, ऐसी आँख होगी, तो हम ये कह देंगे कि ये स्पैरो है। लेकिन डीप लर्निंग का काम क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा। डीप लर्निंग क्या करती है कि अब उसने स्पैरो को भी पकड़ा, पिकॉक को भी पकड़ा, उन दोनों को डिडक्ट तो करेगी इसी आधार पर जिस आधार पर मशीन लर्निंग कर रही है, पर उसमें एक अंतर होता है, वो ये होता है कि पिकॉक का वो फेदर उठाएगा, उसको देखेगा, उसका जो पैटर्न है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे वो ये डिसाइड करेगा कि ये मोर है। जैसे कि हम जब अपने फ़ोन में फेस लॉक लगाते हैं, तो फेस लॉक अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना फेस दिखाएगा तो नहीं खुलेगा, तो अगर वो मशीन लर्निंग का काम सिर्फ मशीन लर्निंग होता तो खुल जाता, पर अगर जब डीप लर्निंग हो रहा है वहाँ पे, तब वहाँ पे इसीलिए फ़ोन किसी दूसरे के फेस से नहीं खुलता है। तो ये है डीप लर्निंग दरअसल।
0: दरअसल इसको हम शब्द से भी समझ सकते हैं, इसमें खुद ही आ रहा है डीप लर्निंग, है ना,
1: गहराई से
0: मतलब
1: चीजों को
0: गहराई
1: समझना,
0: से चीजों को समझना।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो सुधांशु,
1: हाँ
0: तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे दोस्तों को अपने प्रोग्राम में एक सॉन्ग के तो इंतजार हो ही रहा होगा?
1: बिल्कुल। तो
0: तो
1: दोस्तों आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपसे एआई के बारे में। तो सुधांशु, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एआई जो होता है, हम सब जानते हैं ना कि एआई बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है ना?
1: हाँ
0: जितना वो हमारे लिए हेल्पफुल है, उतना ही
1: बिल्कुल।
0: ज़्यादा वो खतरनाक भी है। तो तुम ये बताओ मुझे कि एआई किस तरह से हम सबकी ज़िंदगी में आजकल घुसता जा रहा है।
1: हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दरअसल जिसको हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम कह रहे हैं, वो प्रामाणिक रूप से उसकी परिभाषा क्या है, होती क्या है। वो ये है कि एआई एक ऐसी तकनीक है जो जटिल डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न खोजने और वैज्ञानिक मिशनों व अंतरिक्ष अभियानों में मानव समझ की सहायता के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये परिभाषा अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी नासा द्वारा दिया गया है।
0: वहीं अगर हम ISO स्टैंडर्ड्स की माने तो AI एक व्यवस्थित मैनेजमेंट और गवर्नेंस मॉडल है जो पारदर्शिता, जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ जोखिमों को नियंत्रित करते हुए नए अवसर निर्मित करती है। वहीं IBM, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, उसके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी उन्नत प्रणाली है जो मशीनों को सीखने, तर्क करने, समस्या सुलझाने और मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है।
1: हाँ, तो दोस्तों, ये जो परिभाषा हमने आपसे शेयर की है, ये परिभाषा बहुत ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स से संबद्ध है। तो आप अगर एआई के संदर्भ में इस परिभाषा का प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बात है ना, देखिए, जैसा भी ज्योति ने बताया, IBM या ISO या फिर नासा की जो चीज़ें हैं, जो परिभाषा है, कितनी सटीक बात है। और हर सवाल, एक सवाल होता है जो हर युवा के मन में ये आजकल कौंध रहा है कि एआई वाकई हमारी नौकरियां छीन लेगा या फिर सिर्फ एक यूटोपिया है या एक सिर्फ डर है। एक बहुत बड़ा सवाल है ज्योति।
0: बिल्कुल सुधांशु, अगर अमेरिका की एक हालिया रिसर्च यानी उसकी एक रिपोर्ट पर अगर हम नज़र डालें तो AI की वजह से कम लोग मिलकर बहुत ज़्यादा काम एक साथ मतलब निपटा सकते हैं।
1: हाँ
0: यानी जहाँ पहले 1,000 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं अब सिर्फ 100 के अनुपात में लोग बहुत कम लोगों में काम लिया जा सकता है।
1: हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर एक काम को करने के लिए 1,000 लोग लगते थे दोस्तों, वहाँ पर एआई ने यूँ चीज़ें कर दी हैं कि अगर 100 व्यक्ति भी हैं तो 1,000 का काम हो जाएगा, है ना। तो ये है जो, जैसे हम बात कर रहे हैं ना नौकरी पे समस्या, इस चीज़ को अगर हम इस प्रॉस्पेक्टस से समझें तो ये है दोस्तों। इसका सबसे सीधा और अगर तीखा असर हम देखें कि एआई का कहाँ पड़ रहा है बहुत सटीक, तो वो है वाइट कॉलर जॉब्स पर, यानी कि दफ्तरी और आईटी नौकरियों पर पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मिडिल क्लास यानी कि मध्यवर्गीय परिवारों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि ओपन एआई के सीईओ ने भी ये बात मान ली है कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करने वाली नौकरियों पर सबसे ज़्यादा एआई का खतरा मंडरा रहा है। अगर आप भी वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ सोच रहे हैं, की तरफ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाइए।
0: बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सुधांशु कि इसमें स्किल्स मैटर करती हैं, है
1: हाँ
0: ना? कि क्योंकि आजकल देखो तो हर किसी को कंप्यूटर चलाना आता
1: बिल्कुल
0: है ना? उसे पता है कि किस तरह से हमें क्या चीज़ करनी है, क्या सर्च करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे एक वेबसाइट बनानी है।
1: हाँ
0: तो लोगों को ये आ रहा है, वो पढ़ रहा है, उन चीज़ों को सीख रहा है।
1: ठीक है
0: लेकिन वहीं उसमें भी अगर AI आ गया है मार्केट में,

0: में।
1: ठीक
0: तो
1: है
0: एआई जैसा कि अभी हमने बताया कि वो जॉब्स ले रहा है, जहां 1,000 लोग मिलके काम कर रहे थे वहां 100 लोग ही मिलके काम कर ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी स्किल्स पे फोकस करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए, है ना। तो वही, अच्छा सुधांशु,
1: हाँ
0: इसके साथ ही तुम ये बताओ कि जो एआई है इसका आर्थिक कारण क्या है।
1: हाँ तो दोस्तों हम इस पे बात करें उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप हमें ज़रूर मेल करिएगा, संदेश भेजिएगा, हम उसका पता आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है कि लोअर वेज इकोनॉमी कहते किसको हैं। हम इसके बारे में हालांकि बताएंगे पर आप इसको डिटेल में हमें बताइएगा। दोस्तों लोअर वेज इकोनॉमी का मतलब ये होता है सीधा सा कि जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं उस नौकरियों के लिए हम बहुत बड़ी रकम हायर करते हैं कि हमें इसके लिए इतने लाख का पैकेज मिला, इतने करोड़ का पैकेज मिला। तो एआई के आने से लोअर वेज इकोनॉमी बढ़ रही है और जो हम बहुत हाई सैलरी के लिए हायर करते थे, कोशिश करते थे, उस पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि कैसे ये मंडरा रहा है ज्योति? जैसे प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो एक बात है। दूसरी बात

0: एक सवाल पूछ लेते हैं कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप हमें ज़रूर मेल करिएगा, संदेश भेजिएगा, हम उसका पता आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है कि लोअर वेज इकोनॉमी कहते किसको हैं। हम इसके बारे में हालांकि बताएंगे, पर आप इसको डिटेल में हमें बताइएगा। दोस्तों, लोअर वेज इकोनॉमी का मतलब ये होता है सीधा सा कि जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, उस नौकरियों के लिए हम बहुत बड़ी रकम हायर करते हैं कि हमें इसके लिए इतने लाख का पैकेज मिला, इतने करोड़ का पैकेज मिला। तो एआई के आने से लोअर वेज इकोनॉमी बढ़ रही है, और जो हम बहुत हाई सैलरी के लिए हायर करते थे, कोशिश करते थे, उस पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि कैसे ये मंडरा रहा है ज्योति? जैसे प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो कंजम्पशन हो रहा है वो घट रहा है। घट कैसे रहा है?
1: कैसे?
0: जैसे कि अगर हमारी जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो जाएंगी, और उस जॉब्स के भीतर भारत का मध्यवर्गीय परिवार जो है वो ज़्यादा है, तो जब हमारे पास जॉब्स जाएंगी, हम बेरोजगार होंगे, तो हमारे पास पैसे की भी तो कमी आएगी, हमारी इकोनॉमी गिरेगी। इकोनॉमी के गिरने से क्या होगा कि चीज़ों का प्रोडक्शन भले ही भी कितना हो, पर कंजम्पशन हम करेंगे भी कैसे? उसके लिए हमें मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा, पैसे के लिए ही हम तो नौकरी करते हैं, कोई भी नौकरी हो। तो अगर वो नौकरी ही जा रही है तो हम पैसा लाएंगे कहाँ से? और जब पैसा लाएंगे नहीं तो प्रोडक्शन भले भी कितना हो, कंजम्पशन नहीं होगा। और एक समय के बाद कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से प्रोडक्शन में भी गिरावट आएगी। तो ये जो पूरा पूरा का कॉन्सेप्ट है, ये लोअर वेज इकोनॉमी पे ही इंक्लाइन करता है ना। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि एआई का जो गहरा वाला असर है, गहरा वाला इम्पैक्ट है, वो पड़ कहाँ रहा है?
1: कहाँ पढ़ रहा है?
0: तो जो बहुत सारी कंपनियां हैं, आईटीज कंपनियां हैं, अगर हम एक महीने का सिर्फ डेटा लें, ठीक है, अमेरिका की कंपनी कहती है कि अगर हम एक महीने का डेटा लें तो वो डेटा हमें बताता है कि शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां अपने शेयर में लगी होती हैं, उनमें सबसे कम गिरावट एआई की वजह से आई है, 15.6% की, ठीक है। लेकिन और अगर यहीं पर देखें, सबसे ज़्यादा गिरावट भी देखी गई है शेयर बाजार में एआई की वजह से, वो है 31.78% की। तो अब आप इन दो आंकड़ों से इस चीज़ का आंकड़ा लगा लीजिए कि एआई का असर आज क्या है, और आने वाले आज के 10 साल बाद एआई का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है।
1: बिल्कुल सुधांशु। और अगर इन कंपनियों के शेयर और मार्केट हिस्सेदारी का को हम एनालाइज करें तो भारतीय आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की जो कुल संख्या है वो लगभग 53.3 लाख है,
0: हाँ।
1: और भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान करीब 7% है। लेकिन पिछले एक महीने में आईटी सेक्टर के शेयरों में 10% की गिरावट दर्ज की गई है।
0: और दोस्तों, ये जो 10% देखने में लग रहा है कि सिर्फ 10%, ये 10% बहुत बड़ा प्रतिशत है,
1: बिल्कुल
0: है ना। इसको हमें हल्के में लेना नहीं है।
1: और यही नहीं सुधांशु, वैश्विक स्तर पर भी आंकड़े डराने वाले दिखते हैं।
0: जैसे
1: जैसे कि अमेरिका की जो एक कंपनी है गोल्डमैन स्कैच, इसके मुताबिक दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ नौकरियां एआई से प्रभावित होंगी। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अनुसार 2030 तक करीब 9.2 करोड़ लोग प्रभावित और बेरोजगार हो सकते हैं। और आईएमएफ का कहना है कि दुनिया की 40% नौकरियों का इससे सीधा असर पड़ेगा उस पर।
0: बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है कि अब आप इस डेटा को सुनिए और डेटा को सुनते ही घबरा जाइए, अरे भाई अब तो व्हाइट कॉलर जॉब्स गई गई गई। नहीं, परेशान नहीं होना है। हर चीज़, अगर कोई एक प्रश्न है हमारे पास, तो उसका हमारे पास उत्तर भी होता है, जवाब भी होता है। जैसे अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये
1: क्या
0: जो
1: है?
0: बातें हैं ना, ये जो डाटा है, और जो कंपनियां, एआई कंपनियां जो मानती हैं, जो बड़े बड़े दावे करती हैं, कहती हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आज के 10 साल बाद ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो भविष्यवाणियां हैं, हो सकता है कि बहुत मजबूत तर्क के साथ ना की जा रही हों, है ना। और पहला तर्क तो यही है इस सारी बातों के खिलाफ में कि एआई एजेंट्स अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं जितनी कंपनियां बढ़ा चढ़ाकर दावा करती हैं कि भाई हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। कर देना दूसरी चीज़ है, करना तुरंत दूसरी चीज़ होती है। इंसानी समझ, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला एआई नहीं कर सकता है ना ज्योति।
1: बिल्कुल।
0: कितनी भी कोशिश कर ले एआई, पर ह्यूमन ह्यूमन ही रहेगा, एआई एआई ही रहेगी। और
1: क्योंकि एआई को बनाने वाला भी तो ह्यूमन ही
0: ह्यूमन
1: है।
0: ही है, सही बात है। और दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था, ये बहुत नोटेड पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आईटी सेक्टर पर निर्भर नहीं करती
1: बिल्कुल।
0: है ना। हमारे देश की जो रीढ़ है, कृषि जिसको हम एग्रीकल्चर कहेंगे, ये है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, और हैंडलूम इंडस्ट्रियां जो हैं, यानी जिसपे हम श्रम करते हैं, जहां हम पसीना बहाते हैं,

0: जिसको हम ऑरेंज इकोनॉमी के तहत समझने की कोशिश करते हैं, दरअसल इन सारी चीज़ों को आईटीज़ को छोड़ करके बाकी कृषि मैन्युफैक्चरिंग है ना, हैंडलूम, इन सारी जगहों पे एआई नहीं आ पाएगा,
1: बिल्कुल
0: एआई इसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों, ऑरेंज इकोनॉमी हमने एक शब्द बोला है, उसको ज्योति आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी।
1: बिल्कुल। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है सुधांशु, आधा तो तुमने समझा ही दिया है कि ऑरेंज इकोनॉमी से हम जो वो वाली जॉब्स इसके अंतर्गत आती हैं जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं,
0: ठीक है,
1: जिसमें हमारा आर्ट हो गया, हमारा कल्चर हो गया, हमारे खुद की जो बौद्धिक संप्रदा हो गई या क्षमता हो गई, इन सब पे जो आधारित हमारी अर्थव्यवस्था होती है, हमारी इकोनॉमी होती है, वो जो आती है वो ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आती है। अभी तुमने कहा कि कृषि हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एआई, जहाँ पे कंप्यूटर वर्क नहीं होता है,
0: हाँ,
1: जहाँ पे हमें मेहनत करनी है, हमें मैनुअल वर्क चाहिए ही चाहिए,
0: पसीना
1: वो
0: बहाना ही
1: हाँ
0: है।
1: वहीं अगर मान लो तुमने कुछ ऑर्डर किया है तो तुम्हें तुम्हारे घर पे वो सामान आएगा, तुमने ऑर्डर किया तो वो कोई व्यक्ति ही तो लेकर आएगा,
0: बिल्कुल
1: उसे तो एआई नहीं लेकर आ पाएगा
0: नहीं,
1: ना। तो यहाँ पे क्या हो कह सकते हैं ना हम कि ये हमारी
0: ये दैट इज ऑरेंज
1: ऑरेंज
0: इकोनॉमी।
1: इकोनॉमी।
0: दोस्तों, हम इकोनॉमी पे, एआई पे और आगे भी बात करेंगे, पर आइए पहले सुन लेते हैं एक छोटा सा संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर, इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर, 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अच्छा सुधांशु, इतिहास गवाह है कि नई टेक्नोलॉजी हमेशा नए रास्ते खोलती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे डाटा इंजीनियर्स हो गया, एआई ट्रेनर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और एआई मॉनिटरिंग जैसी नई नौकरियां भी आ रही हैं। लेकिन सुधांशु, जैसे कि तुमने कहा था, अब हमें तकनीक के उन गहरे पहलुओं पर भी बात करनी चाहिए जो इन एआई मॉडलों के पीछे काम करते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम स्किल की बात करते हैं, जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, तब हमें ये तो समझना होगा ना भाई कि एआई है क्या, तभी तो हम एआई के ट्रेनर बनेंगे, डेटा के इंजीनियर बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी के एजेंट बनेंगे, एआई मॉनिटरिंग कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों, जब एआई और भविष्य के करियर पे हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरल इंजन्स क्या होते हैं, एलएमएस यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, और एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की गहराई से हमें समझ होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल इंजन की। न्यूरल इंजन, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के चिपसेट में लगा वो विशेष हार्डवेयर पार्ट है जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जटिल गणितीय गणनाओं को पलक झपकते ही प्रोसेस कर देता है, और यही कारण है कि आज आपके फोन में फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग इतना तेजी से हो रहा है।
1: अरे वाह सुधांशु, तुम्हें तो सच में बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अच्छा सुधांशु, एलएमएस यानी जो तुमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कही, ये बताओ ये क्या है?
0: ज्योति, एलएलएमएस असल में एआई के वो विशाल दिमाग हैं जिनमें अरबों खरबों शब्दों और टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, एआई की कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं। ये मॉडल इंसानी भाषा के व्याकरण, उसके कॉन्टेक्स्ट और अर्थ को समझकर बिल्कुल इंसान की तरह जवाब लिखते हैं, कोडिंग करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं।
1: और वहीं अगर हम शिक्षा और ट्रेनिंग के क्षेत्र में एलएमएस को देखें तो इसका क्या रोल हो सकता है?
0: ये बड़ा अहम सवाल है कि एलएमएस अब साधारण लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एआई पावर्ड हो चुके हैं। एक स्मार्ट एलएमएस हर

0: छात्र या कर्मचारी के सीखने की जो गति है, उनकी कमजोरियों, उनकी ताकत का विश्लेषण करके उसके लिए पर्सनल लर्निंग पाथवे तैयार कर सकता है। यानी अगर किसी युवा को एआई के दौर में खुद को अपस्किल करना है, तो एआई ड्राइवन एलएमएस उसे सटीक ट्रेनिंग जरूर देगा।
1: वाह, कितनी शानदार बात है। इसका मतलब ये है कि अगर हम युवा इन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे न्यूरल इंजन्स हो गया या फिर एलएमएस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या एआई बेस्ड एलएमएस से सीखने की कला को अगर हम पकड़ लें, तो एआई उनके लिए खतरा नहीं है बल्कि उनका एक सही साथी बन सकता है।
0: हाँ ज्योति, निष्कर्ष यही है कि तकनीक से डरने के बजाय उसे हथियार बनाइए, खुद को अपडेट रखिए, न्यूरॉन इंजन और एलएमएस की ताकत को समझिए और अपने करियर को एक नई ऊंचाई दीजिए।

0: तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज का, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन महान व्यक्तित्वों से जिनका जीवन आज भी हमें साहस, संघर्ष और देश प्रेम से प्रेरणा देता है।
1: और आज की हमारी कहानी है दक्षिण भारत के उस वीर योद्धा की, जिसने अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। एक

0: ऐसा नाम जिसकी वीरता तमिलनाडु के इतिहास में आज भी बहुत गर्व के साथ याद की जाती है, धीरन चिन्नामलाई। धीरन चिन्नामलाई नाम सुनते ही मन में एक ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जिसने अपने क्षेत्र, अपने लोगों और अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था।
1: बिल्कुल, धीरन चिन्नामलाई का जन्म 1756 में तमिलनाडु के वर्तमान इरोड क्षेत्र के पास हुआ था ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम तीर्थगिरी था, आगे चलकर वो धीरन चिन्नामलाई के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: यानी एक ऐसा दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। दक्षिण भारत में भी अंग्रेजी सत्ता अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी, लेकिन हर जगह उन्हें आसानी से रास्ता मिल ही जाता, ये जरूरी नहीं था। स्थानीय शासकों और योद्धाओं ने उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी।
1: और इन्हीं वीरों में एक नाम इनका भी था। केवल एक योद्धा ही नहीं थे ये, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने वाले नेता भी थे। उनका संघर्ष उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ केवल राजनीतिक सत्ता ही नहीं बल्कि आर्थिक संसाधनों पर भी अपना नियंत्रण मजबूत कर रहे थे।
0: मित्रों, कहा जाता है कि चिन्नामलाई ने अंग्रेज़ों के सहयोगी स्थानीय अधिकारियों और उनकी कर वसूली व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। यानी उनका संघर्ष केवल सत्ता के खिलाफ नहीं था बल्कि आम लोगों के अधिकारों के लिए भी था। यही बात उन्हें एक प्रेरणा पुंज बनाती है।
1: और फिर आता है वो दौर जब दक्षिण भारत में अंग्रेजों और स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष तेज हो रहा था। धीरन चिन्नामलाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई सैन्य संघर्षों में भाग लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और स्थानीय भूगोल की समझ का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी सेना को चुनौती दी।
0: यहाँ एक बात गौर करने वाली है, उस समय आधुनिक हथियार और संसाधन सीमित थे, लेकिन आत्मविश्वास और अपने क्षेत्र की जानकारी उनके पास बड़ी ताकत थी। इतिहास हमें बताता है कि किसी भी संघर्ष में केवल हथियार ही जरूरी नहीं होते, नेतृत्व, रणनीति, साहस और अपने उद्देश्य के प्रति विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। धीरन चिन्नामलाई का जीवन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे प्रेरणा पुंज चिन्नमलाई, धीरन चिन्नमलाई की। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के सामने समझौता करने के बजाय, अभी हमने आपसे बताया ना, उनका प्रतिरोध किया। और यही कारण है कि उनका नाम तमिलनाडु के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रारंभिक प्रतिरोध के महत्वपूर्ण चेहरों में लिया जाता है।
1: कहा जाता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 31 जुलाई 1805 को उन्हें उनके भाइयों और एक सहयोगी के साथ संगिरी किले में फांसी दे दी गई। वो समय था 31 जुलाई 1805। लेकिन किसी वीर की कहानी उसके जीवन के अंत के साथ समाप्त तो होती ही नहीं है। उसकी सोच, उसका साहस और उसका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों तक पहुँच जाता है।
0: धीरन चिन्नमलाई के साथ भी यही हुआ। समय बीतता गया, लेकिन तमिलनाडु में उनकी स्मृति और वीरता को सम्मान मिलता रहा। तो श्रोताओं, आज की प्रेरणा पुंज में हमने जाना एक ऐसे वीर के बारे में जिसने अपने लोगों और अपने धरती के सम्मान के लिए अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। धीरन चिन्नमलाई का जीवन हमें बताता है कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का नाम नहीं, इतिहास उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए कठिन रास्ता चुना।
1: और शायद यही वजह है कि कुछ नाम समय की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। उन्हीं नामों में एक नाम है धीरन चिन्नमलाई का। आज की प्रेरणापुंज में बस इतना ही, पर याद रखिए कि सच्चा साहस मुश्किलों की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि मुश्किलों के बीच डटे रहने में है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में प्रश्नावली का भी एक सेगमेंट लेकर आते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज का हमारा प्रश्न क्या है और आप उसका उत्तर अगर हमें देना चाहते हैं तो आप कहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि ऑरेंज इकोनॉमी किसे कहते हैं। आप हमें अपना उत्तर दे सकते हैं
0: हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। और अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8004926250।

0: दोस्तों कार्यक्रम में ये आज का हमारा युवानी कार्यक्रम था। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। तो ज्योति, चलते चलते एक बहुत प्यारी बात है किसी चिंतक की। उसने लिखा है कि मतलबी लोग और धूल दोनों एक जैसे होते हैं, ये उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ हवा होती है।
1: तो इसी के साथ मुझे यानी ज्योति
0: और मुझे यानी कि सुधांशु पांडे को
1: दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का। अब से कुछ क्षणों में
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900

भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारा प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों से आपको अवगत कराने का। पहले आज के शेष कार्यक्रम। सात बजकर 7:30 से आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे 7:30 से 8:45 तक, फिर समाचारों के बाद 9:30 से खेल की समाप्ति तक। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में विकास श्रीवास्तव के गाए लोकगीत के अलावा हमारे किसान भाई डॉक्टर अजय कुमार से की गई बातचीत सुनेंगे, प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता।

कल रात 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम सुनिएगा कहकशां। सुबह 6:05 पर हमारी प्रातःकालीन सभा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन सकेंगी। विचार बिंदु में 6:30 पर सरोजनी नायडू के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह प्रसारित होने वाले कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर आपको सुनवाएंगे श्री हरि माधव शुक्ला से मनोज कुमार सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय होगा जैव उर्वरक के प्रयोग से लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एस बी सिंह की वार्ता होगी, विषय अवसाद में कितनी कारगर होम्योपैथी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर श्रीयुत श्रीकांत वैश्य और शाम 7:45 पर संगीता राय के गाए भजन और गीत हम आपको सुनवाएंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7:00 सुनवाया जाएगा और 7:10 पर हाजिर होंगे फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाओं के साथ। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर और रात्रि 10:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन और दिन में 12:15 पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

दिन में 12:30 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा आपकी पसंद। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना से नेहा गुप्ता की बातचीत। बातचीत का विषय होगा विशेष बच्चों को मुख्य धारा में कैसे शामिल करें। दिन में 2:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। शाम 5:00 नन्ही दुनिया कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे आओ जाने के अंतर्गत मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक हैं। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता सृष्टि सोमवंशी की वार्ता सुनेंगे। विषय होगा विलुप्त होती लोक संस्कृतियां और युवाओं की जिम्मेदारी। इसके अलावा प्रेरणा पुंज के केंद्र में होंगे वासुदेव बलवंत फड़के। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई रागिनी चंद्रा से बनारसी कजरी सुनेंगे। इसके अलावा अखिलेश कुमार की वार्ता होगी भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन और अनूप कुमार उपाध्याय से लोकभाषा कविता पाठ। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता होगी आदिकाल का रचना संसार। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की। आप इस वक्त आकाशवाणी प्रयागराज के साथ हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, आइए आपको सुनवाते हैं देशभक्ति पूर्ण रचना।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं संस्कृत में समाचार। समाचारों के लिए बस थोड़ी प्रतीक्षा।
4: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं। उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः। 78 शतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति। नूतनोन्मेषं च सद्यापि विलुप्ताः। भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4th विमानं नेपालाय प्रेषितम्। अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्चशिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितं, यत् हि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमंत्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः। श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति। अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अंतर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्तायां श्री मोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी सन्तोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
5: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे

0: बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
1: प्रधानमंत्री न्यवेदयत यत मादक द्रव्य व्यसनम केवलम एकम जनम न ग्रसते अपितु समग्रह परिवारह समाजश्च अस्य दुष्परिणामान भुंक्ते। सह तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादक विरोधी जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादक द्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46% महिलाः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट् इत्यस्ति, येन 18 देशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेषक्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुम्बईनगरस्थेन कृष्णशेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
0: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
1: मध्य नेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70% संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्याम घटनायाम 2500 जनाः

0: लुप्ता सी संकट से पंचमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिण द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायां अद्य भारतीय महिला दलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरंभं करिष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।

0: राम राम
1: काओ घनश्याम भैया, का हाल चाल बटे?
0: रघु भैया हो देखा हाल चाल तो भैया नीक रहला हमेशा हो।
1: हाँ, जब भैया
0: खेत में बढ़िया फसल हो, पशु प्राणी अच्छा हो।
1: हाँ भैया,
0: तो भैया समझ ला कि मौज है, मौज बा हो, हाल चाल तो अपने आप ठीक रहला।
1: हाँ भैया, साल भर के भैया मेहनत सफल हो।
0: हाँ, लेकिन रघु आज देखा 30 अगस्त हो और आज भैया देखा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनावल जाता।
1: हाँ भैया,
0: बात हम कहली है ना कि भैया वो खेती किसानी के साथ साथ अगर कोनो रोजी रोजगार
1: हाँ भैया
0: कैल जाए हो तो समझला पैसा का डेवड़ बनल रहत है, क्योंकि आगे हाथ नहीं पसारे के जरूरत।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: लघु उद्योग में भैया देखा हो कम पूंजी में कोनो भी धंधा कोनो भी व्यवसाय शुरू कैल जा सकेला। भैया सरकार भी देखा ना ये
1: हाँ
0: पर बड़ी सजग हो।
1: बिल्कुल
0: भैया हो लघु उद्योग कोनो स्तर को हो।
1: हाँ भैया,
0: देखा किसान के घरे में ही बहुत सारी ऐसा चीज भैया पैदा होले हो कि अगर वो कोनो व्यवसाय करे चाहते हैं तो ओकर अधिक से अधिक जरूरत भैया अपने घरे से, अपने खेत से, अपने आंगन से पूरा हो जाए। तो भैया हो देखा ये तरह का अगर लघु उद्योग हमारे किसान भाई करत हैं, सोने वाले भैया करत हैं हो,
1: अच्छा भैया,
0: तो भैया कम संसाधन में एकर शुरुआत कह सकन है। जैसे भैया देखा हस्तशिल्प बाय, बुनाई हो, डेयरी का काम बाय,
1: हाँ भैया,
0: खाद्य प्रसंस्करण हो, खिलौना बनाओ के हो,
1: हाँ भैया,
0: फर्नीचर बनाओ के हो, अगरबत्ती हो, कुटीर उद्योग हो, अगर ये तरह में भी कोनो तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार के माध्यम से देखा उनके भैया आर्थिक सहयोग भी होता है और पर अनुदान भी मिल जाता है।
1: भैया देखा सरकार की यही योजना बाटे जो है ये लिए मनाया जाता है ताकि जो है लोग अपन देश के जो छोटे छोटे उद्योग बाटे उनका बढ़ावा मिल सके।
0: बिल्कुल
1: पहली
0: बिल्कुल।
1: बार भैया का जो है 2001 से मनावा गया है, 30 अगस्त 30 अगस्त 2001 से शुरू किया गया भैया, तब से मतलब हर साल मनावा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो रघु। और अगर हम कहीं देखा छोटा छोटा रोजी रोजगार से दो पैसा का आमदनी हमारे भैयन के हो जाए, रोजगार पा जा हो, तो ऐसे उनकर तो देखा उन्नत उनकर तो विकास होबे करी,
1: बिल्कुल
0: अपने देश के भी आर्थिक रूप से मजबूत करे में उनकर सहयोग मिल जाए।
1: हाँ। भैया देखा वो तो धंधा करबे करिए अपन उद्योग,
0: बिल्कुल
1: साथ साथ दो चार आदमी के रोजगार दिए भैया।
0: हाँ
1: जैसे भैया बेरोजगारी कम हुई देश में।
0: बिल्कुल। लेकिन एक बात देखा गुजारिश करे के बाद सुनने वाले भैयन के हो रघु कि भैया हो अगर अपने आसपास में क्यों भैया ये तरह का अगर लघु उद्योग करते हैं, जैसे मान ला भैया अगरबत्ती बनाओ थे,
1: हाँ भैया
0: कपड़ा बनाओ थे,
1: बिल्कुल,
0: तो ये देखा हो छोटा छोटा जो इनकर रोजगार बन है इनकर प्रतिस्पर्धा बड़ी बड़ी कंपनी से भी हो जाता है।
1: बिल्कुल भैया। हाँ
0: भैया हो देखा आज का दुनिया बड़ी चामक चुमक पे चलत है।
1: हाँ भैया,
0: भैया देखे में निक लागत बाय तो ऊपर आकर्षण ज्यादा होता भले ही वो मजबूती में खराब कहन हो।
1: हाँ
0: तो हमार तोहार देखा ये जरूर कर्तव्य बनत रघु कि भैया हो लघु उद्योग जैसे हस्तशिल्प माला कोनो कला बाय,
1: हाँ
0: तो भैया हो हम कहीं कि एके जरूर खरीदें भैया यमन देखा।

0: खरीदबा त अपने भाई के त दो पैसा का मजबूती अइबे करियो, अपन देश अपन समाज अच्छा हुई। विदेशी जौन भैया धन हो वो अपने देश में आई।
1: बिल्कुल,
0: हस्तशिल्प मेला जहाँ भी लगे बढ़ चढ़ के भाग लें, कहे से देखा अपने बीच में भैया जौन है न उनके द्वारा निर्मित चीज जौन है ये मेला में दिखत है।
1: बिल्कुल भैया,
0: ओके भैया खरीदे और आर्थिक रूप से उनके मजबूत भी करें।
1: भैया देखा कोई भी सामान अपन देश में बनी अगर अवका अपने देश में ही खरीदा जाए तो भैया अपन देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।
0: बिल्कुल,
1: साथ साथ भैया जो बाहर के जो देश

0: उनके भैया खरीदें और आर्थिक रूप से उनके मजबूत भी
1: करें। भैया देखा, कोई भी सामान अपन देश में बनी अगर अवका अपने देश में ही खरीदा जाए, हाँ। तो भैया अपन देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई,
0: बिल्कुल।
1: साथ साथ भैया जो बाहर के जो देश वाले वो भी खरीदे तो उनके विदेशी मुद्रा भी घर पे आई।
0: हाँ, तो भैया ये हमारे त्योहार दिखाए मन कर्तव्य बनत हो कि ए तरह से अगर भैया क्यों रोजी रोजगार करत हो ना,
1: बिल्कुल,
0: तो भैया हो उनके बढ़ चढ़ के बढ़ावा था।
1: हाँ भैया, हाँ।
0: दूसरा कि भैया देखा जैसे भैया मुर्गी पालन बाय, कुकुट पालन बाय, बकरी पालन बाय, ए तरह के भी उद्योग अपना के दो पैसा का आमदनी कैल जा सके।
1: बिल्कुल भैया,
0: कहे से भैया अगर ये तरह के देखा अगर कोनो काम करत है ना, तो भैया उनकर खान पान बाय ना,
1: हाँ
0: तो भैया अपने घरे अपने खेत अपने आंगन से काफी हद तक पूरा हो जाता है।
1: हाँ भैया, देखा बात बतकाई होत रही, मुला कुछ संदेश बांटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आवाज सुन लीजिए,
0: सुनवा दा।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में, स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: भैया आज भी आपके कार्यक्रम का पोटरी तनी बढ़ दिखात बा,
1: हाँ
0: हमरे सुने वाले भैया किसान भैन के बता दा आज अपने कार्यक्रम में काका सुनोई बा।
1: अच्छा भैया, देखा आज अपन पंचायती में बातचीत बाटे प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता, डॉक्टर अजय कुमार से दुर्गेश मिश्र की बातचीत बाटे, सुना जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बोला भैया हम कहीं कुछ पंचायती में कुछ गीत गाने हो जाए।
0: बिल्कुल भैया, तो देखा विकास श्रीवास्तव भैया बैठल हुए, तो अब भैया से कुछ सुनल जाए।
1: सुनवा दे भैया।
0: बिल्कुल।

0: निकालो
1: भैया, लोकगीत सुना का भैया, विकास श्रीवास्तव के बड़ा नीक रहा भैया,
0: बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और रघु भैया हो देखा कोनो भी चीज हो ना,
1: हाँ भैया,
0: तो भैया हो अगर अपन समझ ला कि खेती किसानी बढ़िया हो तो भैया हो लोकगीत गाना गौनई हाल चाल कुल अच्छा लागत।
1: हाँ भैया,
0: भैया हर समय हर स्थिति में सजग रहे के चाही।
1: बिल्कुल,
0: खेती के समय समय पर देखा जौन वैज्ञानिक भैया लोग बतावन भैया ओ तरह से परिवर्तन भी रखे के चाही, बदलाव भी लियावे के चाही।
1: बिल्कुल भैया,
0: जमाना रहल एक हो कि सनई ढंचा से खेती होत रहे, बढ़िया मजबूत अनाज होत रहे, अब भैया हो के खाई के सौ सौ बरिस लोग जियत रहना।
1: बिल्कुल,
0: अब भाई हो चेहरा ऐसा लाल लाल धमकत रहे, ज्यादा पैदावार के चक्कर में हो देखा रासायनिक खाद का प्रयोग होए लगल।
1: बिल्कुल भैया,
0: भैया पैदावार तो शुरुआत में बढ़ल हो रघु, लेकिन अब धीरे धीरे पैदावार के बढ़े के दर थिराई गई, लाभ जमीन का जो अपन माटी हो खेते का ना,
1: हाँ हाँ
0: भैया वो भी अपन सुगंध खो दे ले।
1: हाँ भैया, उनकी उर्वरा क्षमता कम हुई।
0: हाँ, तो भैया हो फिर से हमें पुरानी परंपरा पे लौटे के चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अपन जो है अनाज वो मजबूत अनाज बने, अपने स्वास्थ्य पे अच्छा रहे रघु।
1: हाँ भैया,
0: तो खेती किसानी यही तरह के करे के चाहिए।
1: बिल्कुल भैया,
0: भैया यही पर जौन आप एक बतकही करत रहा है ना कि तो के तनी बता दे भैया कि आज कौन बतकही बा,
1: प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता, डॉक्टर अजय कुमार से दुर्गेश मिश्र की बातचीत बाटे हम कही तू सुना किसान भैया।
0: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया,
1: सुनवा दे भैया।
2: पंच भैया देखा समय बदला और मौसम में बहुत कुछ बदलाव दिखात बाटे। आज जो एक सबसे बड़ी चुनौती बा वो ई बा कि जो चीज हम उगाई वो स्वस्थ रहा। अब एक अभियान भी चला बा कि अंधाधुंध जौन हम रसायन के प्रयोग करते ही खेती में, ऐसे वातावरण के तो नुकसान होते ही बा, साथे साथे माटी के संरचना भी बिगड़त बा, और एक सबसे ज्यादा नुकसान बा कि रसायन के उपयोग से जो चीज उगत बा वो हमरो सबके सेहत पे तो बुरा प्रभाव छोड़त बा। तो ई सब के बदे भैया एक बात आए जैविक खेती के, अब जैविक खेती से भी एक कदम और आगे आए गए प्राकृतिक खेती के, जौन आपन प्रकृति के हिसाब से खेती हो, अपने जलवायु के हिसाब से खेती हो, अब एह पे ध्यान दे के जरूरत बा। तो प्राकृतिक खेती कैसे होत है, एक एक का उपयोगिता बा, ऐसे का नुकसान फायदा बा, आज एक जानकारी दे के बदे कृषि विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ भैया आए हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। डॉक्टर साहब आपके स्वागत बाटे।

0: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे किसान भैया ये जानना चाहें कि अब तक तो जैविक खेती एक सामान्य हो गया बाबा, कि भाई हम जैविक उगाऊ तो हमका 4 पैसा ज्यादा मिली। अभी प्राकृतिक खेती जो उन्हें नया शब्द आए बा, ये का होत है और एक कैसे किसान भैया रे समझें?
1: देखिए किसान भाइयों, जैविक और प्राकृतिक खेती में बहुत अंतर नहीं है, दोनों रसायन मुक्त खेती है। जैविक खेती में हम किसान भाई जो बाहर से चीज़ों को लाते थे, खरीदते थे, आज हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती जो है प्राचीन पद्धति है, जो किसान पुराने समय से जो चीज़ें करते चले आ रहे थे, बीच में उन्होंने जब रासायनिक खेती का चलन आया तो उसके बाद रासायनिक खेती के ऊपर वो पूरी तरह से आश्रित हो गए और बहुत कुछ उन्होंने रसायन डाला, जिसकी वजह से आज बहुत नुकसान भी हो रहा है। और आज जो है प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता हो गई है। यदि अगर आज हम नहीं जागेंगे और आज हम नहीं इस पे ध्यान देंगे तो आने वाले समय में हमारे खेत जो है सर समान हो जाएंगे, हमारा जो भी उत्पाद तैयार होगा वो जहर से भरा होगा, हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं आएंगी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक जैविक में तो कहा जाता है कि भाई धीरे धीरे रसायन के कम करके हम पूरी तरह जैविक पे आ जाए, लेकिन अगर का प्राकृतिक में पूरी तरह रसायन मुक्त होगा?
1: देखिए दोनों में अगर जैविक की बात करें और प्राकृतिक खेती की बात करें तो दोनों रसायन मुक्त की बात है। जब हम जैविक की बात करते, जहां पर हमें सर्टिफिकेशन की बात आती है तो वहां पर पंजीकरण का जब वहां पर आता है, या हम कहीं पर बाहर विदेशों में अपने उत्पाद को बेचना मांगते हैं तो वहां पर भी जैविक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जरा सा भी उसका अंश जो है रसायन का उसमें नहीं
0: कौनो
1: जाए,
0: प्रकार से भी
1: कोई भी,
0: रसायन हम
1: चाहे
0: उपयोग
1: वो,
0: न करें।
1: हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को देखनी पड़ती है, चाहे वो बगल का किसान क्या कर रहा है, हमारा सिंचाई का साधन क्या है। अगर वो सिंचाई का साधन नहर है तो वो कई जगह से गुजरते हुए आती है और फिर वो उसमें भी बहुत सारा रसायन घुल करके और हमारे खेतों में आ
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
1: सकता है।
0: एक बड़ी समस्या तो बा कि भाई हम तो पूरी तरह से जैविक अपनाए चुका ही अपराध, लेकिन हमारे पास वाले जो किसान भैया है रहे हैं, लखन भैया हैं या जोखू भैया हैं, वो तो भाई नहीं, तो वो जो रसायन प्रयोग करते हैं उसके असर तो अपने खेत पे पड़त बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैविक से हम प्राकृतिक में क्यों आए और उसका कारण क्या है और आज की आवश्यकता क्या है? हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो, और हम सब जानते हैं कि अगर हम 1 बीघा में 10 कुंतल गेहूं ले रहे हैं तो क्या वो हम वहां पर 20 कुंतल गेहूं लेने लगेंगे? ऐसा नहीं है। उनका मतलब ये था कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, किसान अपने संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास अपनी गाय है, हमारे पास जो हमारा फसल अवशेष है, जो एक और बड़ी समस्या है, जो किसान फसल अवशेष को जला देता है जिसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण फैलता है,
0: जैसे पराली,
1: पराली
0: पराली की
1: पराली
0: बड़ी
1: जलाना,
0: बात आएगी भाई, जो उन खेत में जलाए देते हैं तो
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे खेत में जीवाश्म भी मर जाते हैं डॉक्टर साहब।
1: जीवाश्म भी मर जाते हैं। तो जो प्राकृतिक का नियम है, जो भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे एक पेड़ है, अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो जंगल में कोई वहां पर ना तो खाद डालता है ना वहां पानी डालता है, लेकिन ईश्वर का ऐसा सब कुछ तैयार किया हुआ वो है कि एक चक्र है जिसमें वो सब कुछ अपने आप में पूरा करता है। अगर एक पेड़ है, उसका व्यास जितना चौड़ा होता है, उसकी जितनी भी पत्तियां होती वो गिरती हैं, जमीन में जाती हैं, उसके बाद वो सड़ती हैं, ह्यूमस क्रिएट करती हैं, और उसी से वहां पर नमी भी बरकरार रहती है, और फिर बीज गिरता, फिर एक नया पौधा तैयार हो जाता है, और कई कई दिनों तक आप देखिए वो काफी उम्र का पेड़ जो है वो खड़ा रहता हैगा, उसका वहां पे कोई नहीं जाता है। लेकिन हमने जिस प्रकार से खेती हम करने लगे, उसके बाद समस्याएं और धीमे धीमे करके हम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आ गई जिसमें हम खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगे, और जो फसल चक्र की बात करी जाती थी उसको हमने डिस्टर्ब किया, हमने फसल चक्र को भी
0: बिल्कुल
1: धान
0: खत्म
1: गेहूं
0: कर।
1: की खेती करने लगे। धान गेहूं की खेती करने के कारण जो हमारी जमीन है वो भी जो बहुत सारा दोहन होने लगा तत्वों का, अगर हम उसी में अगर फसल चक्र अपनाते और अगर हम जो भी हमारे पास जैविक जो गोबर की खाद है और हरी खाद है, इन सब का अगर हम प्रयोग करते रहते तो शायद आज जो हमारे सामने जो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, इसको हम दूर कर सकते।
0: किसान भाई यार के एक सबसे बड़े अपने पंच भैया एक समस्या ये बात है कि एक भ्रम की स्थिति हो जाती है कि अगर हम ई तकनीक अपनाओ तो हमारे पैदावार पूरी तरह से घट जाए। तो एक के लिए

0: कहा जी?
1: देखिए, इसमें जो है यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं, है ना, पिछले कई वर्षों से खेती में हम काफी नुकसान भी देख रहे हैं, और इसका मुख्य कारण जो है बहुत सारे हम हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा खेत में जो अनाज, सब्जियां और फल जो भी हम उगा रहे हैं, जिसे हम उपयोग में लेते हैं, है ना, इन खाद्य पदार्थों में जिंक और आयरन जैसे कई सारे खनिज तत्व उपस्थित होते थे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते थे। लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से जो है खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं, और इसके साथ साथ जिससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इसमें जैसे अगर प्राकृतिक खेती के फायदे अगर हम देखें, कृषकों की दृष्टि से देखें, तो जो पहली बात जो है वो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है,
0: बिल्कुल बढ़ जाती
1: है ना। उसमें जब हम गौ आधारित अगर हम कहें, गाय के गोबर, गाय का मूत्र, और उसमें अगर हम जो सजीव मिट्टी है, जो जहां पर हम देखते हैं जहां पर खाद उद नहीं, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया, या बरगद के पेड़ उड़ के नीचे की मिट्टी हम ले लें, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो जीवाणु की बात करें, चाहे वो हमारे कवक की बात करें, जो हमारे पौधों को, तत्वों को लेने में सहायक होते हैं ना। तो हम बात करें तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वो अपने आप ऑटोमेटिकली, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते, जब हम इनका प्रयोग करते, तो ये अपने आप जो लाभकारी जीवाणु कवक है, ये धीमे धीमे करके अपने आप बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और आज हम पंचायत घर के माध्यम से भी किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती को करेंगे और सही तरीके से अगर हम करेंगे, तो हमें हमारी लागत में कमी आएगी, हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, और एक जो भी हमारा उत्पाद तैयार होगा, एक गुणवत्ता युक्त उत्पाद तैयार होगा। प्राकृतिक खेती के माध्यम से, या जो किसान जैविक कर रहा है, मैं उसके लिए भी ये नहीं कहता हूँ कि वो ना करे, वो करे, जैविक खेती भी करे, वो भी रसायन मुक्त खेती है, और जो भी उत्पाद उसे तैयार होगा वो भी गुणवत्ता युक्त है, लेकिन उसमें उसकी लागत आती है, उसमें उसको बाहर से कल्चर खरीदना पड़ता है, राइजोबियम कल्चर है और ट्राइकोडर्मा है, तमाम या आप बायो पेस्टिसाइड्स हैं, उन सबको खरीदना पड़ता है। यहां पर प्राकृतिक खेती में क्या है, किसान को कुछ भी खरीदना नहीं है, किसान को गाय का गोबर लेना है, गाय का मूत्र लेना है, अपने खेत की जो है मिट्टी लेनी है।
0: डॉक्टर साहब, सबसे अहम चीज तो प्राकृतिक जो खेती का तरीका बा, ऐसे कुछ अलग बा कि केवल बस हम आकर वह गोबर के खाद, भाई गोबर के खाद तो हम जैविक खेती में भी प्रयोग में लावत है, बर्मी कंपोस्ट बा, तमाम तरह के हरी खाद बा, इसमें प्राकृतिक खेती में और का तरीका अपनावे बा?
1: देखिए, प्राकृतिक खेती में जैसे हम रसायन में बात करते थे, बीज उपचार की बात करते थे, तो उसमें कार्बन डाइजिम थीरम से हम प्रयोग करते थे उसको, बीज को उपचारित, क्योंकि वहां पर हम जो भी बीज जनित रोग है, भूमि जनित रोग है, उनसे रोकथाम के लिए। जब जैविक की बात करते थे तो वहां हम ट्राइकोडर्मा की बात करते थे, जब हम प्राकृतिक की बात करते तो वहां पर हम बीजामृत की बात करते। अब बीजामृत कैसे बनेगा? अब जैसे अगर 100 किलो बीज है, 100 किलो बीज के लिए उसे 5 किलो गोबर चाहिए, गाय का, देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र चाहिए, 50 ग्राम उसे चूना चाहिए, और जो खेत की सजीव मिट्टी है वो ले ले।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद इसको मिलाने के बाद, और 20 लीटर के ड्रम में उसको डाल करके 20 लीटर पानी डाल के उसे भर ले, और उसके बाद वो 100 किलो जो बीज आपका है उसको एक उसी के ऊपर, उस ढेर के ऊपर, अब उसी बीजामृत को डाल करके उसको मिला लें।
0: आप
1: मिलाने के बाद उसे छाए में सुखा ले, और इसके बाद हम खेत में इसको बो दे, तो इससे जो क्या होगा, जो हमारे बीज जनित रोग है, भूमि जनित रोग है, उससे रोकथाम हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज है जो हम बात करते हैं, घन जीवामृत, ये सूखा जो है खाद तैयार किया जाता है, ये 100 किलो गोबर, देसी गाय का गोबर होना चाहिए, 5 लीटर गौमूत्र होना चाहिए, 5 लीटर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, 2 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ चाहिए उसके लिए, और इसको मिलाने के बाद 5 लीटर पानी में उसको मिला लें, और एक मुट्ठी आधा किलो सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी जब हम कहते हैं तो उसके मतलब ये होता है जहां पर रसायन का प्रयोग ना किया हो,
0: बिल्कुल
1: बाग है जहां पर आप कोई भी खाद नहीं डालते, या आप बरगद वरगद के पेड़ के पास की मिट्टी आप ले ले, उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, और हमारे गाय के अंदर, देसी गाय की बात करें तो 300 से 500 करोड़ जीवाणुओं की संख्या उसके अंदर पाई जाती है, और जब हम इसको अपने घन जीवामृत में, जो गोबर हमारा पुराना हो गया उसको सुखा, मतलब 8-10 दिन पुराना

0: अपना गोबर हो जो छाए में सुखाया हो, और उसको अच्छा और पाउडर जैसा बना करके, और उसमें जो है जो हम 5 लीटर गाय का मूत्र लिया है, 2 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी मिट्टी, उसको मिलाने के बाद उसमें डाल दें उसके ऊपर सूखे गोबर के ऊपर, और मिला करके उससे थोड़ा सा छाए में सुखा दें, और इसको हम 6 महीने तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 एकड़ खेत में इसको बिखेर दें, जब आखिरी
1: अच्छा
0: जुताई करें तब डाल दें इसको। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे बहुत सारे जीवाणु की संख्या इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, जो अपने खेत में जैसे हम रासायनिक खादें डालते हैं उसकी जगह पर हम घन जीवामृत डाल दें। दूसरा एक और है जो जीवामृत की बात करते हैं। जीवामृत में क्या है, इसके अंदर आपको 10 किलो गोबर चाहिए, 10 लीटर गाय का मूत्र चाहिए, 2 किलो बेसन ले लीजिए, 2 किलो गुड़ ले लीजिए, 200 लीटर का ड्रम। जब ड्रम की बात करें तो उसमें ये ध्यान रहे कि प्लास्टिक का होना चाहिए, इसमें किसी धातु का ड्रम नहीं
1: नहीं,
0: हो।
1: केवल प्लास्टिक केवल।
0: प्लास्टिक का ड्रम में आप लें, उसमें आपने 10 लीटर आपने गोबर डाला, 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, देसी गाय का गौमूत्र डाल दीजिए, उसमें आप 2 किलो बेसन डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ डाल करके, और 1 मुट्ठी या आधा किलो आप कहें सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी जिसमें हमारे लाभकारी जीवाणु उसके अंदर हो, मतलब ऐसी जगह की मिट्टी जहां पर रासायनिक खाद हो ना डाली गई हो, उसको लेकर के उसको भी मिला लें। मिलाने के बाद उस 200 लीटर ड्रम को पूरा भर ले। भरने के बाद क्लॉकवाइज मतलब सीधा उसको घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है। अब ये किसान कह सकते हैं साहब ये क्यों ऐसा उल्टा क्यों नहीं करना सीधा क्यों कर, जब सीधा घुमाते हैं तो वो पानी जो है ऊपर की तरफ प्रेशर आता है और उसे ऑक्सीजन भी मिलती जो उस, क्योंकि उससे अंदर बहुत सारे जीवाणुओं की संख्या
1: जी
0: है जिसे हम मल्टीप्लाई, जब गुड़ डालते हैं बेसन डालते हैं तो बेसन जो है वो प्रोटीन का काम करता है और वो जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में
1: संख्या
0: सहायक
1: बढ़ा
0: होता
1: होता
0: है, और गुड़ से वो और अट्रैक्ट होते हैं तो इसलिए और उनकी संख्या बढ़
1: बढ़
0: जाती
1: जाती।
0: है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मिट्टी डाली है उसमें भी बहुत सारे जीवाणु है, हमारे गाय के गोबर में जीवाणु है, तो ये जीवाणुओं की संख्या उसके अंदर बढ़ती है। सुबह शाम 2 बार उसे क्लॉकवाइज 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उसे घुमा लें, उसके बाद उस कपड़े से ढांक करके उसे रख दे। 48 घंटे के बाद वो जीवामृत हमारा जो तरल जो वो खाद की तरल रूप में रहेगा उसे हम अब प्रयोग कैसे करें, यदि हम सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई अगर हमारे पास अपना ट्यूबवेल वगैरह होता है तो उसमें किसान भाई अपनी टंकी बनाते हैं,
1: अच्छा
0: टंकी में अगर टंकी के पास में उस ड्रम को रख दें और उसमें अगर टोटी लगी हो तो और अच्छी बात है, टोटी को खोल दें
1: खोल
0: तो
1: दें टंकी
0: हाँ
1: में
0: तो उस टंकी में जो पानी है उसी में गिरता रहेगा और वो पानी जो है जो बाहर नाली के थ्रू
1: खेत
0: जाएगा
1: तक, खेत तक
0: खेत
1: जो
0: में
1: जा रहा
0: जाएगा वो उसके खेत में
1: पूरी
0: अंदर
1: तरह
0: पूरी तरह फैल
1: फैल जाएगा।
0: जाएगा। तो ये अगर किसान भाई 2 बार, जैसे अगर अभी अब गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं है ना, पहली सिंचाई में इसको कर दें, फिर उसके बाद दूसरी सिंचाई में एक बार और कर दें, तो आप फसल देखेंगे कि मतलब बहुत अच्छी फसल आपको देखने में मिलेगी और आपकी जमीन में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या भी
1: बात
0: मल्टीप्लाई
1: है।
0: हो
1: एक डॉक्टर
0: जाएगी।
1: साहब, जैसे कि हम शुरू कर दें प्राकृतिक खेती, भाई हमारे पड़ोसी नहीं करता है, ठीक बा, जो हमारे बगल आए खेत, तो उसे कोई नुकसान?
0: उसे कोई इतना बहुत नुकसान नहीं होगा, धीमे धीमे जब अगर हम करेंगे तो ये जो हमारा अपना वो है, अगर कोशिश ये करें जब हम एक खुद करना प्रारंभ करेंगे तो बगल वाला जब देखेगा उसकी लागत कम हो रही है और वो उसके गुणवत्ता में और सारी चीजें अच्छी हैं तो बगल वाले किसान भी वो अपने आप ही वो भी
1: अच्छा,
0: करना
1: वो भी
0: प्रारंभ करते,
1: प्रेरित हो गए, भाई
0: क्योंकि
1: बिल्कुल करी
0: क्योंकि
1: है।
0: ये आसान तरीका है, किसान आसानी से गुड़ आपको मिल जाएगा, बेसन आपको मिल
1: बेसन मिल
0: जाएगा,
1: जाए, गोबर
0: गाय
1: मिल।
0: का गोबर, आज गाय बड़ी समस्या है लोगों के सामने देखते हैं कि छुट्टा, अगर हर किसान एक एक गाय को बांध ले अपने वहां पर तो एक गाय से एक देसी गाय से 30 एकड़ खेत तक हम
1: अच्छा,
0: अपना
1: हम
0: खेती कर
1: अपन
0: सकते
1: अपन
0: हैं,
1: खेती कर
0: तो
1: सकते।
0: किसान भाइयों के लिए एक और सरकार की जो समस्या वो भी समाधान हो जाएगा, किसान की समस्या है कि वो जो छुट्टा पशु जो घूम रहे हैं उनकी समस्या
1: अच्छा,
0: भी कम हो
1: एक
0: जाएगी।
1: एक डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पूछा अभी, कि जैसे एक तो हम ये तरीका अपनाए लें, दूसरी चीज एक जो सबसे बड़ी समस्या होती खर पतवार के खेत में, भाई दीमक के जो समस्या भाई, या फिर आगे आवे फसल तैयार भाई अन्य कीट, तो ओके कैसे भरपाई की जाए भाई, कि अगर हम रसायन मुक्त पूरी तरह कह दें तो ऐसे अगर अपनाए पे बाद में कोई असर तो ना पड़े?
0: देखिए अभी इसमें जो प्राकृतिक की बात करते हैं, पहली बात तो इसके अंदर कोई जुताई नहीं होनी चाहिए, कोई निराई गुड़ाई नहीं होनी चाहिए है ना,

0: फिर उसके बाद इसमें आच्छादन करने की आवश्यकता है, कोई रसायन का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा
0: जब हम इसकी बात करते हैं कि कैसे हम इसमें खरपतवार, अब जब निराई गुड़ाई की बात नहीं करते, तो यहां पर अगर यदि हमने दो फसलें अगर लाइन से लगाई हैं, मतलब फसल लाइन से लगाई हैं, तो जो दोनों लाइनों के बीच में जो जगह है वहां पर हम आच्छादन कर दें, मतलब जो फसल अवशेष है उसको डाल दें। उससे डालने से क्या होगा कि एक तो जो हमारी फसल जो खरपतवार है वो दब जाएगी, सप्रेस होगी, तो उसके कारण वो ऊपर नहीं निकलने पाएगी। दूसरी बात, जो आपने जीवामृत, घन जीवामृत आपने जो डाला है वो वहां पर काम करेगा, और वो क्योंकि अंधेरा होगा, ढका होगा, और वो टेम्परेचर को मेंटेन किए रहेगा, तो वहां पर आपके कुछ समय के बाद जब आप हटा के देखेंगे तो आपके केचुए और लाभकारी जीवाणु, कवक, वो अपने आप उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएंगे,
1: अच्छा
0: और वो जो फसल अवशेष डाला है वो भी सड़ करके वो खाद के रूप में आपको देगा, जिससे आपको जो खाद आपको देनी पड़ती वो भी समस्या कम हो जाएगी। तो जब आपके खेत में शुरुआत में, अभी मान लिया अभी आपने पहली बार आप करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कैसे इसमें होगा, तो वहां पर आपने जुताई कर दी, लेकिन आने वाले समय में आपको जुताई करने
1: मतलब
0: की भी
1: खेत के
0: जरूरत
1: जुताई के भी जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं
0: नहीं
1: है
0: है,
1: भाई, ये तो
0: क्योंकि
1: बहुत बढ़िया है,
0: तो
1: ट्रैक्टर वैक्टर की
0: वो,
1: भी जरूरत
0: हाँ,
1: नहीं है।
0: जो फसल अवशेष जो है वो भी सड़ करके वो आपके लिए ऐसा भुरभुरा बना देगा केचुआ, क्योंकि वहां पर इतने हो जाएंगे कि आपकी जमीन की जुताई वो खुद ही कर देंगे, और आपको सिर्फ बोना ही बोना रहेगा, और आप सीधा
1: अच्छा,
0: बुआई करें,
1: सीधा बुआई
0: बुआई
1: करें और
0: करें।
1: समय आए पे ओके कटाई
0: और
1: करें।
0: जो दूसरा सवाल आपने पूछा था, जैसे फसल सुरक्षा के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे पत्तिये हैं जिनको हम दसपर्णी, नीमास्त्र, इन सब का प्रयोग करके बहुत सारे जो हमारे रोग हैं जो
1: हाँ,
0: उनको जो है हम उनसे भी ठीक कर सकते हैं।
1: उनसे भी निपटा जा
0: हाँ,
1: सकता
0: बिल्कुल।
1: था।
0: तो प्राकृतिक खेती में जो भी हमारा उत्पाद, क्योंकि ना तो हमने इसमें खाद डाली रसायन की, ना हमने कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया, जो हमारे कीटनाशी की जगह पर हम इनको जो हम अपने प्राकृतिक रूप से जो हम पौधों को तैयार करेंगे उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक खेती के द्वारा जो है उन्हें एक अच्छा गुणवत्ता युक्त आपको खाद्य पदार्थ मिलेगा, अनाज मिलेगा,
1: हाँ, जो पैदा
0: और
1: हुई
0: जो भी
1: उस
0: सब्जी आप लगाएंगे वो भी आप उसमें, अभी जो
1: सेहतमंद
0: कहते
1: रहेगी।
0: हैं जो है स्वाद नहीं मिल रहा है उसमें, आपको स्वाद दिखाई देगा। जो पुराने हम लोग खाते थे, जो जो चीजें हम लोग भूल गए कि अब कैसा स्वाद होता है, अब सिर्फ हाइब्रिड हाइब्रिड खा रहे। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें हम देसी बीजों का ज्यादातर हम प्रयोग करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: ये महत्वपूर्ण बात यह है
0: हाँ,
1: कि
0: तो
1: बाजार में तो
0: जो,
1: आजकल सब बहुत
0: हाँ
1: हाइब्रिड आवत बा।
0: हाँ तो किसान के पास बाहर से खरीदने की भी जरूरत नहीं, वो अपने देसी बीज को भी इस्तेमाल
1: प्रयोग
0: कर
1: में
0: सकता है,
1: ला
0: प्रयोग में ला
1: सकता है
0: सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कितना बढ़िया, अच्छी चीज बताए कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि प्राकृतिक खेती अपनाए से जोते की जरूरत नहीं पड़ा, सीधा सीधा बुवाई के। देखे हुए तीन तरीका बताए, जीवोमृत, घनो बीजोमृत
0: बीजामृत,
1: और एक बीजामृत। ये तरीका अपनाए के सिंपल एक साधारणतः गाय गोबर के खाद के प्रयोग कैसे, गोबर और गोमूत्र यानी गाय के गोबर और गोमूत्र प्रयोग करके अच्छी खेती, सेहतमंद होके उत्पाद ले सकी थी, पैदावार ले सकी थी। तो निश्चित बात कि किसान भैया एका सुने हुई हैं, एका अपनाई है ये प्राकृतिक खेती के तरीके से। डॉक्टर साहब, आप आयन कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया
1: हाँ
2: रघु,
0: भैया देखा
2: देखा
0: बातचीत
2: हो,
0: रही,
2: प्राकृतिक खेती भैया आज
1: आज
2: के
1: के
2: अवसर
1: जरूरत हो, आज के आवश्यकता पे कितनी बढ़िया बात कही भइल है।
2: अब भैया हो देखा, जैसे जैसे बताए हैं डॉक्टर साहब, अगर वही तरह से खेती करें तो
0: हाँ
2: भैया खेत भी बढ़िया, माटी भी बढ़िया, अनाज भी बढ़िया, स्वास्थ्य भी बढ़िया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बात बात कही देखा, हमार तो वार्ता चलते रही हो, एक संदेश बह के सुन ला फिर बतियावल जाई।
0: सुनवा दे भैया।
3: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
4: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
3: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
4: डस्टबिन में, स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
5: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ भैया, संदेश हो गया भैया, अब भैया हम कहीं चला चलावा देखो, लोकगीत और सुन लीन जाए भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: तो भैया देखा, छेदी लाल के और
2: हाँ,
0: साथी के एक ठो बिरहा बाटे हमके, तू सुना किसान भैया, सुना
2: सुनवा दे भाई, सुनवा दे।
6: महिमा महान जग में भारी, मारुत नाम पड़ा व्रतधारी।

0: हाँ भैया,
1: भैया छेदीलाल और साथी के भैया बिरहा रहा, बड़ा खूब
0: खूब खूब भैया,
1: सुन के मन हरियर
0: भैया। लेकिन हो देखा रघु, इस समय भैया देखा बारिश का समय हो, भैया पानी बेवजह बर्बाद हो, बह के बर्बाद हो, ई देखा नीक नहीं हो। पानी के भैया बहाव के सही ढंग से बना लें, ताकि पानी जौन तालाब हो, पोखरा हो, भैया उमन जाए, ताकि वो पानी जौन हो ना लंबे समय तक ओकर उपयोग हो सके। और पानी भैया देखा रिस रिस के धरती के अंदर जाई रघु ने, तो भैया धरती के अंदर पानी के जौन हो ना तल, वो भैया बराबर रहे, ताकि गर्मी में भी दिक्कत ना हो।
1: अब तो भैया देखा सरकार भी जो है अभियान चलाए बैठे,
0: हाँ,
1: हाँ, हाँ, मतलब
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: बारिश कहीं भी हो कैसे भी होगा पानी इकट्ठा किया
0: जाए, हाँ संग्रह कर लिया बिल्कुल।
1: हम तो कई भैया जो कुआं तालाब सूख गए बहन बाटिन, उनका साफ सफाई करके उनका भी सही किया जाए, ताकि बरसात के पानी इकट्ठा हो सके।
0: बिल्कुल रघु भैया, जौन व्यवस्था बने हो पानी के संरक्षित करब बहुत जरूरी है।
1: भैया किसान भैया रहन के हमारा प्रोग्राम कैसा लगा भैया रहन, अपन प्रतिक्रिया दे सके तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बांटे भैया 800-4926-250
0: 800-4926-250।

0: 2620।
1: हाँ भैया,
0: ये पर भैया आप लोग अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं कार्यक्रम से संबंधित। और अगु देखा आप धीरे धीरे घड़ी इशारा करत बा भैया, आप छाता होता उठाओ, आप चले चला कीन जाए। अच्छा तो पंचो
1: राम राम,
0: राम, राम, राम।

हमारे ग्रामीण भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 7:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे 7:30 से 8:45 तक, और फिर समाचारों के बाद 9:30 से खेल की समाप्ति तक।

हमारी प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, 6:30 पर विचार बिंदु के अंतर्गत सरोजनी नायडू के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण समय है 6:35 और इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे श्रीहरि माधव शुक्ला से मनोज कुमार सिंह की बातचीत, जैव उर्वरक के प्रयोग से लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह सुबह 6:45 पर होगा, जिसमें कल आप सुनेंगे डॉक्टर एसबी सिंह की वार्ता, अवसाद में कितनी कारगर होम्योपैथी। श्रीयुत श्रीकांत वैश्य के स्वर में सुगम संगीत का कार्यक्रम सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर संगीता राय के स्वर में भजन और गीत आप सुन सकेंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे सुनवाया जाएगा।

शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन हम आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा दिन में 12:15 पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना से नेहा गुप्ता की बातचीत। बातचीत का विषय होगा विशेष बच्चों को मुख्य धारा में कैसे शामिल करें। शाम 5 बजे नन्ही दुनिया कार्यक्रम, जिसमें बच्चे सुनेंगे आओ जाने के अंतर्गत मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक हैं। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम, जिसमें सृष्टि सोमवंशी की वार्ता होगी, जिसका विषय होगा विलुप्त होती लोक संस्कृतियां और युवाओं की जिम्मेदारी। श्रोताओं, अभी आप हमारे आज के शेष और कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और

FM 100.3 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से शुरू हुए मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की सराहना करते हुए कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक

0: टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: क्लीन अप पटवाई अभियान की मुहिम चलाने वाले आकाश यादव और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और अपनी मुहिम की जानकारी देते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है।
2: जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर जाकर साफ सफाई का कार्य हम अपनी टीम के साथ करते हैं। उद्देश्य जो है वो लोगों की मानसिकता बदलना, लोगों को जागरूक करना कि प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है या हम अपना कहीं बाहर जाते हैं ट्रेवल करते हैं तो जो भी चीज हमारे प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको हम डस्टबिन में ही डालें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की नई यात्रा तय की है। आज राजधानी लखनऊ ने पुरानी विरासत के साथ आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान बनाई है।
3: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और उसे प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने आज लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महान विभूतियों की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये नए युग की महिलाएं हैं, सरकार उन्हें अवसर और सुरक्षा प्रदान कर रही है। लखनऊ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
5: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था और आज देश अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय देख रहा है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज लखनऊ में कहा कि प्रदेश में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जिसका लाभ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में जाति धर्म और मतभेद को भुलाकर एकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मथुरा में 38वीं क्षेत्रीय हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज हॉकी के अंडर 14 बालक वर्ग में नोएडा और पूरनपुर पीलीभीत की टीमों के बीच हुए मुकाबले में नोएडा ने 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं फुटबॉल में अंडर 14 बालक वर्ग में मथुरा और नोएडा की टीमों के बीच हुए मैच में मथुरा ने 4-0 से जीत दर्ज की। 4 दिवसीय ये प्रतियोगिता 1 सितम्बर तक चलेगी। राजधानी लखनऊ सहित

0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वर्णा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित। कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: Pacha, if I could request you to come forward. Well, you're bowling first. What sort of a target would you be looking to restrict India to?
3: Yeah, I think not more than 120. Yeah.
2: Tell us a little bit about your designated captain, Narumol Chaibai, who is out injured. What's the injury status like?
3: She a bit injured, yeah.
2: Your expectations from this match? You're playing India after 4 years. Excited?
3: Yeah, be excited and be happy, yeah.
2: All the very best.
3: Thank you.
2: And that was the stand-in skipper of Thailand, as in comes Harmanpreet Kaur, captain of India. Had you won the toss, what would you have done?
4: Well, we also thought to bowl first, but I think batting first is also not a bad option.
2: Now that you're batting first, what's a good total to put on the surface?
4: Well, I think we are playing our first game and in Dubai after a long time. So I think other than keeping a lot of things in mind, just go there and execute and see how we finish the inning.
2: Well, there is no Jemima Rodrigues in your squad, one of the proven performers at the Asia Cup. What's your starting 11 looking like for today?
4: Yeah, today Pratika is going to make her debut because Jemima is not there, and we need to see somebody who is already got experience, and let's see how she is, you know, approaching the T20 side. And yeah, she's going to debut today.
2: And going into this tournament opener, what are your expectations as you look to regain that title?
4: Yeah, I think playing a good cricket is first, you know, thing which is in our mind. And I think we already spoke, you know, being ruthless, playing best cricket and, you know, giving our best. And because this is a very important tournament for us, and we have to get our confidence back in T20.
2: Go well, Harman.
4: Thank you.
2: Well, the toss is done and dusted. And the news from the center is Thailand have won the toss and decided to bowl first.
5: थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और जैसा कि कप्तान ने कहा, नारुमोन चाइवाय ने कहा कि 120 पर रोकना चाहेंगे। मतलब T20 का महासंग्राम है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का ये खेल है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले राकेश जी से पूछना चाहूंगा मैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोनों टीमों की।

0: निकल के स्टेप आउट करके मारना, वो ऐसा तो मैंने वुमेन्स क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा। हमारी बड़ी ग्रेट खिलाड़ी पहले भी हुई हैं, संध्या अग्रवाल जैसी बल्लेबाज हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त वो खेलती थी, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह की अब बल्लेबाजी हो रही है तो बहुत अटैकिंग हो रही है। लड़के और लड़कियों के मैच में थोड़ा सा अंतर नज़र आता है ताकत का, लेकिन जो जिगरा है ना वो लड़कियों का बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं दिखाई देता था। और वही चीज़ आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, जब हम हरमनप्रीत को देखते थे कुछ साल पहले भी, कि जिस तरीके के वो शॉट्स मारती थी, जिस तरीके के उनके पुल शॉट्स होते थे, बहुत गजब के होते थे। आज भी वो 37 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रही है, और मौका मिलने पर T20 इसमें तो एक प्लेयर आपको बदल के रख देता है। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा, मुझे बैटर के साथ उतनी दिक्कत नहीं, कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपको अनुभवी स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारी टीम के अंदर, और कोच को थोड़ी 11 चुनने में दिक्कत भी आती होगी कि भाई किसको रखें बाहर किसको अंदर करें टीम के अंदर, लेकिन जब आपके पास इतने वेरिएशन वाले खिलाड़ी हैं, अब तो आपके पास लेग स्पिनर भी एक आ गई है टीम के अंदर, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छे हैं, आपके पास ऑफ स्पिनर्स अच्छे हैं, वही फील्डिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, मुझे लग रहा है उसकी मजबूती वो दिखाई देगी पहले मैच से ही, कि भाई हमने जो कैंप लगाया उसमें किस तरह की तैयारी की।
1: देखिए पावर हिटिंग की आपने बात की, और एक पावर हिटर हमारे साथ भी बैठी हुई हैं लतिका कुमारी, उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कप्तान ने कहा, भारतीय कप्तान ने कहा है कि कमबैक करने का सही समय, यहाँ पर वो गैप जो हम देखते हैं ना, कि पिछले 3 मैचेस हुए हैं थाईलैंड के अगेंस्ट, और जो जीत का फर्क है वो 74-66, इतना ज़्यादा फर्क है, वो आज भी देखने को मिलेगा?
2: देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल देखने को मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड हाई किया है भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में, वो हमने देखा भी है। और सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा क्रिकेट आज के टाइम पे चल रहा है। अगर हम वुमेन्स की बात करें, हर ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपकी लीग स्टार्ट हो चुकी है, और

0: ये एक जगह है जहां पर आप पीछे से प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी मेन टीम जो है वहां पर अगर कभी भी कुछ, जैसे कि अभी जमीमा रॉड्रिक्स इंजर्ड हुई तो प्रतिका रावल वहां तैयार रही हैं, तो ये बैकअप आपके पास हमेशा रहता है और इसकी वजह से क्या एक हेल्दी कंपटीशन डोमेस्टिक सर्किट में चलता रहता है, और तो हमारे जो इंडिया प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको परफॉर्म करते रहना होगा, और T20 जैसा जो फॉर्मेट है वहाँ पर जिगरे की भी ज़रूरत है, ताकत की भी ज़रूरत है और स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एशिया कप, जहाँ से हम इन सब चीज़ें हैं जो हमें पिछले कुछ मैचेस में परेशान किया है उनको किस तरीके से ओवरकम करेंगे, जो कैंप लगा है वहाँ किस तरीके की तैयारियाँ हैं वो आज के मैच में पता चलेगा, उनकी प्लानिंग्स, उनके एग्जीक्यूशंस क्या करना चाहते हैं, गेंदबाजी जिस तरीके सर ने कहा कि अच्छे कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा अगर पेस की बात करूँ तो वहाँ थोड़ी तकलीफ नज़र आती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमें कोई ऐसा इफेक्टिव गेंदबाज वहाँ नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से अच्छी शुरुआत कर पाएँ। T20 मैचेस में हमारे रन्स लीक्स होते हैं जब इनिंग की शुरुआत होती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न है भारतीय टीम के पास के किस तरीके से अटैक वो गेंदबाजी में देखते हैं, किनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलने वाली है, तो वो सारी चीज़ रहेंगी। ये पूरा एशिया कप अगर मैं पर्सनली देखना चाहूँगी तो मैं गेंदबाजी पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि बल्लेबाजी मुझे लगता है हम सक्षम हैं किसी भी तरीके का स्कोर खड़ा करने के लिए या किसी भी स्कोर को हम चेज़ करने के लिए।
1: बिल्कुल, और इस बीच हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर वो हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084 और 1085। इस बीच राकेश, चर्चा चल रही थी पेस डिपार्ट

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म छोटी सी बात से, आवाज़ें यशोदास और आशा भोसले की, गीत के बोल योगेश के और संगीत सलील चौधरी का।

हवा महल में आज हास्य नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी, बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका उलाहना।

0: हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, और छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को।
1: किस कमबख्त ने साथ छोड़ दिया, मैं भी तो सुनूं। अरे वो कौन करम जली है, हे भगवान मेरे तो करम फूट गए।
2: अरे करम तुम्हारे नहीं रंजना मैडम, करम तो मेरे फूटे हैं तुम जैसी
1: चुड़ैल पाकर। अरे जब मुफ्त में दूध उड़ाने को मिल रहा है तो खूंटे पर गाय क्यों बांध
2: रही? अरे गाय वो भी मरखनी, आगे से सींगे मारे
1: और पीछे से दुलकती झाड़े, क्यों है ना?
2: ओहो तुम तो यार झाड़ू लेकर पीछे पड़ गई। अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था, अब तुम जैसी सीधी सरल सरपट सरसराती
1: थोड़ी ना मिली होती।
2: ओ सुना नहीं, खूबसूरत गाय मुझको ना मिली होती तो भला ये इतने खूबसूरत बछड़े कहाँ से आते?
3: पापा गाय के बजाय आप भैंस क्यों नहीं लाए? भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है।
1: क्या कहा, वो मीठू तेरे का, ये ले, मुझको भैंस कहता है।
3: मेरा कान छोड़िए, मैं तो पापा की बात कह रहा हूँ, वही तो आपको गाय बना रहे थे।
1: हाँ हाँ तुम बाप बेटे मुझको गाय बनाओ भैंस बनाओ
3: और चाहे बकरी बनाओ।
2: वंडरफुल वंडरफुल।
1: बस आपकी इन्हीं बातों से लड़के बिगड़ रहे हैं, ये सब आपकी शय पाकर शेर हो रहे हैं। अभी परसों ही रीना की माँ बबलू की और इंजीनियर साहब की बीवी बंटी की शिकायत लेकर आई थी।
2: अरे भाई क्या शिकायत लेकर आई थी, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: शिकायत क्या, बंटी ने रीना का बछड़ा खूंटे से खोल दिया और वो सारा दूध पी गया।
2: देखो रंजना अब फिर तुम्हारी तरफ से गाय का नाम आया है।
3: तो पापा अब मैं भैंस का नाम लूं?
1: अभी बताती हूँ तुझको, अभी बताती हूँ, तेरी जबान हाथ भर की हो रही है।
3: पापा क्या किसी की जबान हाथ भर की भी होती है?
1: चल भाग यहाँ से।

0: शिकायत सोमू का बच्चा कौन परवाह करता है, मेरे पापा मुझको कुछ नहीं कहेंगे।
1: कौन है?
2: अंकल मैं हूँ सोमू, जरा दरवाजा खोलिए, बंटी ने मुझे मारा।
1: अरे किसने मारा तुमको सोमू?
2: अंकल बंटी ने मारा।
1: क्यों, क्या बात हो गई थी?
2: बंटी ने मेरी मम्मी को बंदरिया कहा था।
0: पापा पापा ये झूठ बोल रहा है।
2: अच्छा
0: ये कह रहा था कि ये जो बंदरिया नाच रही है ना, ये मेरी मम्मी है।
1: अरे

0: गर्दन जो मजनू कचकारा तुझे देखकर ऐबे डंगी ऐसा लगता है। अरे अब मैं तुमको थोड़े ही कह रहा था, मैं तो
1: हाँ हाँ दीवारों को कह रहा था, तुम्हारी इन्हीं बातों को सीखकर लड़के बिगड़ रहे हैं।
0: चलो भाई ठीक है, हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं, तुम कुछ ऐसी वजह पैदा करो जिससे लड़के सुधर सके। कोयल सा है रंग तुम्हारा, गर्दन जो मजनू कचकारा।

0: अरे ये क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो?
1: पापा, बंटी ने मुझे बिजली की तार से मारा।
0: क्यों बंटी, ये दिन भर लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हो?
2: बड़े पापा बनकर आए हैं अपने बेटे का पक्ष लेने। जैसे सोमू बड़ा सीधा है, बेचारा कुछ नहीं जानता। पहले अपने लड़के को समझाइए, फिर मुझे कहिएगा।
0: खामोश, जरा सा है, इतनी सपासप जवान चलती है जैसे कतरनी।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए।
0: अच्छा देखो, मैं तुझे बताता हूँ, कान उखाड़ कर मेट कर रख देता हूँ हाथ में।

0: अरे क्या हुआ बंटी, क्यों रो रहा है, क्या बात हुई?
1: मुझको सोमू के पापा ने चार चार चाटे मारे, मुझको मारा है।
0: क्या? लेकिन बेटा बात क्या हुई? अच्छा ठहरो, मैं अभी चलता हूँ। अरे शर्म नहीं आती इतनी छोटे बच्चे को मारते हुए? अरे उलझना है तो किसी बराबर वाले से उलझे, तब समझ में आए। दो मिनट में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। छोटे बच्चे को मारना कौन सी बहादुरी काम है? दिन में सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। आओ चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ।
2: हाँ हाँ अब तो देखोगे ही, अपने लाडले को कुछ कहोगे नहीं, उसको उल्टी सीधी बातें सिखाकर शेर बनाओगे, और अब चले हो मोहल्ले में दूसरों से उलझने।
0: देखो रंजना, तुम हर बात पे अपनी टांग मत फसाया करो, हर वक्त कबाब में हड्डी मत बना करो, हर चीज में अपनी श्रीमुख को मत घुसेड़ा करो।
2: अरे मेरी समझ में नहीं आता कैसे पिता हो तुम।
0: खैर तुम अपना काम करो, मैं तुमसे इस समय बहस नहीं करना चाहता।

0: कौन है?
1: मैं हूं जनाब। मिस्टर, आपका ही नाम राजन है?
0: आइए आइए, कहिए क्या बात है। मेरा ही नाम राजन है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
1: ओ, ये नाम तो मेरे ससुर का भी है।
0: और हुजूर आपकी तारीफ।
1: अजी, मुझको अशोक कहते हैं।
0: ओ, ये नाम तो मेरे साले का है।
1: अच्छा, तो आप मुझको अपना साला बना रहे हैं?
0: ओ, और आप मुझे अपना ससुर बना रहे हैं?
1: जी हाँ, हर बात की पहल तो हमारी तरफ से होती है। हर चीज की पहल मैं और मेरा लड़का ही करता है। बस दुनिया में यदि कोई नया प्राणी है तो वो है आप और आपका लाडला।
0: आइए आइए, अंदर निकल आइए, जरा मिजाज को ठंडा कीजिए, चढ़े हुए पारे की डिग्री थोड़ा नीचे तो उतारिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं।
1: हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा पारा चढ़ गया है, मैं पागल कुत्ता हो गया हूँ, बिना मतलब भूखने और काटने लगा हूँ। एक आप ही इस कॉलोनी में भले और शरीफ आदमी है।
0: भाई साहब, आप तो औरतों की तरह झगड़ रहे हैं।
1: जी हाँ, मुझको औरत बनाइए, झगड़ालू बनाइए, अरे बनाना है साला बनाइए, चाहे जो मर्जी आप बनाइए।
0: मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आप खुद में खुद अपने मुंह से बनते जा रहे हैं।
1: जी हाँ, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। खैर, और बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने बच्चे को मारा क्यों? आज आपसे मुझको इस बात का निपटारा करना है। आप अपने को समझते क्या हैं? इंजीनियर होंगे तो आप अपने घर के होंगे, और पैसे वाले होंगे तो अपने घर के होंगे।

0: रिश्वत ये कहीं के।
1: मिस्टर असो, जबान को लगाम दीजिए, होश में रहिए। आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जबान को लगाम नहीं, जो चाहा बक डाला। दो मिनट में आपका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इतनी देर से टालता चला जा रहा हूं और आप हैं कि भीगे बांध जैसे ऐंठते ही जा रहे हैं। मुझको अपना ससुर, रिश्वतिया और न जाने क्या क्या बना डाला। आपसे अधिक समझदार तो मुझको आपकी पत्नी मालूम होती है। बच्चों के इन छोटे छोटे झगड़ों में औरतों को लड़ना चाहिए, पर मैं देख रहा हूं वे बेचारी मुफ्त में बदनाम है और आप इनकी भी सीमाएं पार करते जा रहे हैं। इस सड़ियल झगड़े को लेकर तिल का ताड़ बनाते जा रहे हैं।
0: तो इसका मतलब आप मेरी बीवी तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं? खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा तो
1: मैंने कौन सा आप शब्द कह दिए उनको?
0: जी आप कौन होते हैं मेरी बीवी के गुण अगुण बखान करने वाले?
1: अरे बेहतर होता कि आपकी पत्नी आपकी मिसेज होने के बजाय आपकी माँ होती।
0: क्या क्या क्या कहा आपने? मेरी बीवी मेरी माँ होती? मालूम होता है आपका दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हुआ है। कम से कम आपकी पत्नी आपकी माँ होती तो कुछ तो अच्छे गुण आ गए होते।
0: मैं पूछता हूँ कि आपको अभी इस मोहल्ले में आए हुए जुम्मे 4 दिन हुए हैं और आपने मेरी पत्नी के विषय में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली। मुझे आप अच्छे आदमी नजर नहीं आते।
2: अरे मैं कहती हूँ चलिए घर वापस चलिए।
0: छोड़ो यार,
2: दे चुके उलाहना, हो गया बस हो गया।
0: मैं पूछता हूँ तुम यहाँ कैसे आई?
2: क्यों, मेरे यहाँ आने से कौन सा आकाश फट गया? क्या गजब हो गया?
0: नहीं रंजना नहीं, तुम नहीं जानती मुझे मिस्टर राजन अच्छे आदमी नहीं लगते।
2: समझी, तो अब लड़का छोड़कर मुझ पर प्यास कटने लगा। आइए चलिए घर वापस चलिए।
1: आइए भाभी जी अंदर आकर बैठिए ना।
2: अरे नहीं भाई साहब, ठीक है अब चलिए चलिए।
3: अरे आइए भी, ऐसे भी क्या नाराजगी है। अशोक भैया आप भी बैठिए ना।
0: बस रहने दीजिए भाभी जी।
3: अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए फिर इतना बिगड़िए। देखिए दिन भर ये बच्चे आपस में खेलते कूदते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनसे नुकसान भी हो जाता है। आज बात की बात पर मुझे बात कहनी पड़ रही है। उस दिन सोमू और बंटी लकड़ी की गेंद से छत पर खेल रहे थे। मेरे सामने ही बंटी के गेंद फेंकने पर मेरा 2 किलो का मर्तमान तड़ से टूट गया, सारा आचार बिखर गया। पर क्या मैं उसकी शिकायत लेकर आपके पास आई? अरे बंटी के बजाय सोमू की गेंद से भी तो अचारदानी टूट सकती थी, लेकिन छोटे बच्चों को बड़े के मुंह नहीं लगना चाहिए।
0: क्या मुंह लगा था बंटी आपके मिस्टर राजन के?
3: अरे भैया पहले बंटी ने सोमू को बिजली के तार से मारा, देखिए उसके बदन में कैसे नीले नीले निशान पड़ गए हैं। फिर उनके डांटे पर तड़ातड़ जबान लड़ाने लगा, इनको मुंह चढ़ाने लगा, इस पर इन्होंने उसको 2-3 चांटे लगा दिए। अरे इसमें कौन सा गुनाह हो गया? बंटी आपके साथ साथ मेरा भी तो बच्चा है। मैं तो बंटी और सोमू में कोई भेद नहीं समझती। अगर मेरा सोमू ऐसा करे तो फौरन उसके कान गरम कर दीजिए, मुझे जरा भी एतराज ना होगा।
2: बहन यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, बच्चों की गलती पर कोई भी बड़ा बूढ़ा उनको अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए यदि डांटता डपटता है तो इसमें माता पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उलाना नहीं देना चाहिए। और बहन हम लोगों के बचपन में तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बूढ़े के सामने हम लोग जबान ही नहीं खोल सकते थे, और गलती करने पर अपने से बड़ा व्यक्ति किसी भी बच्चे के फौरन कान गरम कर देता था। और क्या मजाल कि माँ बाप उस व्यक्ति के पास बच्चे के संबंध में उलाहना लेकर जाए।
3: लेकिन बहन अब तो जरा जरा सी बात पर सिर फुटावल शुरू हो जाती है।
2: यही बात तो मैं इनसे बराबर समझाती हूँ कि बच्चे खेलेंगे भी लड़ेंगे भी और गलती भी करेंगे, इस पर अगर कोई डांट फटकार कर देता है मार भी देता है तो क्या हुआ, ये सब तो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है।
1: कहिए मिस्टर अशोक, मैंने क्या गलत कहा था कि भाभी जी को आपकी पत्नी होने के बजाय
0: आपकी माँ होना चाहिए?
1: जी नहीं आपकी,
0: जी नहीं आपकी,
1: आपकी,
0: आपकी,
1: आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी।

उलाहना, ये हास्य नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखक इंदरचंद तिवारी, बॉर्डम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाज़ें खान साहब और शाश्वत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाश्वत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता, यह गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: इतनी सी बात

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: इतनी सी बात

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र के।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग।
0: थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थ

0: पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं के साथ

0: द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा MSME की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली

0: दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज़ें राघव चैतन्य और साथियों की थी। गीत के बोल मनोज मंतशिर के और संगीत प्रीतम का।

में गाओ हरे ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक

0: श्रोता, यह गीत आपने सुना फिल्म RRR से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और राहुल सिपलीगंज की थी। गीत के बोल रिया मुखर्जी के और संगीत MM क्रीम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज़ देव नेगी और पायल देव की थी। गीत के बोल वायु के और संगीत विशाल एन शेखर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अतरंगी रे से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की है। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलोते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी। सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंपकर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य।

गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे तू

तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार की।

0: धुआं हर जल गया जल गया मेरे दिल का जहां जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन की

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी।

0: हमारी।
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान। घर मिलता नहीं सब लोगों को, ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर। बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें, प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: क्यों?
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
3: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जाने, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
3: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
3: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
3: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

ये लगता है कि यहाँ

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: न जाने क्यों ऐसा लगता है कहीं से यादों की बदलियां उमड़ घुमड़ आए तो शायद थोड़ी सी राहत मिले।
0: क्या बात कही आपने मनीषा जी, स्मृतियों के बादल जब आते हैं तो बादलों का आगमन बारिश हो ना हो छाया तो लेकर के आता है।
1: जी हाँ,
0: और इस छाया में जो ठंडक मिलने वाली है, उस ठंडक से जिनकी याद हमें आएगी, उसकी झलक इस गीत से
1: थोड़ी सी मिलेगी। हमें लगता है हमारे श्रोता जरूर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आज की विविधा में हम किन कलाकारों का स्मरण कर रहे हैं।

0: मेला फिल्म के इस गीत की झलक से तो बहुत से हमारे सुधी श्रोताओं ने जान लिया है, पहचान लिया है बात किसकी होने वाली है। फिल्म जगत के महान संगीतकार नौशाद अली साहब का स्मृति दिवस है 5 मई।
1: तो श्रोताओ, आज आप समझ गए कि विविधा बहुत ही सुरीली होने वाली है, क्योंकि नाम ही सबसे पहले जो है वो महान संगीतकार नौशाद साहब का है, और उनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं को हम आज सुनवाने वाले हैं। जयंत जी।
0: जी मनीषा जी, नौशाद अली साहब के बारे में अपने श्रोताओं को, बहुत से श्रोता जानते भी होंगे हमारे कार्यक्रमों के जरिए, ये जानकारी कई बार हमने उन्हें दी है।
1: जी जी जी,
0: आज फिर उसे दोहराते हैं कि लखनऊ में उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1919 को।
1: जी हाँ।
0: अब लखनऊ शहर के बारे में क्या कहें,
1: तहजीब का शहर है
0: जी, और उस शहर में जिनका जन्म हुआ हो, लालन पालन हुआ हो, उस शख्सियत के बारे में क्या कहे कि वो तहजीब तो उनमें अपने आप ही उतर आती है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नौशाद अली साहब के बारे में एक बात तो सभी जो सिने संगीत प्रेमी हैं और जिन्हें शास्त्रीय संगीत में भी बहुत रुचि है, वो जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का बहुत सुंदर प्रयोग राग रागिनियों का नौशाद साहब ने अपने संगीत में किया। इसके अलावा लोक गीतों का भी बहुत सुंदर प्रयोग,
0: अच्छी तरह से प्रयोग उन्होंने
1: जी,
0: किया।
1: जी जी जी। और इसके अलावा नौशाद साहब के बारे में और भी कुछ जानकारी जयंत जी।
0: जी, बचपन में बताया जाता है कि वो अपने लखनऊ के पास बाराबंकी जो शहर है वहाँ कव्वालियों के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो जो भी संगीत के जलसे होते थे उसमें ये एक श्रोता के रूप में शरीक हुआ करते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे, तो अपने आप जो है उनके संगीत के संस्कार उन पर होते चले।
1: जी हाँ। और नौशाद साहब का ये जो संगीत का प्रेम है, ये फिर बाद में हमें पता चलता है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और उनकी सुपरहिट फिल्में आनी शुरू हो जाती हैं। उनकी शुरुआत होती है 1940 में,
0: प्रेम नगर फिल्म का नाम था, और इस फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई। हालांकि जो गाने सबसे पहले हिट हुए वो 1944 की फिल्म के गाने थे, रतन।
1: जी हाँ। और फिल्म रतन से ही फिल्म इंडस्ट्री को एक जगमगाता हुआ रत्न मिला, नौशाद अली। श्रोताओ, नौशाद साहब को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया, और हम आज हमारे इस कार्यक्रम में उनकी एक खास रिकॉर्डिंग के कुछ संपादित अंश आपको सुनवा कर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाए पहले जयंत जी।
0: जी, नौशाद साहब से बातचीत की है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शायर और हमारे सेवानिवृत्त उद्घोषक अहमद वसी साहब ने।
2: याद है अब तक वो बचपन का जमाना, याद है अब तक अधूरा सा फसाना याद है। यानि मैं 10 बरस का था तकरीबन, उस वक्त से ये म्यूजिक का, संगीत का, मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से जिनको अताई कहते हैं पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़, एक जबान में कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज। तो मेरे घर में माहौल जो था वो सब सूफी कस्म के हजरात थे, हमारे वालिद, दादा और दादी, नानी, सब इन्हें वो पुराने ख्यालात के, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ पुराने ख्यालात, चूँकि पुरानी राहों से नई राहें फूटती हैं, तो मैं उनकी बातों को आज तक याद रखता हूँ। बहरहाल मेरे घर वाले मुखालिफ थे मौसीकी की तरफ, जो मेरा रुझान था, क्यों था ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात जो काबिल ज़िक्र है, हाजी बारा सली साहब, बाराबंकी के आगे यूपी में एक जगह है जिसका नाम देवा शरीफ, वहाँ हाजी बारा सली साहब की दरगाह है, और हर साल वहाँ कार्तिक के महीने में उर्स होता है, और बहुत बड़ा उर्स होता है, 10 दिन का वो उर्स होता है। तो लखनऊ से लोग अपना अपना तंबू, अपनी अपनी कनातें लेके जाया करते थे, वहाँ मैदान में डाल के रहते थे 10 दिन तक, और थिएटर कंपनी भी वहाँ आती थी, तो हम भी मामू के साथ जाया करते थे। तो हम भी छोटे थे, मेरे ख्याल से 10 साल के, तो उनके साथ हम भी जाया करते थे। तो सब मेले में जो फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं उनमें एक बांसुरी वाला आता था, वो बांसुरी बजाया करता था, बेचता था बांसुरी, और वो बांसुरी उसकी हमको इतनी अच्छी लगती थी कि मैं नहीं

जानता था कि कौन सा राग बजा रहा है, लेकिन हमको बहुत ही अच्छी लगती थी उसकी बांसुरी, और हम फुटपाथ पर जाके उकड़ू बैठे हुए उसकी बांसुरी सुना करते थे। एक नूरानी दाढ़ी थी, पगड़ी बांधे रहता था, काली वास्कोट शरई पैजामा, उसकी जहाँ बांसुरी की आवाज़ मैं सुनूँ वो अपने कनात में से तंबू में से भागूँ मैं, और खाना पीना कुछ सब भूल जाऊँ मैं, बैठा हुआ उसके दुकान के सामने फुटपाथ पर सुना करता था।

तो साहब दरगाह शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल आते थे, बड़े अच्छे अच्छे गज़ल के गायक आते थे। एक बाबा नसीर खां आया करते थे, बड़े अच्छे गायक थे वो, और वो ख़ास तौर से गज़ल गाते थे, और उनकी गज़ल बड़ी मशहूर थी जो कि बच्चा बच्चा उसको दोहराता था। छुटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था, न फूल थे न चमन था न आशियाना था, हमारी कैद व कफ़स को बस एक साल हुआ, यही बाहर के दिन थे यही ज़माना था। तुझे मैं बाग़मा क्या क्या निशान बतलाऊँ, यहीं कहीं पे हमारा भी आशियाना था। इस कस्म की वो गज़ल थी, किसकी कही हुई थी या मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन बाबा नसीर खां ये गज़ल ऐसे गाते थे, इस तरह गाते थे कि लोग वाह वाह के नारे लगते थे और झूम झूम जाते थे लोग। बहरहाल वो बांसुरी ऐसी जहन में गूंजी कि वहाँ से हमको मौसीकी का शौक़ शुरू हुआ, वहाँ से मौसीकी की इब्तिदा होती है। धीरे धीरे कुछ उम्र बढ़ती गई, एक दो साल और गुजरे, अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरुस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज़ उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद, पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, वैसे अच्छा बेटा वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान, और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। तो एक रोज उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आंख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो आके पीछे बैठे अपनी मसनद पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें, आप दुकान साफ करने नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे। मैंने कहा उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद

अब ये गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं माफ तो नहीं करूंगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आंखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी। मैंने कहा हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सजा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सजा के लिए। अब मैं हुजूर माफ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूंगा। नहीं सजा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा जी नहीं। आपकी सजा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सजा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, हैं? और लंदन साहब को मैं एक रोज बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।

0: फिर एक रोज उस्ताद ने लड्डन साहब को बुलाया, गुरबत अली साहब ने मेरा सामना कराया, कहा ये बच्चा तुम्हारी नकल करता है लेकिन हूबहू मेरे ख्याल से नकल करता है, सुनो एक दफे इसको। अरे बेटा इधर आ, जरा सुना क्या बजाता था तू? तो मैंने डरते डरते लड्डन साहब के सामने सुनाया, तो लड्डन साहब ने पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, भाई तेरा जहन बहुत अच्छा, तू आया कर वहाँ। मैंने कहा जी आता हूँ मैं, चार आने का टिकट लेके। नहीं तुमको टिकट नहीं लेना
1: पड़ेगा, लेने की नहीं जरूरत।
0: तो अब हमको फ्री एंट्री हो गई। अब दोनों शो तक हम वहाँ ठहरे। अब वालिद को मालूम हुआ कि ये रोज लेट आता है, तो उन्होंने कहा कि देखो कल से अगर तुम 9 बजे के अंदर घर नहीं आए तो कुंजी नहीं खुलेगी, दरवाजा बंद हो जाएगा।
1: तो यूं कहिए कि वालिद को छोड़ के सारे घर वाले जो थे आपके इस
0: वालदा, यकीनन माँ फिर माँ होती है
1: जी।
0: वालिद बहुत सख्त मिजाज थे इस सिलसिले में, और वो हाई कोर्ट का जज था उस जमाने में, ब्रिटिश का टाइम था, तो वो हाई कोर्ट के जज के साथ वो मुंशी थे
1: जी।
0: एक रोज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बेवक्त वालिद साहब आ गए घर में, और वही वक्त था मेरे रियाज का। उस वक्त मैं पकड़ा गया और वालिद साहब कहने लगा, रही ये क्या हो रहा सब घर में, गाना बजाना बजाय रोजा नमाज के, ये कौन लाया ये? तो मैं चुप्पे हाथ बांध के खड़ा हो गया कि मैंने कहाँ से लाए हो? मैंने कहा हुजूर वो उस्ताद गुरबत अली साहब ने मुझे तोहफतन दिया है। ये तोहफतन किस बात पर दिया? तुम में क्या खूबी थी, किस लिए दिया? मैंने कहा मैं कुछ ये बजा रहा था उनकी दुकान पर, उन्होंने खुश होके मुझे, ये नहीं रहेगा यहाँ, ये बाजन अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम्हें भी निकाल दूंगा, लाओ इधर लाओ बाजा। ऊपर लेके उन्होंने फेंक दिया सड़क पर। अब साहब मैं बहुत मायूस हो गया, गुरबत अली साहब की दुकान पर फिर आया मैं, और मैं वहाँ खड़ा हो गया और कहा अरे बेटा आओ आओ क्या हुआ? तो मैं रोने लगा, अरे बताओ हुआ क्या? तो मैंने उनको वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और हमारे वालिद साहब ने आज बाजा फेंक दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या करूँ। उस्ताद ने दिलासा दिया, कहने लड्डन साहब के पास तो तुम जाते हो वहाँ रॉयल सिनेमा में? मैंने कहा जी हाँ। फिर कहने अच्छा देखो उस्ताद बब्बन साहब एक रहते हैं नवाब बब्बन साहब, बहुत अच्छा क्लासिकल संगीत जानते हैं, मैं उनसे तुम्हारा सामना कराऊंगा। ये अच्छे थे नवाब खानदान के, और उनकी कोठी थी लाठूस रोड पर, अभी भी है।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा भाई ये लड़के को बब्बन साहब थोड़ा सबक दो, कुछ सुना बेटा? तो मैंने कुछ डरते डरते सुनाया, उन्होंने भी पीठ ठोकी, शाबाश बेटा तेरा जहन अच्छा है, आना मेरे पास मैं तालीम दूंगा। तो साहब उस्ताद लड्डन साहब बच्चों की तरह मानते थे हमको। अब हम रोज वहां जा रहे हैं और चोरी छुपे सीख रहे हैं, और नवाब बब्बन साहब से भी। और एक क्लब था वहाँ नादन महल रोड पर जो एम्यूचर्स का क्लब था,

0: में हर साल एक ड्रामा स्टेज होता था और उसमें तकरीबन सब वकील लोग शामिल होते थे, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। तो वो स्टेज हुआ ड्रामा, मैं उसमें बजा रहा हूँ। अब वो साहब खबर फैल गई, हमारे वालिद साहब को पता लगा। अच्छा, उस वक्त उम्र मेरी 16-17 साल की हो गई थी। तो हमारे वालिद साहब ने बुलाया और मुझसे कहा कि देखो, आज एक बात का फैसला करो, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने वो शौक छोड़ा नहीं और हमें बाहर से खबर मिली, आज फैसला करो, तुम्हें ये म्यूजिक चाहिए या घर चाहिए। हमारी वालदा कह रही है सुबह बात कर लेना, अभी रात है फिर। नहीं, अच्छा, इत्तेफाक से दिवाली की रात थी, दिवाली थी तो हर तरफ चिरागा वगैरह हो रहा था। अब मुझसे कहने अभी फैसला होगा, इसी वक्त होगा, तुमको मौसीकी चाहिए या घर चाहिए। मैंने कहा घर आपको मुबारक। मैं उसी वक्त निकल गया। हमारी माँ अब रोकती रही, अरे नहीं बेटा सुबह चले जा। मैंने कहा नहीं, मैं जिन कपड़ों में था जो ऐसे था वैसे बाहर आ गया। लखनऊ में एक मेरे दोस्त थे आदिल साहब, भी शायर थे, अब्दुल मजीद आदिल, मुझसे बड़े थे लेकिन बड़े मेरे तरफदार और बड़े मेरी हिम्मत अफजाई करते थे। और एक डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी थे जो यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ते थे लखनऊ में, उनके वो दोस्त थे। और डॉक्टर साहब को अक्सर हॉस्टल में मुझे ले जाए, मजीद साहब मेरा बाजवाजा सुनवाए उनको। डॉक्टर नामी साहब भी, अब्दुल अलीम नामी उनका नाम था, वो भी बहुत मुझे पीट पीट ठोकते थे, शाबाशी देते थे। मजीद साहब के पास गया कि साहब आज ये वाकया हो गया और मैंने घर छोड़ दिया, क्या करूँ। कहने भाई देखो, मेरी राय ये है कि आजकल नाचती गाती बोलती फिल्में बनने लगी हैं, तुम बम्बई जाओ। तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर से निकल आया। कह रहे मैं उसका इंतजाम कर देता हूँ। तो मजीद साहब ने हमको एक चिट्ठी लिख के दी, कहने वो नामी साहब थे ना, यहाँ पढ़ते थे, वो अभी वहाँ सेंट जेवियर कॉलेज है उसमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और तुमको तो जानते थे ना, बचपन से तुम सुनाते थे उनको। मैंने कहा जी। तो कहने उनके नाम मैं चिट्ठी लिखता हूँ, तुम उनको जाके मिलना और एड्रेस वगैरह लिख देता हूँ मैं। और मुझे टिकट दिलाया, कुछ पैसे दिए, ट्रेन में बिठा दिया। अब मैं ये जिंदगी में पहला ही घर छोड़ के बम्बई का सफर शुरू हुआ।
1: जयंत जी,
2: जी मंशी,
1: इस इंटरव्यू को पूरा सुनने का बहुत दिल करता है। कभी मौका मिले तो हम ज़रूर हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे और उनके साथ हम भी सुनेंगे। हम बताना चाहेंगे कि अभी आप ये जो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री के महान संगीतकार नौशाद साहब की ये रिकॉर्डिंग थी। और नौशाद साहब की बात चले, फिल्म मदर इंडिया की याद ना आए, ऐसा भी कभी होता है?
2: ऐसा हो ही नहीं सकता
1: जी, जी। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मदर मूवी के नाम से जाने जाने वाली फिल्म मदर इंडिया के एक बहुत ही करुण गीत की याद आती है। हमारे सभी श्रोताओं को वो सीन जरूर याद आता होगा जहां अभिनेत्री नरगिस एक हल को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और उनके साथ उनके दो, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त साहब के बचपन के रोल करने वाले कलाकारों की तस्वीर है। और फिल्म मदर इंडिया को याद करते ही वो पोस्टर आंखों के सामने घूम जाता है
2: जी।
1: और तो मुझे लगता है इस गीत को सुने और उसके बाद फिर हम एक और बहुत खास रिकॉर्डिंग श्रोताओं को सुनवाते हैं
2: जी। बिल्कुल।

0: यानी थी मदर इंडिया फिल्म का वो सीन तो जैसे जागृत हो उठा,
1: जी
0: फिर
1: जी
0: से आंखों के सामने तैरने लगा।
1: और इस फिल्म की नायिका नरगिस, जी हाँ, उनकी भी याद ताजा हो गई। श्रोताओ, 3 मई नरगिस जी का स्मृति दिवस है।
0: फातिमा रशीद मूल नाम था नरगिस जी का, और उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिली थी असल में।
1: अच्छा, बहुत
0: जी,
1: कम उम्र में
0: बहुत ही
1: उन्होंने
0: छोटी उम्र में इन्होंने अभिनय की
1: अभिनय
0: शुरुआत
1: किया।
0: की थी, और 1935 की उस फिल्म का नाम था तलाशे हक।
1: जी हाँ जैन जी, और 1935 की इस फिल्म जिसका नाम आपने लिया तलाशी हक,
0: जी
1: इसके बाद नरगिस जी एक प्रोमिनेंट रोल में, एक महत्वपूर्ण रोल में दिखी फिल्म तमन्ना में, जो आई थी 1942 में।
0: और उसके बाद जो अभिनय यात्रा नरगिस जी की शुरू होती है वो 3 दशकों तक चली।
1: जी हाँ, और नरगिस जैसी महान अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री को मिली।
0: मदर इंडिया का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं मनीषा जी, एक और फिल्म है उनके करियर में रात और दिन, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया था।
1: जी हाँ, और नरगिस जी को पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। श्रोताओं, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है नरगिस जी की, वो है